FM 102 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1938।

1942 के भाद्रपद माह की 22 तारीख तदनुसार 13 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है। हम अपने श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग

0: गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले चार दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयरना सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का ये पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइट्स और टिम पोइट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदन वार।

चिंतन। रामकृष्ण परमहंस का कथन है कि जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है, वो असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है झरोखा में हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 6:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता। इसमें आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। इसका आज 13वां भाग आप सुनेंगे। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। गुजरे जमाने के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम प्रसारित करेंगे 7 बजे। 7:30 पर होगा कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे 8:30 पर। 9:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम आज का अखबार। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ सुनिएगा 10:05 से। इसमें आज का विषय है खुशहाल जीवन का मंत्र, प्रसन्न चित्त और शांत मन।

यादों का कारवां, ये कार्यक्रम आप सुनने गया 11 बजे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा, ये सुनिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान की कहानी, उन्हीं की जुबानी इस कार्यक्रम में सुनिएगा। हेलो सिटी ब्यूटीफुल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:30 पर। यादों की महफिल कार्यक्रम का प्रसारण होगा 12:05 पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम पेश करेंगे 2:30 पर। 3 होगा कार्यक्रम मन चाहे गीत नाट्य तरंग, ये कार्यक्रम सुनिए 3:30 पर। आज इसमें सुनिए नाटक साबुन की टिकिया, साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो रूपांतरण, रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। चार बजे पिटारा में आज उजाले उनकी यादों के अंतर्गत फिल्मकार बिमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत सुनिएगा।

महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की शौर्य गाथा आज आप सुनेंगे। हवा महल कार्यक्रम होगा रात 8 बजे। इसमें सुनिएगा प्रहसन राजेश और राकेश, लेखक हैं PM आनंद, निर्देशक श्याम सुंदर प्रसाद। रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज के फनकार, जो केंद्रित होगा अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। रात 10:32 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुर सांझ। ये था झरोखा में हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के कार्यक्रमों का विवरण।

अंगद के व्यंग्य वचन सुनकर रावण श्री राम की सेना के सभी योद्धाओं के बल और पराक्रम का उपहास करता है। हाँ, उस वानर को वो नहीं भूला जिसने लंका जलाई थी। अंगद ने कहा, तू जिसके बल की सराहना कर रहा है वो तो सुग्रीव का संदेशवाहक मात्र था, किंतु क्या सचमुच ही प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारी सोने की लंका जला डाली? तुम सच ही कहते हो कि हमारे दल में कोई भी ऐसा वीर नहीं तुमसे लड़कर जो शोभा पाए। प्रीति और वैर अपने बराबर वाले से ही करना चाहिए। तुम्हें मारना श्रीराम को शोभा नहीं देता, किंतु क्षत्रिय का क्रोध बड़ा प्रबल होता है। अंगद के व्यंग्यवाणों से रावण का कलेजा जल उठा। क्रोध में उसने वानर जाति के लिए अपशब्द कहे, उनकी स्वामी भक्ति की खिल्ली उड़ाई और ये कहकर अपने बड़प्पन का परिचय दिया कि वो गुण ग्राहक है और इसी कारण वानरों की बकवास पर ध्यान नहीं देता। अंगद ने फिर व्यंग्यवाण छोड़ा, हाँ, तेरी गुण ग्राहकता मैंने हनुमान से सुनी थी। लंका दहन, अशोक वाटिका का विध्वंस और अपने पुत्र अक्षय कुमार के वध करने के बाद भी तूने इसी गुण ग्राहकता के कारण हनुमान का कोई अहित नहीं किया। फिर अपने पिता बाली के हाथों रावण को क्षमादान का स्मरण कर बोले, मैंने जगत में कई रावण होने की बात सुनी है। एक रावण तो वो था जो जब बाली को जीतने पाताल लोक गया तो बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बाली ने दया कर उसे मुक्त कराया। एक और रावण को जंतु समझ सहस्रबाहु ने पकड़ लिया था। कौतुक के लिए जब उसे घर ले आए तो पुलस्त्य ऋषि ने उसे मुक्त कराया। एक रावण वो भी था जिसे बाली ने अपनी कांख में दबा लिया था। इनमें से तू कौन सा रावण है?

श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी।

0: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में और डॉक्टर शकुंतला भरणे जी हमारे साथ हैं। शकुंतला जी, के किराना घराने की गायकी को धैर्यपूर्ण गायकी क्यों कहा जाता है?
1: धैर्यपूर्ण गायकी इसलिए कहा जाता है कि विकास बिना, जल्दबाजी के बिना क्रमशः और गहराई इसमें दिखाई जाती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और इसकी गायकी श्रोता को एक शांति, एकाग्रता और आत्मिक आनंद लेने का अनुभव कराती है। इस घराने में राग का विस्तार जो है वो अत्यंत धैर्य, संयम और क्रमबद्धता से किया जाता है
0: जी।
1: बल्कि धीरे धीरे उसका स्वरूप विकसित किया जाता है। इसीलिए राग के स्वर का अलग अलग ऊपर उभारते हुए
0: जी।
1: उसके आपसी संबंध और महत्व को स्पष्ट किया जाता है। इससे श्रोता राग के स्वरूप को सहजता के अनुभव कर पाता है। मंद्र सप्तक से मध्य और मध्य सप्तक से तार सप्तक भी एक एक क्रमशः बढ़ते हुए राग का विस्तार किया जाता है और इस क्रमिक विकास से राग की संपूर्ण छवि श्रोता के सामने स्पष्ट हो जाती है। और जहां कई घरानों में राग विस्तार के साथ एक लयकारी बोलबाट या तानों का प्रभाव अपेक्षाकृत शीघ्र दिखाई देता है
0: जी, जी।
1: यही किराना घराना राग के स्वरूप को धैर्य पूर्वक स्वर प्रधानता और भावपूर्ण ढंग से विकसित करता है
0: जी, जी, जी।
1: यहाँ उद्देश्य श्रोता को राग की गहराई और स्वर सौंदर्य का अनुभव कराना होता है। धैर्यपूर्ण

0: का विस्तार का अनुभव करते हुए उस्ताद मशकूर अली खान
1: जी,
0: उनकी गायकी आप सुनो, और उनके गायकी में ये जो धैर्य पूर्णता दिखाई देती है, स्वर में जो वजन रहता है,
1: हाँ,
0: हम उनका चांदनी केदार सुनेंगे।
1: क्या बात है, आइए सुनते हैं।

0: धैर्यपूर्ण गायकी किराना घराने की जो है वो इस ख्याल को सुनकर के उस्ताद मशकूर अली खान साहब की आवाज में हमने सुना
1: बिल्कुल
0: पूरी तरह स्पष्ट हो गया। और इसे सुनते हुए ये भी लगा कि कौन कौन से गाने होंगे फिल्मों से जो इस राग पर चांदनी केदार पर आधारित होंगे।
1: चांदनी केदार तो बहुत कम लोग गाते हैं
0: जी जी,
1: और इस राग में मुझे लगता है डायरेक्ट चांदनी केदार में गाना मिलना मुश्किल है ना। केदार की छाया लेकर
0: जी
1: हम चांदनी केदार का आनंद उठाएंगे
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गीत कौन सा होगा?
1: घर फिल्म में एक बहुत ही प्यारा गाना है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया, गुलजार ने लिखा हुआ
0: आपकी आंखों में कुछ महके
1: राहुल देवर्मन का संगीत।
0: आइए सुन।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ, 5,000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना, पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
5: बढ़िया,
4: जाओ भाई।
6: RBI कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
2: अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: दीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं नया दौर इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत।

रेल का डिब्बा, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में सुनिए शकील बदायूनी की ये रचना, जिसकी धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।

0: भूषण जी ने कहे, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जन्म जन्म के फेरे, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। भरत व्यास ने इसे रचा है, एस एन त्रिपाठी का संगीत।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: छोटे बाबू फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे, जिसे गाया है लता मंगेशकर और तलत महमूद ने। इंदिवर ने इसकी अल्फाज लिखे हैं और मदन मोहन ने तर्ज बनाई है।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: याद है तुझे वो मेरा टान तोड़ सांग
1: सांग थापा है कम होती मुरंदे की बांग
0: याद है तुझे वो मेरा टान तोड़ सांग
1: सांग थापा है कम होती मुरंदे की बांग
0: तूने उसी बांग पे कहा था वंशवा

0: फूल बने अंगारे, इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने। और इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
2: पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे मैं एडमिशन लेने से पहले बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। एक चौराहे पे खड़ी हूँ जहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग, वहाँ पर बधाई का भी है, भीख मांगने का भी है, जैसे ट्रेन में मांगते हैं सब। और एक रास्ता था जो बहुत सुंदर था, जो प्रगतिशील था, वो था एजुकेशन का। तो मैंने सोचा कि मैं ताली नहीं बजाऊंगी, ताली बजवाऊंगी।
1: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
3: यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के।

राजेंद्र कृष्ण का शब्दबद्ध किया ये गीत सुनिए, जिसकी धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने, आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने इसे गाया है। फिल्म का नाम सच्चाई।

नौशाद का संगीतबद्ध किया गीत अब सुनिए, जिसे लिखा है रजिंदर कृष्ण ने, मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने इसे स्वर दिए हैं। गवार फिल्म का नाम।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4
3: अरे 1 2 3 4
2: मैं कैसे
3: थप्पड़ रखे
2: डाबरा
3: अरे आया अंग्रेजी बोलने वाला
2: कॉपी गेस व्हाट वाटर स्टैंड राइट हैंड बंदूक बैंड टिंग फटे
4: हो जेंटल

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए आज का, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीत इस फिल्म का नाम है और हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम है राही प्यार के, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। इस समय सुबह के ठीक 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: I would like to say that the outcome document.
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें, तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी व

0: वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
5: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्री राम शर्मा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
6: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: महिला टी20 क्रिकेट

0: चेकअप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रावेट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ुमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का यह दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ते के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद, जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी, कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका

0: को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए पेश है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: आइए सुने त्रिवेणी।

त्रिवेणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा अगरकर देसाई। नमस्कार। दीवाना, ये शब्द सुनते ही मन में सबसे पहले प्रेम और जुनून की तस्वीर उभरती है। किसी के प्रति ऐसी गहरी चाहत जिसमें इंसान अपने आसपास की दुनिया को कुछ देर के लिए भूल जाए, उसे दीवानगी कहा जाता है। प्यार में डूबा व्यक्ति अपनी प्रिय की एक झलक के लिए बेचैन रहता है और उसकी मुस्कान में अपनी खुशियां तलाशता है। दीवानगी केवल प्रेम तक सीमित नहीं होती, किसी सपने, कला, संगीत या अपने लक्ष्य के लिए भी इंसान दीवाना हो सकता है। दरअसल दीवानापन उस जुनून का नाम है जिसमें दिल किसी चीज को पाने या महसूस करने के लिए पूरी शिद्दत से धड़कता है।

दीवानगी में एक अजीब सी खूबसूरती होती है। जब इंसान किसी के प्यार में दीवाना होता है तो उसे हर तरफ उसी का चेहरा दिखाई देता है। मौसम सुहाना हो या उदास, हर एहसास उसी व्यक्ति से जुड़ जाता है। कभी उसकी आवाज दिल को सुकून देती है तो कभी उसकी दूरी बेचैन कर देती है। हिंदी फिल्मों और पुराने गीतों ने इस दीवानगी को बेहद खूबसूरती से शब्द और संगीत दिए हैं। इसलिए दीवाना शब्द सिर्फ पागलपन का पर्याय नहीं,

बेचैन कर देती है। हिंदी फिल्मों और पुराने गीतों ने इस दीवानगी को बेहद खूबसूरती से शब्द और संगीत दिए हैं। इसलिए दीवाना शब्द सिर्फ पागलपन का पर्याय नहीं, बल्कि ऐसी भावनात्मक अवस्था भी है जहां दिल अपनी बात दिमाग से ज्यादा मानता है और प्रेम की अनुभूति जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाती है।

कई बार दीवानगी किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए होती है। कोई गायक संगीत का दीवाना होता है, कोई कलाकार अपनी कला का, तो कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने के जुनून में दिन रात मेहनत करता है। ऐसी दीवानगी इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े काम उन लोगों ने किए जिन्हें अपने सपनों पर असाधारण विश्वास था। प्रेम की दीवानगी हो या सफलता की, इसकी असली खूबसूरती तब है जब वो इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा दे। शायद इसी एहसास को पुराने गीतों ने बार बार अपने अंदाज में आवाज दी है।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं

0: विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000 प्लस विनर्स। 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: आपने ट्यून किया है विविध भारती और प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बाजीराव मस्तानी इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाजें दी हैं शशि सुमन, कनिका जोशी, कुणाल पंडित, ऋषि रागा पृथ्वी और गीतिका मांजरेकर ने। आइए इस गीत को सुनते हैं।

0: इस पारंपरिक गीत को संगीतबद्ध किया आदित्य देव ने।
1: चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर

0: घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: दस साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपया तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5-25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होवेगा आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
3: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
2: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
3: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
2: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
4: Gems of India Challenge.

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: ABCD 2 इस फिल्म का गीत अब सुनिए दिव्या कुमार और प्रिया शर्मा की आवाजों में। मयूर पुरी ने इसे लिखा है, सचिन जिगर का संगीत।

0: अरोड़ा प्लाईवुड
1: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
0: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
5: अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अजय अतुल की धुन।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत जिसे सुरों में ढाला है प्रीतम ने, आवाजें अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की, फिल्म का नाम दिलवाले।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे मैं एडमिशन लेने से पहले बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। एक चौराहे पे खड़ी हूँ जहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग, वहाँ पर बधाई का भी है, भीख मांगने का भी है जैसे ट्रेन में मांगते हैं सब, और एक रास्ता था जो बहुत सुंदर था, जो प्रगतिशील था, वो था एजुकेशन का। तो मैंने सोचा कि मैं ताली नहीं बजाऊंगी, ताली बजवाऊंगी।
0: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।

0: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
1: Gems of India Challenge.

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हमारी अधूरी कहानी इस फिल्म का गीत सुनिए, कुणाल वर्मा ने इसे लिखा है, आवाज और संगीत अमी मिश्रा का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: मैदा टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
4: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 109।

0: 1997 ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम आज का अखबार।
2: आज का अखबार।
1: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्कार। प्रोग्राम आज का अखबार लेकर हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो दोस्त मोहम्मद असलम। दोस्तों, क्या आपके शहर, गांव या जिले में भी कोई ऐसी खास जगह, परंपरा, कहानी या प्रतिभा है जिसके बारे में देश और दुनिया को जरूर जानना चाहिए? ऐसा होगा तो जरूर, है ना? तो देर किस बात की, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पास है अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाने का एक शानदार मौका। जी हां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय लेकर आया है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। अब देखिए ना, भारत देश जो विविधताओं से संपन्न देश है, इसके हर जिले की अपनी एक अनूठी पहचान है। कहीं ऐतिहासिक विरासत, कहीं अनोखी संस्कृति या कल्चर, कहीं खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस, तो कहीं ऐसी स्थानीय प्रतिभाएं और कहानियां जो शायद अभी दुनिया की नजरों से दूर हैं। इन्हीं अनमोल कहानियों को सामने लाने के लिए शुरू किया गया है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। अब इसमें भाग लेने के लिए आपको बेहद आसान सा काम करना है। जी हां, आसान, आप रोजाना करते होंगे। क्या करना है? आप अपने शहर, गांव या जिले की किसी खास जगह, परंपरा, इतिहास, संस्कृति, पर्यटन या स्थानीय उपलब्धि पर 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाएं और बस हो गया। चंडीगढ़ वासियों के लिए ये खास बात है कि चंडीगढ़ को भी इस चैलेंज के पायलट चरण में शामिल किया गया है। तो फिर देर किस बात की, बात बात पर फोन का कैमरा ऑन कर जो आप अपने आसपास की चीजों को कैप्चर कर पोस्ट डालते हैं या रील बना डालते हैं, बस वही हुनर अब आपको यहां दिखाना है। जो 1 से 3 मिनट की वीडियो आपको बनानी है वो अपलोड करनी है, कहां पर जाकर ये भी बताते हैं। माई वेव्स पर जाना है आपको। जी हां, माई वेव्स। अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर या लॉग इन करना है, OTP आएगा वो डालना है, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपना 1 से 3 मिनट तक का जो आपने वीडियो बनाया है उसको अपलोड करना है। 30 सितंबर 2026 ये तारीख याद रखिएगा। जी हां, लास्ट डेट फॉर सबमिशन यही तारीख है। तो इस तारीख का इंतजार करना ही क्यों, आज संडे है ही, बहुत से लोगों की छुट्टी होगी। उठिए, कैमरा ऑन कीजिए मोबाइल का और अपने आसपास छिपे किसी अनमोल जेम को दुनिया के सामने लाइए। तो बनिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का हिस्सा और अपनी कहानी सुनाइए अपनी जुबानी।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। अब पेश है हेडलाइंस, यानी वो खबरें जो बनी देश और दुनिया की सुर्खियां। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त ना करने का आह्वान, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में गुंडा अधिनियम के कथित गलत इस्तेमाल पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कानून बेगुनाह लोगों को परेशान करने का जरिया नहीं बनना चाहिए।

कर्नाटक पुलिस ने 800 बाल मजदूर मुक्त करवाए। उत्तराखंड में भारी बारिश, 170 मीटर लंबा पुल बहा। मिजोरम में भूस्खलन से एक की मौत। ब्रिटेन में प्रवासियों का विरोध जारी, प्रदर्शन तेज। यूक्रेन के शहरी इलाकों में रूसी ड्रोन हमले, 6 लोगों की मौत। नेपाल आपदा, 2 हफ्ते बाद भी बचाव कार्य जारी। सुरंग में 115 मीटर आगे बढ़ी बचाव टीमें। ईरानी रणनीति से घिरा सऊदी अरब, तेल पाइपलाइन बंद। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने बढ़ाया दबाव। ये थी हेडलाइंस, यानी वो खबरें जो बनी देश और दुनिया की सुर्खियां।

0: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
1: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
2: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
6: पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे मैं एडमिशन लेने से पहले बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। एक चौराहे पे खड़ी हूँ जहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग, वहाँ पर बधाई का भी है, भीख मांगने का भी है, जैसे ट्रेन में मांगते हैं सब। और एक रास्ता था जो बहुत सुंदर था, जो प्रगतिशील था, वो था एजुकेशन का। तो मैंने सोचा कि मैं ताली नहीं बजाऊंगी, ताली बजवाऊंगी।
2: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
7: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
2: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
7: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। MyWaves OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
7: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
2: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप MyWaves OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
7: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में अब बारी है लोकल और रीजनल हेडलाइंस की। चंडीगढ़ में स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 4 कैब कंपनियों के लाइसेंस कर रखे हैं सस्पेंड। रोज सफर करने वाले लोगों पर पड़ रहा इसका असर।

नेशनल लोक अदालत में 14 बेंच ने चेक बाउंस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम और ट्रैफिक चालान निपटाए। एक दिन में 30,145 केस निपटाए गए।

ड्रग्स तस्करी पर नकेल। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की डेडलाइन के बाद पुलिस और सीआरपीएफ का एक्शन, 76 लोगों को भेजा जेल, 10 पर एफआईआर, ड्रग्स भी बरामद।

0: चंडीगढ़ के डड्डू माजरा डंपिंग में बन रहा 6.4 किलोमीटर लंबा सिंडर ट्रैक। रक्तदान में हरियाणा तीसरी बार नंबर वन, जुटाई 5.89 लाख यूनिट। हरियाणा में शहरों के भीतर से गुजरने वाले हाईवे के बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए सरकार ने करीब 9,700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ₹2,424 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती का दोबारा जारी होगा परिणाम। हाईकोर्ट ने HPSC की बाद में जोड़ी नेट की पात्रता शर्त को किया निरस्त। पंजाब में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी। पंजाब में बिजली की मांग 16,519 मेगावाट के पार पहुंची। राजपुरा व तलवंडी साबो की एक एक यूनिट बंद। पाकिस्तान सरकार से भारत आने की अनुमति नहीं मिली तो एयरपोर्ट से घर लौटे 92 सिख श्रद्धालु। और अब खबरें खेल जगत से। भारतीय पैरा निशानेबाज भक्ति शर्मा ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक जीता, विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। ये थी लोकल और रीजनल हेडलाइंस।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
4: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
0: और अब ये गीत।

0: इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम आज का अखबार यहीं पर संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त मोहम्मद असलम को अब दीजिए इजाजत।
1: आज का अखबार।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 10 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है।

0: इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में हथियार तथा मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगी। यह उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश इसे आगामी क्षेत्रीय बैठक में अन्य खाड़ी देशों के समक्ष रखने की योजना बना रहे हैं। योजना के अंतर्गत खाड़ी में प्रवेश मार्ग पूरी तरह से ईरानी क्षेत्रीय जलसीमा के भीतर होगा। इसके निकास मार्ग का हिस्सा भी ईरानी नियंत्रण में होगा। ईरान के अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा रहा है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। उधर टेनिस में एलिना रायबाकिना ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रायबाकिना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्पुस्की ने जर्मनी के केविन क्रार्वेटेस और टिम पुइट्स को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सामना अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला बृहस्पतिवार को होगा। सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब पेश है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
1: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच। वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ
2: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
1: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
2: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
0: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
3: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त मोहम्मद असलम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज संडे का दिन है, कुछ लोगों की छुट्टी का दिन है, तो थोड़ा सा आराम भी हो रहा होगा। और ऐसे में आकाशवाणी का साथ है तो फिर तो दिन बनता ही है। और हाँ, अब इस प्रोग्राम में जैसे कि हमारे बहुत से नियमित श्रोता हैं वो जानते ही हैं कि हम एक विषय पर डिस्कशन या चर्चा करते हैं, आप अपने विचार हमसे साझा करते हैं। तो कौन से टॉपिक पे आज आपको विचार साझा करना है हमसे, पहले वो टॉपिक बता देते हैं। आज का टॉपिक है खुशहाल जीवन का मंत्र, प्रसन्न चित्त और शांत मन। जी हाँ, टॉपिक है खुशहाल जीवन का मंत्र, प्रसन्न चित्त और शांत मन। और इस पर आप अपने विचार हमसे साझा कैसे कर सकते हैं, कुछ नए श्रोता जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको हम बता दें। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660617 और 2660619। 0172 हमारा STD कोड है, आप ये लगा कर नंबर डायल करेंगे तो हम तक आपकी बात पहुंचेगी। तो चलिए, शुरुआत हो भी चुकी है, हमारे पहले लिसनर आ भी चुके हैं और उनसे कर लेते हैं पहली बात। हेलो
4: मोहम्मद असलम साहब, राम राम।
3: जी राम राम, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में।
4: आपको भी, आपको बहुत मुबारक है
3: जी,
4: बड़े दिनों बाद आए प्रोग्राम आए हुआ।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी समय बाद आपसे,
4: बहुत दिनों बाद प्रोग्राम कराया आपने।
3: जी जी जी, तो आज का जो, हाँ जी बिल्कुल बढ़िया है। आप अपना नाम और जगह का नाम बता देंगे?
4: बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी, पिंजोर से बोल रहा हूँ सर
3: जी,
4: बिटना रोड
3: जी। तो आज के विषय के बारे में क्या ख्याल है कि खुशहाल जीवन का मंत्र क्या है, आप क्या समझते हैं? प्रसन्नचित्त मन और शांत।
4: खुशहाल तो हम अपने अपने आप में ही ढूंढ सकते हैं
3: जी,
4: तो हम अपना आप ही खुश रह सकते हैं।
3: बिल्कुल,
4: और अपना आप में खुश रहने का मतलब ये है कि जरा जैसी बातों पे हम बिल्कुल भी माइंड ना करें और ना ही करने दें किसी को भी।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
4: देखो, जो भी बात हो वो दिल पे ना लगाएं और जितना भी आप खुश रह सके इस जिंदगी में वो सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट कोई चीज है ही नहीं।
3: बिल्कुल,
4: तो यही खुशहाल जिंदगी है जिससे कि हम जी सकते हैं, अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं।
3: आप क्या करते हैं, मतलब जो प्रसन्न चित्त और शांत मन रखने के लिए?
4: जो घर में एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अब घर में कोई मेरी मनपसंद सब्जी नहीं बनी तो मैं खा लेता हूँ।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश रहता हूँ
3: जी, होना भी चाहिए।
4: मैं नहीं खानी हो, उसी से मतलब वो हो जाता है दिल दुखी।
3: और वैसे भी ऊपर वाले की नियामत है, सब्जी है, हर तरह की है, किसी को कुछ पसंद किसी को कुछ पसंद, लेकिन अनादर ना हो ना
4: जी, जो थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखो,
3: बिल्कुल
4: ज्यादा बेस्ट रहेगा सर। बहुत अच्छी चीज है हमारा खुशहाल जिंदगी, हम एक बीमारी से छुटकारा मिलेगा हमें।
3: बिल्कुल, अब देखिए उसमें नाना कोर करेंगे, घर वालों को प्रॉब्लम होगी, जिसने इतने प्यार से बनाया होगा, घर में इतना टाइम लगाया होगा,
4: क्लेश करेंगे तो सब दुखी हो जाएंगे,
3: उसका मन दुखी होगा, उसका मन दुखी देख कर आपका मन दुखी होगा, तो कुल मिलाकर के जी। चलिए, बहुत
4: खुशी यही होती है सर, खुशी

0: जो है अपने आप से निकाल लो और इससे ज्यादा बेस्ट रहेगा और अच्छी जिंदगी जियो।
1: और बिल्कुल देखो, अपनों की खुशी से ही तो हमारी खुशी बढ़ती है ना। जब हम अपनों को खुश देखते हैं तो हम भी खुश होते हैं, इसीलिए ये छोटी छोटी चीजों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत प्यारा संदेश आपका कि कोई भी चीज आपके सामने अगर आने के रूप में आए। नंबर कट गया, लेकिन अब बारी एक गीत की।
2: सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
3: अच्छा दादा।
2: हाँ तो बच्चों,

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया, एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा, हुजूर, गुस्ताखी मां।

0: पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूँ।
1: उस आदमी ने पूछा, कहाँ है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा,
0: हुजूर,

0: चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 5-25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होवेगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
4: इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगली कॉल। हेलो चंडीगढ़, संपर्क टूट गया इनसे। हेलो चंडीगढ़। हेलो
5: हेलो
4: हेलो,
5: नमस्कार सर।
4: नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में। जी आपका शुभ नाम जान सकता हूँ?
5: मैं किरण बात कर रही हूँ।
4: किरण
5: जी सर।
4: किरण कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
5: सर मैं शिमला से बात कर रही हूँ।
4: कहाँ से?
5: शिमला से।
4: शिमला से
5: जी, शिमला कुफरी।
4: अरे वाह, शिमला की हसीन वादियों से आप आए, और क्या लेकर आए हैं आप, यानी क्या विषय जो हमने दिया है उस पर क्या साझा करना चाहते हैं आप, अपने विचार?
5: सर मैं भी नहीं कहना चाहूंगी, हमारी जिंदगी में खुशियां नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
4: देखो खुशियां नहीं होंगी ये तो हम सब जानते हैं कि खुशियां नहीं होंगी तो कोई परेशानी आएगी, हम टेंशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप क्या टेक्निक अपनाती हैं कि मन प्रसन्न रहे और शांत रहे, कुछ ऐसा कभी आपने सोचा हो?
5: जी सर मैं उसी विषय पे आ रही थी।
4: जी जी,
5: तो सबसे पहले सर हमें मतलब ये लड़ाई झगड़ा होता है इनसे दूर रहना चाहिए।
4: बिल्कुल,
5: और जितना हो सके हमें अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और जैसे मतलब हम कई जगह में लड़ाई झगड़ा देते हैं तो मतलब उसका विरोध करना चाहिए हमें,
4: रोकना चाहिए,
5: ताकि जो इंसान लड़ाई कर रहा है या जिसके साथ लड़ाई हो रही है वो उस लड़ाई से बच सके।
4: बिल्कुल, समझदारी अपनाते हुए वहां पर मौके की नजाकत समझते हुए लोगों को समझाइए, रोकिए, अगर आपसे बनता है, नहीं तो जो इसके लिए आधिकारिक होते हैं उनसे संपर्क कीजिए ताकि वो बीच में आए, क्योंकि कई बार ये गलत भी हो जाता है कि आप एकदम से भीड़ में घुस जाते हैं और उनको आओ ना देखा ताओ, उसमें कहीं का कहीं कुछ हो जाता है ना, दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, तो ये भी समझदारी रखनी है।
5: सर हमें उसमें जैसे कहते हैं ना घी में आग डालने का काम नहीं करना चाहिए।
4: हाँ बिल्कुल, उनको कोशिश ये की जानी चाहिए कि प्यार से तरीके से चीजों को सॉल्व किया जाए,
5: क्योंकि सर मतलब मेरे गांव में भी एक के साथ हुआ था ऐसे,

0: हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज।
1: मेरे गांव में भी सर एक के साथ हुआ था ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उसका।
0: जी
1: तो मतलब वो अपनी मतलब एक सास बहू के बीच में मतलब लड़ाइयां लग गई उन्हें। वो भी मतलब अब तो मतलब दहेज प्रताड़ित में ही किया जा सकता किसी को, दहेज के लालच में मतलब प्रताड़ित किया जा रहा था उसको।
0: जी मैं समझ गया। देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें, सबसे बड़ी बात तो यही है, और ऐसे बड़े बड़े गंभीर मुद्दे हो जाते हैं ये।

0: मतलब प्रचारित किया जा रहा था उसको।
1: जी मैं समझ गया। देखिए कितनी बड़ी चीज है, हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करें, सबसे बड़ी बात तो यही है। और ऐसे बड़े बड़े गंभीर मुद्दे हो जाते हैं, ये तो आपराधिक भी हैं, है ना। लेकिन मतलब ये है कि बस छोटी छोटी खुशियां ढूंढिए, जरूरी नहीं कि बड़ी खुशियां ढूंढने के लिए हमें कहीं वादियों में ही जाना है या कहीं झील झरने ढूंढने हैं। आप घर पर अपने परिवार के साथ रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, अपने यारों दोस्तों के बीच में रहते हुए भी छोटी छोटी खुशियां हासिल कर सकते हैं, और यही एक तरीका है प्रसन्न रहने का और शांत मन रखने का।
0: जी सर, तो बल्कि वो लड़की इतनी परेशान हो गई थी कि उसने अपने क्या करने के बारे में सोचा।
1: बिल्कुल, देखिए कितना नेगेटिव थॉट आता है जब हम परेशान होते हैं, इसीलिए शांत मन रखना बेहद जरूरी है, पॉजिटिव सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, लोगों को आगे आकर समझाना भी जरूरी है। चलिए किरण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छे विचार आपने साझा किए, और इसी तरह जुड़े रहिए आकाशवाणी चंडीगढ़ के साथ।

0: अरोड़ा प्लाईवुड
1: यहाँ है पीवीसी डब्ल्यूपीसी वॉल पैनल्स सीलिंग्स एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स सब एक ही छत के नीचे
0: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट एसयू 845 एनएसी मनी माजरा चंडीगढ़ कॉल 9876277700
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदे 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: हेलो चंडीगढ़।
4: हेलो
3: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में। कौन बोल रहे हैं? सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे हैं?
4: मैं पवन बोल रहा हूँ।
3: क्या नाम बताया आपने?
4: पवन।
3: पवन
4: जी।
3: जी पवन जी, बोलिए क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में?
4: समझ नहीं है ये विषय जी।
3: जी आज का विषय है प्रसन्नचित और शांत मन, खुशहाल जीवन का मंत्र। कैसे खुश रह सकते हैं? छोटी छोटी खुशियां, या क्या जरूरी है कहीं दूर जाकर के पैसे खर्च करके खुशी हासिल करना, या घर पे बैठे बैठे अपने लोगों के बीच में अपने दोस्तों यारों, या छोटी खुशियां कैसे मिल सकती हैं? शांत मन कैसे हो सकता है? हाँ जी, जी बिल्कुल। होर की कर सकता है जी? होर की करना चाहिए इस तो अलावा भी जे परिवार चे जे अपने घर चे बैठे है।
4: इस तो बारे है आजकल परिवार है छोटे छोटे छोटे छोटे परिवार छोटे परिवार में।
3: हाँ जी,
4: बंदा अपने आप अपने दुख रहा दुख रहा दुख रहा है।
3: हाँ जी,
4: जो जो बंदा अपने दो बच्चे बाहर में हैं।
3: हाँ जी,
4: तो दो बच्चे कर रहे हैं, दो कर रहे हैं मियां जी।
3: हाँ जी,
4: तो वो ना भी मत उसमें जाए।
3: हाँ जी, तो जे बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, लेकिन जे अपन दोवें घर होवें जे मियां बीवी घर च ने एक दूजे की हेल्प कर सकते हैं, छोटी छोटी खुशियां तो इस तो भी हासिल हो सकदियां ने ना। कई बार होंदा मैं बैठा जी करे चलो जी ये ला दो वो ला दो, अपना काम करना नहीं हैगा, तो वह परेशानी का ही सबब बनता है। हौले हौले की होंदा फिर वह इकट्ठा हो जाता है, बाद च फिर होंदी है परेशानी, फिर आते हैं विवाद, है ना जी। तो कोशिश करनी चाहिए है एक दूजे का हाथ वंड के वंडा के ते काम कर देना चाहिए ताकि अपनी अंदरूनी खुशी मिले सानू, है ना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, बहुत चंगा लगा थोड़े नाल गल करके पवन जी, ते इसी तरह जुड़े रहो आकाशवाणी नाल।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
1: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
2: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
1: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी।
2: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
0: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। कुछ श्रोता हमसे शायद अभी जुड़े होंगे और उनको बता दें हमारा आज का इस कार्यक्रम का विषय है खुशहाल जीवन का मंत्र, प्रसन्न चित्त और शांत मन। इसके लिए हमें लगातार कॉल्स भी आ रहे हैं और एक नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो चंडीगढ़।
4: हेलो चंडीगढ़
3: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में।
4: मैं मोहम्मद जरीफ अंसारी।
3: जरीफ अंसारी जी, स्वागत है, कैसे हैं आप?
4: मैं

0: सलाम अलैकुम
1: जी। वालेकुम सलाम, और बताइए क्या कहना
0: जी।
1: चाहेंगे? खुश
0: बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनी असलम भाई।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी समय हो
0: बहुत
1: गया है।
0: खुशी हुई जब रेडियो ऑन किया, आपकी आवाज़ सुनी तो बहुत खुशी हुई।
1: देखिए, खुशहाल जीवन का मंत्र, छोटी छोटी खुशियां हैं, इसमें भी आपने खुशी ढूंढ ली है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के
0: जी
1: लिए कि क्या
0: हम
1: होना
0: तो
1: चाहिए?
0: खुश, बिल्कुल खुश रहना चाहिए जी, बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: अपनी खुशी जो है ना आपने। जी, हम तो खुशी रहते हैं इंशाल्लाह हर टाइम 24 घंटे, हंसते और हंसाते रहते हैं।
1: बिल्कुल। देखिए ना, मन में
0: जी
1: किसी दूसरे के लिए बुग्ज नहीं रखना चाहिए, या कोई ईर्ष्या
0: जी
1: या कोई ऐसा भाव जिससे कि आप तो खुद परेशान हो रहे हैं
0: जी जी
1: और
0: जी
1: सामने वाले को ये मालूम भी नहीं है।
0: ना,
1: सबसे बड़ी बात है, सामने वाले को
0: हम
1: ये पता
0: तो
1: ही
0: अगर
1: नहीं है।
0: कोई देखते हैं सर, कोई
1: हाँ
0: मायूस है उसे भी हंसा देते हैं, मैं तू मायूस
1: बिल्कुल
0: क्यों है, क्या टेंशन है, क्या वह हमें बता दो।
1: जी। 2 घड़ी बैठकर
0: जी जी
1: बात
0: जी
1: कर
0: जी
1: ली जाए, सिर्फ पूछ ही लिया जाए ना कि क्या
0: पूछ
1: दिक्कत है,
0: लिया
1: बताइए, परेशानी
0: बस बस
1: बताइए, है ना।
0: बस
1: कई
0: बस
1: लोग
0: बस यही
1: झिझकते
0: होता
1: हैं,
0: है जी।
1: लेकिन अगर आप उसे अपनापन दिखाते हुए उसके साथ बैठ
0: जी
1: जाएंगे
0: जी
1: और पूछते रहेंगे, तो शायद वो अपनी बात आपसे साझा भी करे, और इससे जो
0: बिल्कुल
1: रिलीफ
0: बिल्कुल
1: होगा, जो मन में शांति आएगी और खुशी मिलेगी, आपको दोनों का काम होगा, आपको खुशी मिलेगी और उनका मन शांत होगा, है ना। तो ये छोटी छोटी खुशियां हमें ढूंढनी नहीं पड़ती, वैसे तो हमारे आसपास ही होती हैं। बस ये है,
0: आसपास ही होती है,
1: हाँ, कि
0: बिल्कुल
1: हमें अपनी जो सोच है वो वैसी बनानी है कि बस, या ज्यादा दूर जाके क्या करना है, मेरे आसपास सब कुछ है, बस समय इतना लगाना है कि उस खुशी को हम पकड़ लें, ढूंढ लें,
0: बस
1: ग्रैब
0: बस
1: कर लें।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल सर, ऐसा
1: चलिए,
0: ही
1: बहुत
0: करते
1: अच्छा लगा,
0: हैं।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके काफी दिनों बाद।
0: बहुत बहुत स्वागत है
1: और
0: आपका भी, आप भी बार बार प्रोग्राम में आइए।
1: जी जी जी
0: हाँ
1: जी शुक्रिया।
0: ठीक है, शुक्रिया जी।

0: कई साल पहले की ये बात है।
1: बोलो माँ, चुप क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवा में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
1: पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे मैं एडमिशन लेने से पहले बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। एक चौराहे पे खड़ी हूँ जहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग, वहाँ पर बधाई का भी है, भीख मांगने का भी है, जैसे ट्रेन में मांगते हैं सब। और एक रास्ता था जो बहुत सुंदर था, जो प्रगतिशील था, वो था एजुकेशन का। तो मैंने सोचा कि मैं ताली नहीं बजाऊंगी, ताली बजवाऊंगी।
0: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां, आज दिन में 11 बजे।

0: हेलो चंडीगढ़। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो,
0: जी स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते
1: मोहम्मद असलम भाई को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, आपका नाम बता दीजिए।
1: मैं सीख कुमार सेक्टर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा।
0: जी, सतीश कुमार जी स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: जी आप काफी दिनों बाद आए।
0: जी काफी
1: दिल
0: दिन
1: खुश
0: हो गए।
1: हो गया
0: जी, देखिए खुशी
1: आपकी
0: मिल रही
1: आवाज
0: है।
1: सुनकर।
0: हाँ बिल्कुल,
1: बहुत
0: दोनों
1: दिल
0: तरफ
1: खुश
0: खुशी है,
1: हुआ
0: दोनों तरफ खुशियों का माहौल है जी, इधर भी और
1: जी।
0: उधर
1: जी
0: भी, है ना?
1: लाइफ इज ए स्ट्रगल,
0: जी
1: लाइफ में लॉस्ट एंड फाउंड होता रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हमें प्रसन्नचित रहना चाहिए,
0: बिल्कुल रहना चाहिए। आप क्या करते हैं प्रसन्नचित रहने के लिए और शांत मन करने के
1: हमें
0: लिए?
1: सहनशीलता बनाए रखना चाहिए जी।
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने
0: सहनशीलता और
1: एक दो
0: सब्र।
1: लाइन भी बना रखी है।
0: जी बताइए बताइए।
1: छोटी सी है जिंदगी,
0: हाँ जी।
1: पल दो पल का साथ है, ऐसे में हंसी खुशी जिया जाए, हम सबका साथ साथ है।
0: क्या बात है, क्या बात है, देखिए ना
1: सबका
0: इस।
1: साथ साथ होना चाहिए जी। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए जी, प्रसन्नचित होने के लिए।
0: जी
1: ये नहीं है एक आदमी अकेला काम कर रहा है रसोई घर में, महिला ये वाइफ काम कर रही है, आप घर में बैठे इधर बैठे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: साथ
0: कोई भी।
1: देना चाहिए जी, साथ देने से ही हमारा काम घटेगा, टाइम बचेगा और प्रसन्नचित रहेगा।
0: बिल्कुल,
1: और कोई
0: प्रसन्नचित रहने का सबसे बड़ा मंत्र ही यही है, एक दूसरे के काम आइए, छोटे छोटे उसमें हाथ
1: बाकी
0: बटाइए।
1: छोटी छोटी बातों पर किसी ने ओवरटेक ले लिया, हमें गुस्सा नहीं
0: हाँ
1: करनी चाहिए।
0: नहीं।

0: देख ले लें, कोई बात नहीं।
1: जी बहुत अच्छा आपने बताया, हाँ बिल्कुल।
0: या पार्किंग इधर उधर थोड़ी बहुत लग गई, कोई बात नहीं जी।
1: हाँ जी, इंश्योरेंस तो है ही है।
0: जगह कौन सी बाहर जानी है, जगह तो हमारी यही रहनी है जी।
1: बिल्कुल, रोड पे चलते हैं, जरा सी खरोच आ जाती है गाड़ी में, रोड रेज हो जाता है। अरे इंश्योरेंस का प्रीमियम किस लिए भरते हैं आप?
0: मतलब वो नहीं करना चाहिए, दिल पे नहीं लगानी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल पे नहीं लगानी
0: चाहिए। दिल पे लगाएंगे तो प्रसन्नचित हो ही नहीं सकते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: बाकी अपना काम करते रहो जी, बाकी अपनी जो इच्छाएं हैं इनको सीमित रखें।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम बहुत बड़ी इच्छाएं करते रहेंगे ना तो हम प्रसन्नचित नहीं रहेंगे,
1: नहीं रहेंगे दुखी, फिर हम उसको करने के लिए सोचते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, सोचते रहेंगे, आज ये करें, आज वो करें,
0: ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो।
1: हाँ बिल्कुल
0: सही, खत्म हो जाता है फिर हमारा
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: अपना,
1: जी।
0: फिर अपना हम वो डिप्रेशन में आ जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: खाली होगी डिप्रेशन हो गया,
1: ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ डिप्रेशन में नहीं जाना है,
0: ये ऐसा रहती है लाइफ को हमने देख के जीना है
1: जी,
0: ठीक है ना जी। दूसरों का भी ख्याल रखे, अपना भी ख्याल रखे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
0: थैंक यू सर जी, थैंक
1: और आपने विचार साझा किए। जुड़े रहिए आकाशवाणी चंडीगढ़ के साथ।

0: हेलो चंडीगढ़।
1: हाँ नमस्कार जी, मैं नरेंद्र शर्मा सेक्टर 9 पंचकुला से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी नरेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: हाँ जी
0: जी क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर कि खुशहाल जीवन का मंत्र प्रसन्नचित और शांत मन, मानते हैं आप ऐसा है?
1: इसके लिए कई कुछ फॉलो करना चाहता है, मैं कुछ सजेशन दे रहा हूँ।
0: बिल्कुल दीजिए जी।
1: एक तो ये है भी हर एक्शन पे रिएक्शन करना कोई जरूरी नहीं होता।
0: जरूरी नहीं होता बिल्कुल। और
1: किसी ने कोई बात कह दी तो ठीक है, यू जस्ट स्माइल इट अवे।
0: बिल्कुल, इग्नोरेंस इज द की ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप इग्नोर करते हैं चीजों को तो आप हैप्पी रहते हैं।
1: रिएक्ट करते हैं तो आप भी दुखी होते हैं और
0: दुखी होते हैं,
1: दूसरा भी दुखी होगा।
0: बिल्कुल, वो सुना है ना केमिकल लोचा होता है दिमाग में एक।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: वो एक बदन में पूरी सिरहन सी पैदा कर देता है। इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि कितना तगड़ा रिएक्शन होता है केमिकल का कि हमारे बदन में झुंझुनी सी छा जाती है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक,
0: जो कि हमारे लिए सही भी नहीं है।
1: जो खुशी है अपनी फैमिली में ढूंढनी चाहिए सबसे।
0: बिल्कुल,
1: पहले तो
0: अपने परिवार, अपने प्यारों के बीच, अपने यारों दोस्तों में हो सकती है, जहां हम काम करते हैं, ऑफिस में दिन भर रहते हैं, आधा घर है हमारा, फैमिली है वो, है ना, वहां हम माहौल बनाए रखते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज ये वो। अरे यार पूरा दिन तो यही रहते हो, घर तो सोने जाते हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना, तो वहां पे भी खुशी ढूंढो।
1: सबसे ज्यादा घर पे ही मिलेगी आपको।
0: बिल्कुल जी जी,
1: अपने बच्चों के साथ बातचीत करके, खाना खा के।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और हर छोटी छोटी चीज में खुशियां हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, है ना, आपका फोन लगा, कहीं ना कहीं खुशी का एहसास हुआ होगा।
1: हमें तो बहुत खुशी हो रही है आपसे बात।
0: वही है, अब आप आए, हमें खुशी हो रही है कि चलिए हमारे साथ नरेंद्र जी आए हैं पंचकूला से। ठीक है, तो क्या हमने कोई वजह ढूंढी? नहीं, एक प्लेटफॉर्म है, मिले, बात हो रही है, तो खुशियां ऐसी ही होती है सर। और हमें ये समझना,
1: थोड़ी सी सेल्फलेस सर्विस भी करनी चाहिए,
0: करनी चाहिए उससे। बिल्कुल, उसी ही से तो खुशियां आती हैं। जहां हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मैं ये करूंगा तो ये भी करे और वो नहीं करता, तो हम डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, वही रिएक्शन, केमिकल लोचा, है ना। तो इस तरह की चीजें, इससे दूर रहना चाहिए। इग्नोरेंस, एक्सपेक्टेशन इन चीजों की कि मुझे भी कुछ मिले, वो सेल्फलेस वाली बात आपकी बेहद सही है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही।
1: आखिर में एक मैं चीज और ऐड करना चाहता हूँ
0: जी,
1: कि हमें किसी से झगड़ा हो जाए या दुश्मनी भी हो जाए तो हमें बदला नहीं लेना चाहिए।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
1: बदल के दिखाना चाहिए,
0: बदल के दिखाना चाहिए। देखिए कितनी प्यारी बात आपने की, है ना, शब्द एक ही है लेकिन मतलब दो है, बदला बदल, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, और इसी तरह जुड़े रहिएगा आकाशवाणी चंडीगढ़ के साथ, और इसी तरह छोटी छोटी खुशियां हम बांटते रहें एक
1: अच्छा
0: दूसरे के दामन में। जी
1: बहुत अच्छा टॉपिक
0: जी जी, शुक्रिया शुक्रिया,
1: नमस्कार।

0: बस इसी तरह खुशियां ही खुशियां एक दूसरे को बांटते रहिए। खुशहाल जीवन का जो मंत्र है, प्रसन्नचित और शांत मन, इसको अपनाते रहिए। लोगों के साथ एक दूसरे का सुख दुख बांटते रहिए। देखिए, खुशी अपने आप आपके आसपास भटकती हुई चली ही आएगी। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ यहीं पर संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त मोहम्मद असलम को अब दीजिए इजाजत।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5-25 सितंबर लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां के 15वें एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त रमेश कपूर। नमस्कार दोस्तों, आज यादों का कारवां में हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
1: जिंदगी नामा, शानदार जिंदगी की बेमिसाल कहानियां।
0: दोस्तों, जिंदगी नामा प्रोग्राम में आज हम उस शख्सियत की जिंदगी से जुड़ी बातें करेंगे जिन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाने में बहुत संघर्ष किया और ये संघर्ष आज तक जारी है। हमारे समाज का हिस्सा होते हुए भी समाज की मुख्य धारा से दूर हैं, क्योंकि शायद हमारे समाज ने, हमने इनके और इनके जैसे दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में कभी सोचा नहीं। घर में शादी ब्याह हो, बच्चा हो, तो हम सोचते हैं कि इनकी दुआएं मिलें, इनका आशीर्वाद मिले तो हमारे सब काम सफल हो जाएंगे। हमारे समाज का हिस्सा है नर नारी, और हमारे समाज में ही तीसरी प्रकृति भी है, वो है ट्रांसजेंडर। जी हाँ, आज जिंदगी नामा प्रोग्राम में हम बातें करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान से। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी नामा प्रोग्राम में।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद आपका, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मुझे खुशी है कि मैं अपनी आवाज़ को लाखों चंडीगढ़ के निवासी हैं और पूरे भारत में जहां जहां तक आकाशवाणी चंडीगढ़ की आवाज़ जारी है वहां तक मैं अपनी आवाज़ जो दबी कुचली हजारों सालों से जिनकी आवाज़ सुनी नहीं गई, आज आकाशवाणी के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद।
0: धनंजय जी, सबसे पहले बात आपके जन्म की, आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपकी परवरिश हुई और इस दौरान क्या क्या बातें हुई, वो आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: देखिए, मेरा जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में देवप्रयाग, जो एक पहला प्रयाग है पांच प्रयाग में, वहाँ उसके पास ही गांव है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। लेकिन जन्म के कुछ महीनों बाद ही मेरे पिताजी की जो जॉब थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी में लग गई थी, तो वो मुझे यहाँ ले आए थे। और तब से, ये 1970-71 की बात है, तब से मैं चंडीगढ़ में ही हूँ और चंडीगढ़ में ही रह रही हूँ, और मेरी जो सारी एजुकेशन है वो चंडीगढ़ में ही हुई है, और मेरा जो पालन पोषण है पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही हुआ है। और चंडीगढ़ के तमाम जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जान पहचान दोस्त लोग सभी मुझे बचपन से यहाँ जानते हैं, और मेरा जो एजुकेशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एक स्कूल होता था गवर्नमेंट स्कूल, अभी वो 25 सेक्टर में है, वहाँ पर बेसिक एजुकेशन वहाँ पर हुई। जब मेरा एडमिशन हुआ मैं 6 साल की थी, और उससे पहले 3 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक मैं जेंडर के कंफ्यूज हो गई थी कि मैं जिस शरीर में पैदा हुई उस शरीर को अपना नहीं मानती थी, मैं सोचती थी शायद मैं गलत शरीर में पैदा हो गई। 3 से 5 साल की एज में मुझे अपने आप को आभास हुआ कि मैं एक लड़की हूँ।
0: जी, तो आपके माता पिता को पता चल गया था कि हमारा बच्चा कुछ अलग है?
2: देखिए, एक सहज प्रवृत्ति होती है प्रकृति में, जब इंसान बढ़ता है, जब नाखून बाल हमारे सारे शरीर के अंग होते हैं, हमें दिन प्रतिदिन नहीं पता चलता है, और एक उम्र बीत जाती है जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम बड़े कब हुए, किस किस समय पर हमारा शरीर का विकास हुआ है। तो मेरे माता पिता को आभास था कि ये बच्चा जो है, हम इस बच्चे को जिस रूप में मानते हैं उस रूप में नहीं है। 5 साल की एज में मेरा मुंडन हुआ, तो उसमें मुझे गांव लेके गए और हमारे घर में ही काफ़ी बड़ा फंक्शन हुआ, तो मैंने सोचा कि मेरे बालों में ये सब बांधे गए हैं अलग अलग तरह के जो रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए कोई फंक्शन हो रहा है, शायद मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है। लेकिन वो तो मेरे बालों की काटने की तैयारी थी, तो मैंने मना कर दिया कि मेरे बाल नहीं काटने हैं, तो मैं तो लड़की हूँ। तो सब लोग हंसने लगे कि शायद बच्चा है, इसको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन मुझे आभास था कि मैं लड़की हूँ। फिर मैंने कहा कि ये दीदी हैं, इनके बाल भी काटो, तो फिर मेरे जबरदस्ती बाल काट दिए गए, वही ड्रेस लेके आए थे, मैंने वो नहीं पहनी, मैंने फ्रॉक पहनी जबरदस्ती। तो ये जो इंसिडेंट, मेरे माँ बाप का, मेरे रिश्तेदारों को आभास होता था लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, वो झूठ के साथ जीना चाहते कि यस। लेकिन 6-7 साल की उम्र में जब मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ मुझे लगता है कि मैं गलत शरीर में पैदा हो गई और मैं लड़की हूँ, तो मेरी माँ ने मेरे पापा को बताया, और मेरे पापा ने फिर पंडित से बात की, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई आत्मा आ गई है, कोई चुड़ैल, और फिर वो ओझा के पास लेके गए, तो ओझा ने गरम चिमटा करके

0: मेरे शरीर में दाग अभी भी वो निशान है मेरे शरीर में, और वो दागने शुरू किया कि हम इस बच्चे को छोड़ दें।
1: तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास में पढ़कर अपने ही बच्चों के ऊपर इस तरह के जुल्म करवा लेते हैं।
0: मेरे शरीर पे बहुत सारे जख्म हो गए थे, तो उस टाइम पे मैंने मान लिया कि ठीक है मैं वो हरकत नहीं करूँगी, मैं अपने आप को लड़की नहीं मानूंगी, मैं लड़का हूँ। तो उस टाइम पे तो मैंने संभाल लिया कि नहीं, क्योंकि वो थर्ड डिग्री टॉर्चर था, इतना कोई 6-7 साल के बच्चा वो उस गर्म सलाखों को नहीं सह सकता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आगे से ये हरकत नहीं करूंगी। लेकिन वो अंदर जो औरत थी वो औरत जवान हो रही थी।
1: स्कूल में पढ़ाई जब आपने शुरू की तो किस तरह का संघर्ष करना पड़ा वो हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: 6 साल की एज में जब स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। वॉशरूम 2 थे, मेल फीमेल का, तो मुझे ये नहीं समझ आता था कि मैं कौन सा वॉशरूम यूज करूं। मेल वाले में जाती थी तो मेल में बच्चे बुलिंग करते थे। एक बारी तो मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया, 1 घंटे तक मैं उसके अंदर रोती रही, किसी ने सुना आवाज़, फिर वो मुझे खोला गया। और फीमेल वाले वॉशरूम में मुझे जाने नहीं दिया जाता था। तो ये 2 जो बाइनरी हैं मेल और फीमेल में, हम जैसे बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि इसमें हम लोग कौन सी लाइन में रहें, या मेल वाले में रहें या फीमेल वाले में, या कौन से वॉशरूम यूज़ करें, कौन से कपड़े पहने, ये नहीं समझ आते। मेल वाले पहने, फीमेल वाले पहने, जैसे आज मैं पूरा अपने आप को फीमेल गेटअप में ले आई हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम तो आदमी थे, लेकिन जब हम लड़के जैसे कपड़े पहनते थे तो हमारे साथ बुलिंग होती थी, हैरेसमेंट होती थी, टीजिंग होती थी, सारा डिस्क्रिमिनेशन, मार पिटाई, रेप, कोई भी आके छक्का हिजड़ा, ये सब गंदे शब्द यूज़ करते थे, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। और आज हम लोग उस चीज़ को छोड़ गए, जब हमें जनानी बोला गया तो हमने वो जनानी रूप धारण कर लिया, तो आज हम जनानी बन गए हैं, जननी बन गए या लड़की बन गए हैं, तो अब लोग बोलते हैं कि तुम थे तो लड़का। तो हमें समाज दोनों साइड नहीं जीने देता, या तो हमें लड़के बन के रहने दो या फिर लड़की बन के दे, तो कम से कम एक जगह तो रह सकते हैं, वो भी हम जी नहीं सकते इतने सारे प्रॉब्लम्स में भी।
1: जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं बहुत संघर्ष करना पड़ा आपको स्कूल में।
0: देखिए ना, 10-11 साल की एज तक तो जब बच्चे एक जैसे होते हैं, लड़का लड़की, क्योंकि शरीर के अंग विकसित नहीं होते हैं, ना ही फेस पे बाल आते हैं, शरीर में हार्मोन्स भी चेंज नहीं होते, तो लड़का लड़की एक जैसे ही ऑलमोस्ट दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही जो 10-12 साल के एज से पहले हमारे साथ, मेरे साथ जो है वो अब्यूज होता है, सेक्सुअल अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मतलब आप भगा नहीं देते हैं कहीं से भी, लेकिन उस शरीर को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आज लोगों को पता है बैड टच और गुड टच, हमारे टाइम पे नहीं पता था और हमारे पेरेंट्स मानते नहीं थे इन चीज़ों की, ऐसे झूठ बोल रहे हैं। तो अगर कोई हमारे पड़ोस में कई ऐसे लोग थे जो हमारे शरीर को टच करते थे।
1: बच्चों ने आपको किस तरह से तंग किया वहाँ पे स्कूल में?
0: स्कूल में देखो, एक तो गेम होती थी उसमें खेलने नहीं दिया जाता था, हमारे यहाँ तब हॉकी खेला जाता था, क्रिकेट बाद में बहुत क्रेज हुआ, लेकिन हॉकी खेलते थे, राष्ट्रीय खेल था, तो हर स्कूल में प्रमोट किया जाता था हॉकी, तो मुझे खेलने नहीं दिया जाता था। और दूसरा, मुझे लड़कियों में भगा दिया जाता था, लड़कियाँ कहती तुम लड़कों में चले जाओ। सो इस तरह की जो प्रॉब्लम थी, वॉशरूम यूज़ नहीं करने दिया जाता था, लड़के वाले बुलिंग करते, लड़कियाँ हमें यूज़ नहीं करने देते थे, और क्लास में भी टीचर्स टीज करते थे, गलत शब्द का इस्तेमाल करते थे कि जनानी जैसे ऐसे मत चला करो, लड़कियों जैसा, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। रिसेस होती थी, रिसेस में मैं जब 15-20 मिनट की तो पहले तो रोते थे, मैं दीवार के पीछे जाके खूब रोती थी, उसके बाद फिर लंच अपना टिफिन खोलती थी फिर खाते, तो ना किसी के साथ खेलना, उठना बैठना। 2 बजते थे स्कूल के बच्चे अपने अपने घरों को, मैं भी भागती थी अपने घर, लेकिन अपने घर पे जाके कमरे में बंद होकर खूब रोती थी और फिर कोसती थी अपने आप को या भगवान को। तो ये सब चीज़ें मैं किसी को बता नहीं पाती थी क्योंकि कोई लोग मानने को तैयार नहीं थे। मैं अपने आप को बताती थी कि अगर मैं लड़की हूँ तो लोग लड़की मानते नहीं थे। तो ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम हुई। और 12-13 साल की एज में जब शरीर बदलने लगा तो शरीर बदलने के साथ साथ लड़के हंसते थे तो लड़की जैसा और लड़के जैसा, मतलब ये कम्बिनेशन छक्का है तू, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करने लगी। उसके बाद फिर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ, लड़कों द्वारा क्लास में अलग बिठाना, टीचर्स ध्यान नहीं देते थे। मोस्टली जो ट्रांसजेंडर का ड्रॉप आउट होता है 7th-8th के बाद शुरू हो जाता है बच्चे। आज जो हिजड़ा कम्युनिटी में अनपढ़ता है वो इसलिए है क्योंकि जब वो टीन एज में आते हैं उनको साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, स्कूल के टीचर्स भी और स्टूडेंट्स तो करते ही, घर वाले भी करते हैं, जैसे मेरे साथ में जो मेरे भाई बहन है या और भी हैं, तो माँ बाप भी ये सोचते हैं कि इसके कारण हमारे बाकी बच्चों पर प्रभाव ना पड़े और इनकी शादी विवाह ना रुक जाए
1: जी।
0: तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन 9th-10th में आके मैं बहुत डिप्रेशन में चले गई, जेंडर डिस्फोरिया हो गया था मुझे कि मैं हूँ क्या, मैं जिस चीज़ को मानती लोग उसको नहीं मानते, लोग जिसको मानते मैं उसको नहीं मानती। तो ये बीच में जो कन्फ्यूज़न था ये बहुत बड़ा सवाल मेरे

0: सामने खड़ा हो गया कि मैं हूँ कौन
1: जी।
0: जब मैं बहुत कंफ्यूजन हो गई, डिस्फोरिया हो गया मेरे अंदर, और डिप्रेशन में चले गई। मेरी माँ ने मुझे बचा लिया था उस बारी, फिर भी मैं माँ को बता नहीं पाई कि मेरे साथ हो क्या रहा। मेरे माँ बाप ने सोचा कि शायद मैं पढ़ाई के कारण डिप्रेशन में हूँ। टेंथ में आके मेरे बहुत कम मार्क्स हो गए और वह बहुत मुश्किल से पास हुई। हालांकि मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन डिप्रेशन के कारण मैं पढ़ नहीं पाती थी।
1: तो ये जो डिप्रेशन था, इससे बाहर लाने में आपकी माताजी ने बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई।
0: जी, माँ का भी साथ था। माँ समझती थी शायद मेरा बच्चा किसी प्रॉब्लम में है, और उसको भी नहीं समझ आया क्योंकि पढ़े लिखे इतने पीएचडी करे डॉक्टर लोग, जो इंजीनियर है या बड़े बड़े साइंटिस्ट, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे ट्रैप हो जाता है इंसान एक गलत शरीर में। तो एक अनपढ़ इंसान, एक गांव देहात के जो औरत है, वो कैसे समझ। लेकिन उसकी ममता जो थी, वो ममता छलकती थी, वो ममता रोती थी, वो सोचती मेरा बच्चा है, तो वो कोशिश करती थी कि तू समाज के सामने ऐसा ही बन के रहे जैसा वो चाहते हैं और अपने आप को छुपा ले। तो मैंने कोशिश की अपने आप को छुपाने की, आदमी बनने की कोशिश की, जैसे लोग बोलते पंजाबी बंदा बन जा, आदमी बन जा। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं आदमी जैसा बन जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं हाव भाव तो इंसान को प्रकट हो जाते हैं। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट कॉलेज 46 जो अभी है, वो पहले 40 सेक्टर में था, सेक्टर 40 में था
1: जी।
0: वो करीबन 89-90 में शिफ्ट हुआ है। मेरा जो बैच था वो पहला बैच था जो 46 में गया, तो मैंने वहीं से प्लस वन से लेकर ग्रेजुएशन तक किया और मैंने टॉप किया पंजाब यूनिवर्सिटी में। 93 में मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए ऑनर्स और टॉप किया। लेकिन इन सब चीज़ों के कारण बहुत कुछ अपने आप को दबाना पड़ा। मैं टॉपर थी और जो मेरे अंदर कलाएं थी, उन सब चीज़ों को मैंने छुपाया है। उसको अगर समाज एक्सेप्ट कर लेता या समाज के लोग उसको और बाहर, जैसे आज मैं खुल के बाहर हूँ, अगर उस टाइम पे होती शायद मैं आईएएस ऑफिसर होती, क्योंकि मैं आईएएस के एग्ज़ाम देना चाहती थी, लेकिन इसी कारण नहीं दे पाई क्योंकि थर्ड जेंडर कॉलम नहीं था उस टाइम पे और लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। और मैं मेल बन के पढ़ने की कोशिश करती लेकिन लोग पढ़ने नहीं देते थे। 93 में मेरा एमए एडमिशन हुआ, एमए में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में,
1: पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में
0: जी। तो मेरे को फिर लड़कों ने रैगिंग किया, मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया, मुझे पकड़ के डिपार्टमेंट के बैक साइड पे। तब 93 में उस टाइम पे कैंटीन्स नहीं होती थी, तो वहाँ पर जंगल होता था। किसी तरह मैं वहाँ से भागी और फिर मैं दोबारा डिपार्टमेंट में नहीं आई क्योंकि काफ़ी सारे रसूखदार लोग थे और अगर मैं वहाँ दोबारा जाती तो मेरे साथ रैगिंग दोबारा हो सकती थी।
1: तो ये जो आपके साथ हुआ, इस वजह से उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी वहाँ से।
0: 93 में मैंने एमए छोड़ दिया, लेकिन 94 में अगेन मैंने एक लॉ में एडमिशन लिया एलएलबी में। तो वो इवनिंग डिपार्टमेंट में था, इवनिंग में ही लॉ इवनिंग का, तो दिन में मैं जॉब करने लगी और शाम को पढ़ाई करने, करीबन एक डेढ़ महीना हो गया। उसके बाद कुछ सीनियर लड़कों ने मुझे फिर से रात को 9 बजे करीब, जब 9:45 बजे मेरी क्लास ख़त्म हुई, उस टाइम एक लड़का आया मेरे पास और कहते तुम्हें कोई बुला रहा है। तो मुझे कमरे में लेके गए क्लासरूम में, तो लड़के ने मुझे अंदर धक्का मार के कमरे का जो कुंडी है वो बंद कर दी। वहाँ पर 10-12 लड़के बैठे थे, उन लड़कों ने मेरे साथ फिर वही सेम जैसे 93 में हुआ था, रैगिंग किया, मुझे नाचने को बोला, मुझे गाने को बोला, ये सब चीजें।
1: तो और आपने किसी से शिकायत नहीं की, रैगिंग आपके साथ हो रही थी, इतना कुछ हो रहा था, तो आपने किसी को शिकायत नहीं की कि मेरे साथ इस तरह का बिहेव हो रहा है?
0: हाँ जी, मैं डरती बहुत थी कि शायद सब दुनिया को पता लग जाए कि ये हिजड़ा है, क्योंकि माँ बाप की इज्जत का सवाल भी था और फिर मुझे हिजड़ा लोग ले जाते, ये भी डर क्रिएट किया गया था कि अगर घर से निकाल देंगे फिर मेरे पास कोई और आसरा नहीं था रहने को, फिर या तो हिजड़ों में चले जाओ। लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी, तो मैंने उनके पांव पकड़ के भीख मांगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे पढ़ना है। लेकिन उन लड़कों ने मुझे वो सब करने को बोला जो मैं यहाँ पर नहीं बयान कर सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें हुई और बहुत बुरी तरह से मुझे रैगिंग किया। तो उनमें से एक लड़का था, जब मैं रो रही थी तो एक लड़का आया मेरे पास बीच में, तो उन्होंने कहा, बाकी लड़कों को बोला कि अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मत करो, और मुझे बोला कि तुम फटाफट निकल जाओ। उसने कुंडी खोली, मुझे धक्का मार के बाहर भेज दिया, वो एलएलबी में मेरे से छूट गई। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी।
1: आपने कितना सहा और इतना ज़्यादा संघर्ष किया? धनंजय, आपके संघर्ष के बारे में और जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम आपको और अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
0: जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ यही सिखाती थी कि दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, सब लोगों से मिलजुल के रहो। तो जब मैं बाहर समाज में जब बड़ी हुई और मैं लोगों से मिलना चाहती थी, मिलके मतलब बात करना चाहती थी, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो मेरा

एडमिशन होते ही क्लास में जब मैं गई तो सारे क्लास वाले एक साइड हो गए, मैं अकेली बैठी रही। तो मुझे लगा कि समाज इतना पत्थर दिल है, मुझे अपने जैसा नहीं समझ, सिर्फ कपड़ों से या मेरे शक्ल से मैं अलग हूँ तो क्या हुआ, क्यों ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं मुझे। तो ये सब चीज़ें मैं उन लोगों के लिए गाना डेडिकेट कर रही हूँ कि वो लोग सुने और समझें, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हम लोग अपना ये जो रूप है, ये रंग है, ये ऐसे मजाक में तो नहीं मैंने बदला है। हम पहले जेंडर में पैदा होने के बाद तीसरे जेंडर में आ गए हैं, पहले जेंडर में सारे राइट्स थे, हम दूसरे जेंडर में भी नहीं आए फीमेल वाले में, हम तीसरे जेंडर में आ गए जहाँ पर कोई राइट्स नहीं है। तो मेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया था कि मैं अपने सारे राइट्स छोड़ के तीसरे जेंडर पर, जहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स नहीं, जहाँ पर कोई शादी का राइट्स नहीं है, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं है, सड़कों पे आ गए। तो मैं खुशी से तो नहीं आई, कहीं तो कुछ तो था जिसकी पर्दादारी है, जिसके परमात्मा ने जो मुझे बनाया है वो बाहर अपने प्रचंड रूप में आ रही है। ये जो गाना है उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है।

0: आदमी सी। दोस्तों, जिंदगी नामा प्रोग्राम आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किया जा रहा है और आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर धनंजय चौहान से। एक लंबा संघर्ष इनको अपनी पहचान बनाने में लगा है। धनंजय, हम आपके संघर्ष की बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि किस तरह से आपने LLB में एडमिशन लिया और किस तरह से आपकी पढ़ाई छूट गई।
1: बीच बीच में डिप्लोमा किए जो बहुत शॉर्ट टर्म के थे, जैसे फ्रेंच में मैंने किया, रशियन में डिप्लोमा किया, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया, लेकिन जो मैं रेगुलर पढ़ना चाहती थी यूनिवर्सिटी में वो नहीं हो पाई। बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। आज मैं 20-25 साल के अंतराल बाद फिर दोबारा एडमिशन ली, तो एक लंबे संघर्ष के बाद एक हिम्मत करके अपनी एक पूरी आइडेंटिटी के साथ वहां पर एक गई हूँ। लेकिन वो आइडेंटिटी लेने के पीछे भी बहुत लंबा संघर्ष है, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जब हमें जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो सुप्रीम कोर्ट की 15 अप्रैल 2014 की जो जजमेंट आती है, उससे पहले लंबा संघर्ष था। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें राइट्स दे दिए।
0: तो आगे पढ़ने के लिए किसने प्रेरित किया आपको, ये जो हिम्मत आई आप में वो कहां से आई?
1: ये हिम्मत एक तो अपने आप में थी, क्योंकि मेरी माँ का भी सहारा

0: था मेरे को, लेकिन सबसे बड़ी हिम्मत थी खुद की सेल्फ, जो जो अपना आत्मविसम्मान था। जब मेरे साथ रेप हुआ, किडनैपिंग हुई और मुझे मारा पीटा गया, एक एक दिन का जो है वो लंबा संघर्ष है। एक बारी मुझे किडनैप करके लड़कों ने, 20 लड़कों ने अंबाला में ले जाके मुझे वो सब करने को बोला जो मैं यहाँ पर नहीं बयान कर सकती हूँ। फिर अंबाला के जो बस स्टैंड पे, वहाँ पर छोड़ दिया गया। और जब मैं कंप्लेन करने गई पुलिस में, तो पुलिस ने कहा तुम्हारे साथ भी होता है, उनको लगा लड़का है। और मुझे हंसी मजाक करने लगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने, तो मैं वहाँ से फिर चली गई। मैंने कहा ये लोग नहीं सुनेंगे। एंड IPC 377 भी था, तो पुलिस वाले ने बहुत सारे उस लॉ को भी मिसयूज करते थे, केस रजिस्टर नहीं करते थे, तो वो फिर मैंने नहीं करवाया। तो इस तरह का जो संघर्ष था वो 2002-03 तक चला, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर जब तक मैं खुद की पहचान के साथ खड़ी नहीं होंगी और खुद को अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं जीऊंगी, अपनी पहचान के साथ बाहर नहीं आऊंगी, तब तक लोग मुझे लूटते रहेंगे, मुझे मेरे शरीर को छीनते रहेंगे, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते रहेंगे।
1: किस तरह से आपके दिमाग में आया कि मुझे खुद भी जागरूक होना है और दूसरों को भी जागरूक करना है कि अपनी पहचान

0: चला, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर जब तक मैं खुद की पहचान के साथ खड़ी नहीं होंगी और खुद को अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं जीऊंगी, अपनी पहचान के साथ बाहर नहीं आऊंगी, तब तक लोग मुझे लूटते रहेंगे, मुझे मेरे शरीर को छीनते रहेंगे, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते रहेंगे।
1: किस तरह से आपके दिमाग में आया कि मुझे खुद भी जागरूक होना है और दूसरों को भी जागरूक करना है कि अपनी पहचान के साथ ही जीना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है?
0: मुझे एक दोस्त मिला, वो उसको घर से निकाल दिया गया था गाजियाबाद में, तो वो चंडीगढ़ में किसी तरह बस स्टैंड पे सोया था, पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएट है बीकॉम। तो वो जब मुझे मिला बस स्टैंड पे, हम लोग बैठे थे, तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से? कहते मैं गाजियाबाद। उसने अपने सारा बैकग्राउंड बताया कि मुझे घर से निकाल दिया गया जेंडर आइडेंटिटी कारण, मेरी फैमिली ने निकाल दिया। तो वो एनजीओ में काम करता था, तो उसने मेरे को सारा एनजीओ के बारे में बताया, एनजीओ के साथ काम करके उसने सीखा कि किस तरह से काउंसलिंग की जाती, अवेयरनेस। तो मैंने काफी सारी बातें उससे सीखी। फिर हम लोगों ने खड़े होके, मतलब दोनों ने हाथ मिला और हम लोगों ने ठान लिया कि हम लोग लोगों को अवेयर करेंगे। जब मैं लोगों को अवेयरनेस करने शुरू किया तो लोगों ने नहीं सुना हमारी बात उस टाइम पे, पर हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हम लोगों ने लगातार लोगों को सेंसिटाइज करते रहे। और बाद में सोचा, किसी ने कहा कि तुम लोग दुनिया को तो अवेयर कर रहे हो, खुद भी अवेयर हो कि नहीं हो, एंड अपनी आइडेंटिटी के साथ क्यों नहीं तुम लोग बाहर आते हो? ये जो छुपा छुपी का खेल है कब खत्म होगा? तुम्हारी फैमिली को पता है? तो फिर मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यस, एक होता ना कि घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि पहले अपने घर को ही संवारा जाए, खुद को, कि मैं कौन हूँ। फिर जब मैं कौन हूँ कि यात्रा शुरू हुई, तो मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ना वेदों से शुरू किया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिखा होगा कि ये जो नर या नारी दोनों को अपने आप को नहीं मानते हैं या दोनों के बीच के लोग हैं, वो कौन है? कहीं ना कहीं तो लिखा, वेदों में लिखा, वेद में एक मंत्र आता है विकृतिम एवं प्रकृतिम, जो विकृति है वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है, व्हाट इज अननेचुरल इज आल्सो नेचुरल। तो ये सब वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में हर जगह आत्मा आत्मा आत्मा, शरीर का कहीं वर्णन नहीं था। तो मैंने फिर बाद में ये रियलाइज किया कि शरीर को हम लोग वैसे ही फालतू में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हर जगह हर ग्रंथ में ये लिखा कि आत्मा इम्पोर्टेंट है और आत्मा को स्त्री भाव में वहाँ पर प्रदर्शित किया कि मेरी आत्मा जीवित है, मेरी आत्मा भूखी है, प्यासी है। आत्मा के बारे में ज्यादा इसको औरत की तरह शब्द को इस्तेमाल किया गया, तो मैंने कहा मैं तो औरत हूँ। गीता में एक श्लोक आता है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ, बाकी प्रकृति स्त्री है। फिर मैंने मान लिया कि इस दुनिया में कोई पुरुष नहीं है, केवल ईश्वर ही पुरुष है, और वृंदावन में सब स्त्री भाव में जाते हैं, सखी भाव में जाते हैं। और भगवान के 24 अवतारों को जब मैंने पढ़ा तो उसमें सारा ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा गया कि भगवान नर रूप में किसी में भी किसी का उद्धार नहीं किया, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, चाहे वराह रूप में, मत्स्य अवतार में, नरसिंह अवतार में, किसी में, कूर्म अवतार है, वहां पर दो का कॉम्बिनेशन था, और नरसिंह अवतार में तो तृतीय प्रकृति पूरा, जहां पर तीसरी चीज ना वो दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, तो हम तो संध्या थी। अगर पुरुष को दिन मानो, अगर औरत को रात मानो, तो हम संध्या हैं। और संध्या जो संधि है वो दो बार आती है, एक सुबह आती है, एक शाम को आती है, और जो संध्या होती है बहुत सुंदर होती है, उसके अंदर दोनों गुण होते हैं, दिन और रात के। ऐसे हमारे नर और नारी के दोनों गुण हैं। हम अपनी विराट प्रकृति के साथ, विराट जो हमारी सुंदरता है, उसके साथ जीते हैं, हम दोनों को समझते हैं, पुरुष को भी और नारी को भी। और इस दुनिया के बारे में जब मुझे लगा कि मैं जो हूँ मैं पूर्ण हूँ, एक आदमी और औरत हो सकता है वो अर्ध है, आधा है, हमें अर्धनारीश्वरी बोला गया, लेकिन मैंने जो पुराणों में पढ़ा, उपनिषदों में, तो मुझे लगा कि हम अर्धनारीश्वरी नहीं, हम पूर्ण नारेश्वर हैं, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं
1: जी।
0: फिर मैंने मानना शुरू किया कि आई एम अ सुपर वुमन, आई एम नॉट अ वुमन, आई एम नॉट अ मैन, आई एम अ सुपर वुमन। सो मैं अपने आप को सुपर वुमन मानना शुरू किया कि मैं नर और नारी से कहीं ऊपर हूँ और मेरे अंदर वो दोनों गुण है। फिर मैंने गर्व अपने आप में मानना शुरू किया कि मुझे हीन भावना के साथ नहीं जीना है, मुझे गर्व के साथ जीना है। मुझे जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो मेरे को किसी ने कहा कि यू आर डिफरेंट, तो मैंने कहा यू आर सेम
1: जी, बिल्कुल।
0: जो ये लड़ाई थी लंबी, फिर एक दिन आया ऐसा कि मैं ऐसे मोड़ पे खड़ी थी जहाँ पर चौराहे पे, जहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग, वहाँ पर बधाई का भी है, भीख मांगने का भी है, जैसे ट्रेन में मांगते हैं सब, और एक तरफ हिजरा परंपरा है, और एक रास्ता था जो बहुत सुंदर था, जो प्रगतिशील था, वो था एजुकेशन का। तो मैंने सोचा कि बधाई का, भीख मांगने का और हिजड़ा परंपरा, जो भीख बधाई मांगना, ये तो आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं है। मैंने सोचा कि मैं ताली नहीं बजाऊंगी, मैं ताली बजवाऊंगी। तो मैंने वो जो सफ़र है वो एजुकेशन की तरफ मोड़ दिया अपने आप,
1: और

0: घुंघरू से किताब तक का सफर जो है आपका वो शुरू हो गया फिर।
1: जी, क्योंकि घुंघरू भी बांधे, ऐसा नहीं कि मैंने घुंघरू नहीं बांधा, लेकिन घुंघरू मैंने विद्या के रूप में बांधे हैं। मैंने कथक सीखा था और वो घुंघरू मैंने उन घुंघरू का गलत इस्तेमाल नहीं किया। और उन जो
0: कथक आपने बताया सीखा था आपने, तो कहाँ से सीखा आपने कथक?
1: मैंने कथक जो सीखा प्राचीन कला केंद्र से सीखा था और गुरु शोभा कोसर जी के घर पे ही, उनके जो गुरु थे उनसे मैंने सीखा, कन्हैया लाल जी से, तो वो घर पे ही सिखाते थे 15 सेक्टर में। तो काफ़ी देर तक मैं सीखती रही, लेकिन वही जेंडर जो था बीच में आ जाता था कि मैं जननी तो नहीं हूँ लेकिन मैं जनाना हूँ। और जो जनाना होता है वो जन्म नहीं देता है, वो पालन करता है।
0: जी,
1: तो हम पालने वाले हैं। हमारा वजूद, किन्नरों का वजूद था वो पालन हार जैसा था। हम रानियों के जो हरम थे उसमें थे हम। आज जो आप देख रहे हैं, औरतों के जो सम्मान नहीं हो रहा है या बच्चियों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, तरह तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, वो इसलिए हो रही है कि किन्नरों को बीच में से निकाल दिया गया है। जब तक किन्नर 1857 से पहले, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की लास्ट जो सल्तनत थी वो खत्म होने के बाद हमें अंग्रेजों ने क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया। 1871 का जो एंटी ट्राइबल लॉ था उसमें हमें अपराधी घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम भिखारी बन गए। उससे पहले कहीं भी किसी जगह पे कोई वर्णन नहीं आता कि हम भिखारी थे। हम राजा थे, राजा लोगों के साथ रहते थे, हमारी जागीरें थी और वो जागीरें छीन ली गई, पेंशन छीन ली गई। तो उसके बाद हम लोगों ने बगावत कर दी अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसलिए हमें अपराधी घोषित कर दिया गया।
0: धनंजय जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। एक गीत आपकी पसंद का अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे।
1: मेरा एक बहुत पसंदीदा जो गीत है वो दोस्ती फिल्म का है, और उसमें जाने वालों जरा मुड़ के देखो जरा, ये मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि जब भी मैं खड़ी होती हूँ और लोग मुझे इग्नोर करते हैं तो मेरे अंदर से आवाज़ आती कि मैं भी तो आपकी जैसी हूँ, मैं कोई एलियन तो नहीं हूँ, मैं बाहरी दुनिया से नहीं आया हूँ।
0: धनंजय जी, आपकी जिंदगी से जुड़ी बातें हम यूं ही जारी रखेंगे जिंदगी नामा प्रोग्राम के अगले एपिसोड में। तो चलते चलते आप हमारे सुनने वालों को, समाज को क्या कहना चाहेंगे?
1: हमें स्पेशल राइट्स नहीं चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, हमें स्वीकारिता चाहिए। बस हमें ये चाहिए कि एक्सेप्ट कर लीजिए, हमें फैमिली में घर वापस चाहिए, हमें माँ बाप के साथ रहना है, माँ बाप की सेवा करनी है, अपने भाई बहनों के साथ रहना, बस इतना ही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें एक्सेप्ट कर लीजिए।
0: धनंजय, आपने अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें हमारे साथ शेयर की। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी चंडीगढ़ के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: दोस्तों, आज यादों का कारवां में हम आपको सुनवा रहे थे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी। इनसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे यादों का कारवां कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। अब यादों का कारवां श्रृंखला की इस कड़ी को समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। अभी आप सुन रहे थे हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, आज ही खरीदे। 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
3: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
4: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए

0: तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
2: हेलो सिटी ब्यूटीफुल, बोल दिया।
3: क्या मैं बोलूं?
4: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम, हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
1: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपकी फरमाइश के फिल्मी गीत सुनवाते हैं। तो आज जिन फिल्मों से आप अपने फरमाइश के फिल्मी गीत सुन सकते हैं वो फिल्में हैं डॉन, यादों की बारात, जंजीर, द ग्रेट गैम्बलर और धर्मात्मा। फिल्में एक बार फिर से आपको बता देते हैं, डॉन, यादों की बारात, जंजीर, द ग्रेट गैम्बलर और धर्मात्मा। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए आप हमें फ़ोन करें। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। नंबर फ्लैश हो रहा है, बात करके देखते हैं कौन श्रोता ऑनलाइन है। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
5: नमस्कार सर जी, मैं अरविंद कुमार गांव मोरनी हिल से बोल रहा हूँ सर।
1: जी अरविंद जी, कैसे हैं आप?
5: बढ़िया सर, आप सुनाइए सर जी।
1: बहुत बढ़िया। और आकाशवाणी चंडीगढ़ के प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको आजकल?
5: बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, आज सुबह भी प्रोग्राम आया, अच्छा दिया उन्होंने असलम जी ने।
1: जी
5: बहुत अच्छे प्रोग्राम चले हुए हैं, जनता जागृत हो रही है, मैसेज सभी के पास पहुँच रहे हैं जी।
1: तो यादों का कारवां श्रृंखला आप सुन रहे हैं लगातार, जिसमें हम लोग पूर्व प्रसारित कार्यक्रम आपको सुनवा रहे हैं।
5: सर इस प्रोग्राम में मेरे आज फर्स्ट ही कॉल लगी है, आपके भेंट हुई, फर्स्ट कॉल ही है सर।
1: तो कौन सी फिल्म का कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
5: सर मुझे डॉन फिल्म का सुना दो या जंजीर फिल्म का सुना दो या
1: नहीं, कोई एक फिल्म बताइए, उसमें से आप बताइए कौन सा गाना।
5: सर डॉन फिल्म का सुना दो, डॉन मैं हूँ डॉन
1: जी। चलिए अरविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आइए सुनते हैं डॉन फिल्म का ये गीत, आवाजें हैं किशोर कुमार और साथियों की।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल। और अब जो फिल्में हमारे पास बची हैं वो हैं यादों की बारात, जंजीर, द ग्रेट गैम्बलर और धर्मात्मा। इन फिल्मों में से अपनी पसंद का कोई फिल्मी गीत सुनने के लिए आप अभी हमें फ़ोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं 266-0615, 266-0617 और 266-0619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, मैं सेक्टर 21 पंचकूला से कर्नल उमेश्वर पठानिया बात कर रहा हूं।
0: जी कर्नल उमेश्वर पठानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं जी?
0: बहुत बढ़िया है। आप सब श्रोताओं का प्यार मिल रहा है आकाशवाणी चंडीगढ़ परिवार को।
1: बिल्कुल
0: जी। तो कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको?
1: बहुत अच्छा। ये जो आपका जो चंडीगढ़ का ऑल इंडिया रेडियो है 107.2, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और ये सारा दिन हमें एंटरटेन करता है
0: जी। तो
1: आपके सारे प्रोग्राम बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मेलोडियस, स्पेशली जो आपके फरमाइश के गाने हैं, आपके जितने भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और बीच में जो डॉक्टरी सलाह के कार्यक्रम हैं वो भी बहुत अच्छे हैं
0: जी।
1: बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके आते हैं।
0: तो अभी हमने एक जो श्रृंखला शुरू की है यादों का कारवां,
1: हाँ जी,
0: तो उसमें हम लोग जो हमारे पूर्व प्रसारित अच्छे कार्यक्रम हैं तो हाँ वो हम लोग प्रसारित कर रहे हैं, आपके लिए लेकर आ रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: वो
1: हाँ
0: कैसे
1: जी,
0: लग रहे हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके पुराने प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हैं। आई रिमेम्बर एक आपका रात को 7:45 प्रोग्राम आता था, मन भवन गीत, आधे घंटे का आपका प्रोग्राम आता था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, उसमें बहुत अच्छे गीत आप सुनाते थे।
0: तो आज जो यादों का कारवां हमने सुनवाया वो सुना आपने?
1: हाँ जी, आज भी सुना है और इससे पहले भी जो आप यादों का कारवां के प्रोग्राम में सॉन्ग सुनाते थे वो सुनते हैं, बहुत अच्छा।
0: चलिए कर्नल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब गाना कौन सा सुनवाएं?
1: हाँ, हम मुझे गाना आप सुनाइए, फिल्म धर्मात्मा का
0: जी।
1: ये 1975 की बहुत हिट फिल्म थी
0: जी,
1: और इसका मुझे एक गाना सुनाइए आप, तूने किसी से कभी प्यार किया है,
0: मुकेश और कंचन की आवाजों में।
1: बिल्कुल जी, मुकेश और कंचन की आवाज एंड म्यूजिक बाय कल्याण।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मेरा नाम धवल है
0: जी। धवल
1: जी? जी धवल है, और मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया था, तो गाड़ी में आपका FM सुन रहा था, आपको कॉल किया, लकली मेरा कॉल लग गया
0: जी। धवल जी दिल्ली से चंडीगढ़ में काम के सिलसिले में आए हैं?
1: हाँ, बस काम के सिलसिले में।
0: क्या काम करते हैं?
1: मेरा गारमेंट का काम है।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो यहाँ पे जो गारमेंट्स हैं वो सप्लाई करते हैं आप?
1: हाँ, कुछ सप्लाई करते हैं, ऑर्डर बेस पे काम करते हैं, बस चल रहा है रोजी रोटी।
0: जी चलिए, इसी तरह से अच्छा आपका काम चलता रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।
1: जी जी शुक्रिया।
0: तो आकाशवाणी चंडीगढ़ के कार्यक्रम सुनते रहते हैं दिल्ली में?
1: हाँ, हमेशा सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा,
1: आकाशवाणी के काफी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से सुनते रहते हैं?
1: जी जी जी

0: जी, तो क्योंकि ये फरमाइशी कार्यक्रम है, तो जो अब फिल्में हमारे पास बची हैं वो हैं द ग्रेट गैम्बलर, जंजीर और यादों की बारात।
1: मैं द ग्रेट गैम्बलर मूवी का सॉन्ग सुनना चाहूंगा, मेरा क्या नाम है दीवाना,
0: पहले पहले प्यार की मुलाकातें याद हैं,
1: याद है? हाँ
0: सच में याद हैं आपको?
1: काफी टाइम हो गया, 15 साल हो गया शादी के, कुछ नहीं याद बचा।
0: अच्छा, नहीं कोई तो अच्छी याद होगी ना।
1: हाँ बहुत सारी यादें हैं,
0: हाँ, तो
1: लाइक
0: कहीं
1: उनमें
0: घूमने
1: सबसे
0: गए
1: बड़ी,
0: हों।
1: उसमें सबसे बड़ी यादगार तो मेरा बेटा है जो आज
0: जी
1: मेरे कंधे से कंधा मिला के चलने लगा है।
0: जी जी जी बिल्कुल। चलिए धवल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: जी,
0: सुनवा
1: शुक्रिया
0: रहे हैं आपको
1: मुझे।
0: द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गीत।
1: जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर गांव कुतुबपुर सरसावा से निखिल
0: जी,
1: आपके नियमित श्रोता।
0: निखिल जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर, आज तो बारिश हो रही है सर हमारी इधर तो।
0: अच्छा चलिए बारिश का आनंद लीजिए आप वहां पे। तो हमारे पास दो फिल्में बची हैं, जंजीर और यादों की बारात। तो कौन सी फिल्म का कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: सर जंजीर फिल्म का सुनवा दिए, चाकू छुरिया तेज करा लो।
0: आशा भोसले की आवाज में।
1: जी जी सर, जी सर।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: सर सब सुनते हैं सर, विशेषकर हमको आपको पॉप टाइम अच्छा लगता है।
0: पॉप टाइम में क्या अच्छा लगता है आपको?
1: बस सर वो पिंकी जी की आवाज, पिंकी जी का बोलना चलना सब अच्छा लगता है सर।
0: चलिए निखिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर जंजीर फिल्म का ये गीत।
1: थैंक यू सर।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल, और इस समय हमारे पास एक ही फिल्म बची है, यादों की बारात। इस फिल्म का गीत सुनने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ जी नमस्कार जी, मैं डिंपल कश्यप, बराड़ा हरियाणा से।
0: जी डिंपल जी, कैसे हैं आप?
1: हेलो सिटी ब्यूटीफुल तो हमारा फेवरेट प्रोग्राम है
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो
1: शुरू से ही है
0: जी। और कैसी चल रही है जिंदगी आपकी?
1: बढ़िया, आपका प्यार मिलता रहता है आकाशवाणी का।
0: तो एक ही फिल्म बची है, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: हाँ जब एक ही बची है तो फिर एक ही सुनाना पड़ेगा। जी मैं आया ही लेट है थोड़ा सा, तो आपकी आवाज जब देखी मैंने, पहले आके वो नहीं करा तो मैं यार आपके छोटी छोटी फिल्म प्रोग्राम चल रहा है,
0: जल्दी बताइए कौन सा गाना सुनवाएं
1: जो जैसा आपको अच्छा लगे।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: खुश मोहम्मद बोल रहा हूँ, चक्कर 8-5। नमस्कार सर
0: जी। खुश मोहम्मद जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया, आप बताइए।
0: तो क्योंकि फिल्म एक ही बची है हमारे पास, यादों की बारात।
2: हाँ जी सर।
0: अभी डिंपल जी से बात हुई, उन्होंने तो कोई गीत बताया नहीं, तो आप

0: ये कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे यादों की बारात फिल्म का?
1: सर
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।

0: दोस्तों जी तो बहुत चाहता है कि आपसे और भी बातें की जाएं, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। अब आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल समाप्त करने के अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो सिटी ब्यूटीफुल, बच बोल दिया।
2: ए, क्या मैं बोलूं?
3: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। मोदी ने कहा है कि आपदाओं और व्यवधानों ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
1: महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेनर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी

0: इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित के पास। अंकित, ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज अंतिम दिन सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है?
2: जी कनक, आपको बता दूं कि भारत चौथी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस समूह में अब 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार पिछले 5 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो ये दिखाता है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया।
1: जी,
2: इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। कनक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वह नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। जी कनक,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद अंकित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादेह से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले 3 दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

तन्हा दिल एल्बम से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान की आवाज में, राम संपत का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत दाग द फायर फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितम्बर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे चंदा की डोली एल्बम का नाम। नुसरत बद्र ने इसे लिखा, संगीत सोनू निगम का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मेरी चुनर उड़ उड़ जाए एल्बम से। ललित सेन ने इसे लिखा और उन्हीं का संगीत था। और इससे पहले जो आपने गीत सुना दीवाना एल्बम से, सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर ने उसे लिखा और साजिद वाजिद का संगीत था।

0: पिनाज मसानी की आवाज़ में गज़ल अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल संपन्न होता है।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

लीजिए सुनिए हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में 1:05 पर और फिर पंजाबी में 1:10 पर हमारे जालंधर केंद्र से। प्रादेशिक समाचार हम आप फिर सुन सकते हैं शाम 6:10 पर पहले हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में।

कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे पहले 1:15 पर और शाम 5:05 पर। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे 1:30 पर। दोपहर 2 सुनिए कार्यक्रम त्रिवेणी। सदाबहार नगमे आप सुनिएगा 2:30 पर।

नाट्य तरंग प्रोग्राम में बाद दोपहर 3:30 पर सुनिए नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण। रूपांतरकार हैं शैलेंद्र, निर्देशक हैं विजय दीपक छिब्बड़। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। आज के इस कार्यक्रम में बिमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत सुनवाई जाएगी। शाम 5:30 पर सुनिए कार्यक्रम नॉनस्टॉप नगमे। कार्यक्रम अमृतवाणी प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर।

शाम 7 बजे विशेष जयमाला के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सैनिकों की शौर्य गाथा। आज इस कार्यक्रम में महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की शौर्य गाथा सुनवाई जाएगी।

0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद के विरुद्ध कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो और उन्हें अंजाम देने वाला कोई भी हो। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार से आवाजाही, आतंकवाद को आर्थिक मदद और आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने के विरुद्ध कार्रवाई का आह्वान किया गया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों तथा आतंकी संगठनों के विरुद्ध मिलकर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। संयुक्त घोषणा में पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव पर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई है। इसमें सभी पक्षों से संयम बरतने और ऐसी कार्रवाइयों से बचने का आह्वान किया गया है। हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। ये राज्य में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता को बेहतर बनाने तथा विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इस सहयोग से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमिता तथा कौशल विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। समझौते के तहत IIT रोपड़ प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण तथा उत्कृष्टता केंद्र के विकास के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव, परिणाममुखी शिक्षा को बढ़ावा देने संकाय एवं विद्यार्थियों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम, सर्टिफिकेट कोर्स, कार्यशालाएं तथा ज्ञान वर्धन के लिए भ्रमण आयोजित करने में भी सहयोग करेगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के लिए गठित 14 पीठों ने मुकदमा पूर्व मामलों, लंबित मामलों और यातायात चलानों सहित कुल 30,145 मामलों का निपटारा किया।

इन मामलों में कुल 18,48,13,828 रुपये की राशि का समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त नियमित पीठों और स्थायी लोक अदालत द्वारा 16,38,342 रुपये की राशि से संबंधित 20,230 मुकदमा पूर्व मामलों का निपटारा किया गया। राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोग चंडीगढ़ ने 425,76,94,574 रुपये की राशि से संबंधित 62 मामलों का निपटारा किया, जबकि ऋण वसूली अधिकरण द्वितीय ने 7,89,00,000 रुपये की राशि से संबंधित 10 मामलों का निपटारा किया। कैथल में कल आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 13,260 मामलों का आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया। इन मामलों से संबंधित 9,30,97,907 रुपये की राशि का भी निपटान हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी कंवल कुमार ने बताया कि लोक अदालत में 26,842 लंबित मामले सुनवाई के लिए रखे गए थे। जींद जिला मुख्यालय न्यायिक परिसर में कल लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत में 15,797 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 7,14,76,708 रुपये की राशि का समाधान हुआ। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी श्रीमती जसबीर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 17,598 मामले रखे गए थे। इसके अतिरिक्त ई लोक अदालत के माध्यम से 10 दीवानी मामलों तथा प्रक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के 6 मामलों का भी निपटारा किया गया। ई लोक अदालत के माध्यम से कुल 86,18,402 रुपये की राशि प्राप्त हुई। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा सुमन सैनी ने कल कुरुक्षेत्र के गांव कलाल माजरा में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयोजित आयुष ग्राम शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने आयुष विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन भी किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी जगजीवन सिंह तों प्रादेशिक खबरां सुनो। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार की मलकीयत वाले थर्म प्लांट विचों कोले की कोई कमी नहीं है। सूबे ने पहला ही पछवाड़ा कोला खान चालू कर दिता है ता जो सूबे दियां अपनियां बिजली उत्पादन सहूलतों लई कोले की ढुकवीं उपलब्धता यकीनी बनाया जा सके। पंजाब के बिजली और लोक निर्माण मंत्री तरनप्रीत सिंह सौंध ने कल एक प्रैस कॉन्फ्रेंस कोले की घाट बारे झूठे दोषों का खंडन करदिया यह गल कही। हालांकि उन्होंने कहा है कि मुद्दा निजी थर्मल पावर प्लांटों को कोले की सप्लाई का जिस लई कोल इंडिया जिम्मेवार है। उन्होंने कहा है कि मुख्य सकत्तर की अगवाई में साड़ी टीम अज प्लांट अधिकारियों नाल मुलाकात कर रही है और 24 तो 48 घंटे के अंदर इन प्लांटों को चालू करने की संभावना है।
1: तीन यूनिट्स दे विच तकनीकी खराबी आई सी जिदे चो एक यूनिट दी तकनीकी खराबी बिल्कुल ठीक कर दिती गई। साडे अफसरां ने उहनां दे नाल जाके मोनीटर करके एक यूनिट चालू करता। असीं इहनां दे नाल चीफ सैकटरी साहब ने 4 बजे मीटिंग भी रखी है। जिहड़े दो यूनिट ने सानू उम्मीद है कि असीं 24 तो 48 घंटियां दे विच प्राइवेट प्लांट वालियां नू कह के ये रिपेयर करा के दो प्लांट असीं चलवा लांगे, जिहदे नाल 24 तो 48 घंटियां दे विच जिहड़ा मेजर के नैरो पासिंग चो जो साडे कट लग रहे ने असीं कवर अप कर
0: जाएंगे। पंजाब खेतीबाड़ी खेत्र बिजली निर्विघन बिजली सप्लाई की महत्ता उजागर करते हुए मंत्री ने दसिया कि उन्होंने केंद्रीय बिजली मंत्री को यह अपील की है कि वह यकीनी बनाउण कि पंजाब नूं केंद्रीय बिजली पूल तो अपना पूरा अते सही हिस्सा मिले। उन्होंने कहा है कि पंजाब नूं इस वेले केंद्रीय बिजली पूल तो अपने हिस्से के मुकाबले 1051 मैगावाट घट बिजली मिल रही है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी कमिशन के मैंबर हरदीप सिंह गिल ने कल जलंधर में सफाई कर्मचारी यूनियन के आगुआ नाल मुलाकात की। इस मीटिंग दौरान उन्होंने समस्यावां ते मंगां नूं विस्थार नाल सुनिया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने श्री गिल नूं अपनियां सेवावां नाल संबंधित वख-वख समस्यावां ते मंगां बारे जानकारी दित्ती। श्री गिल ने कर्मचारियों नूं भरोसा दित्ता है कि उन्हां दीआं जायज़ मंगां दे हल लई हर संभव यतन कीते जाणगे। श्री गिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली केंद्र सरकार सफाई कर्मचारियों नूं भलाई नूं यकीनी बनाएगी और उन्होंने अधिकारां की रक्षा लई गंभीरता नाल काम कर रही है। उन्होंने दसिया कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम द्वारा सफाई कर्मचारियों की भलाई नाल संबंधित एक विशेष खरड़ा पेश

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रॉकी से, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: रॉकी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त करने की निधि वाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5 और 25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई
2: अरोड़ा प्लाईवुड
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स सीलिंग्स एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स सब एक ही छत के नीचे
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़ कॉल 9876277700
0: FM 107.2 MHz पर ये विविध भारती चंडीगढ़ है। आइए सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती के मुंबई से रिले करेंगे।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे बेमिसाल फिल्म से आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात की जब बात चली है तो एक बहुत ही खास मुलाकात उन्हें याद आती है और वो अपनी शादी का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी जो शादी हुई है वो भी विविध भारती के जरिए ही हुई है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपको सुनवाते हैं कि ये भी विविध भारती के फैन रहे हैं और इनकी जो अर्धांगिनी है वो भी विविध भारती की दीवानी थी और बस ऐसे ही धीरे धीरे विविध भारती से जुड़ाव होता रहा और नज़दीकियाँ हुई और फिर शादी हो गई। आज हम साथ साथ हैं और साथ साथ में ही ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत अच्छा लगा ये मैसेज पढ़कर हमें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें बस याद बनकर रह जाती है, आज लगता है उस धुंधली यादों से कोई चादर हटा दे और हम खो जाएं उन पुरानी मुलाकातों में। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि अहमदाबाद जाते हुए परिवार से ट्रेन में हुई, जो सामने की बर्थ पर जा रहे थे वहाँ उनसे मुलाकात हुई और वे सज्जन तो भद्र पुरुष थे ही, उनकी श्रीमती जी बड़ी हंसमुख और मिलनसार महिला थी और वो अकेले जा रहे थे, मैगजीन में डूबने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दोनों से इतने घुल मिल गए कि बातों ही बातों में घंटों का सफ़र कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा होता है अक्सर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात तो सभी करते हैं लेकिन मुलाकातों में जीते भी हैं, लेकिन ये मुलाकातें कैसी हैं और उसके मूल्यांकन क्या हैं ये कितने सोच पाते हैं, किंतु ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ मुलाकातें याद बनकर हृदय में बस जाए तो उसका क्या ही कहना। सदियों से विभिन्न मुलाकातों

के बीच ऐसी मुलाकात की तो प्रतीक्षा रहती है हमेशा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि ट्रेन में सफ़र करते हुए एक लड़की और उनकी सहेलियों से मुलाकात हुई और अंताक्षरी वगैरह खेली, और अभी उन्हें वो याद आती है, वो सुनहरी मुलाकात आज तक भुलाए नहीं भूलती है। हमारे एक और श्रोता है, उनका कहना कुछ अलग तरीके से है। वो कहते हैं कि सफ़र में न जाने कितने लोग साथ आते हैं, कितने साथ छोड़ देते हैं, कभी हिसाब नहीं रखा, क्योंकि चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला, वो इसमें बिलीव करते हैं। कोई बात नहीं, सफ़र तो हमें करना ही है, कभी कोई साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो हमें अकेले ही चलना है, लेकिन ये सफ़र जो है वो ज़रूर तय करना है। फ़िलहाल सुरीला सफ़र में आप मेरे साथ हैं और हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: अभिमान फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज थी।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम याद, प्रोग्राम सुरीला सफर। यादों की बात चली है तो यादों की महफिल बोलने वाली थी, लेकिन सुरीला सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरे यानी अनुराधा के संग। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि ट्यूशन पढ़ते समय शिक्षक द्वारा मेरी गलतियों पर मुझे डांटते देखकर उसकी नज़रें उठाना और फिर मुस्कुराना और फिर मुझसे नज़रें मिलते ही नज़रें झुकाकर बस मंद मंद मुस्काना, जाने कैसी बिजली सी कौंध गई थी दिल में और दिल रोशन हो गया था। संवाद का लेन देन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये सुनहरी यादें बनकर अब तक दिल में बसी हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातों का मौसम आ गया है तो गाने तो बनते हैं, बिल्कुल गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन आप कौन से गीत का इंतज़ार कर रहे हैं ये ज़रूर लिख भेजिए। देखते हैं अब फहरिस्त जो बाकी की बची है उसमें वो गीत आता है या नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अजनबी था मगर कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब अचानक सामने आ गया। मुलाकात तो बस चंद लम्हों की थी पर उसकी खामोशी देर तक मेरे साथ चलती रही। जी हाँ बिल्कुल, कुछ मुलाकातें एकदम खामोश रहती हैं, संवाद भी बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, लेकिन वो एक चेहरा, वो एहसास कभी नहीं भूल पाता। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

किशोर कुमार की आवाज में गीत धर्मात्मा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इंदिवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक ऐसी मुलाकात का जिक्र करना चाहूंगा जिसने मेरी सोच और शख्सियत को ही बदल दिया है। कुछ साल पहले अपने दोस्तों के साथ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एलिफेंटा केव्स जाने के लिए बोट की कतार में खड़े थे और वहां उन्होंने देखा कि बहुत ही मशहूर उद्योगपति अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और ठीक उनके पीछे खड़े हैं, और इन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप लाइन में खड़े होने के बजाय पहले बोट में बैठ जाइए। लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए मना किया और ये कहा कि मैं यहाँ एक आम नागरिक के तौर पर हूँ और मैं लाइन में ही खड़े रहूँगा। ये कहीं का जो बातें हैं कहीं ना कहीं उन्हें झकझोर के रख दिया और तब से उनकी सादगी के और भी ज़्यादा फैन हो गए। जी हाँ, ये तो है कि सादगी तो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए जहाँ से भी हमें सीखने को मिले, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती इस वक्त न जाने कितने सारे करोड़ों की तादाद में लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पेश हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा वो रिलेट कर पा रहे हैं गीतों से और बातों से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं, एक श्रोता लिखती हैं कि वो और उनके पति भी उन्हें रेडियो से ही मिले। सूरत FM पर उन्होंने ये गीत पसंद किया था और सामने जो बैंक में बैठे उनके पति हैं उन्होंने सुना था और बात भी पैसों पैसों की हुई थी क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं, और इस तरह से कहीं ना कहीं उनका मिलना हुआ, बातचीत हुई और आगे उनकी शादी हुई। बहुत अच्छा लगा कि रेडियो के मार्फत आप मिले। हम चलते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

किशोर कुमार की आवाज में गीत गोलमाल फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो सुरीला सफर है इसमें गीत तो सुनने को मिलते ही अच्छे अच्छे, लेकिन साथ ही साथ हम संदेश भेजें या ना भेजें, लेकिन जो बाकी श्रोता लोग हैं उनके संदेश पढ़कर कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव महसूस होता है और ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम अपने संदेश अगर यहाँ पर लिखें तो कहीं ना कहीं उनसे एक रिश्ता बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे को श्रोता लिखते हैं कि मोहब्बत का अर्थ हमेशा साथ पाना नहीं, कभी कभी मिले हुए खूबसूरत पलों को मुस्कुराकर संजो लेना भी है, और ऐसा ही कुछ इबारत में एक छोटी सी मुलाकात के द्वारा बताया गया है। बिछड़ने की कसक तो है, लेकिन जाते जाते उन खूबसूरत याद जो है वो दिल में हमेशा जीवित रहनी चाहिए, ये भी बताया हुआ है। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि जिंदगी के सफर में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो मंजिल नहीं बनते मगर सफर को यादगार बना जाते हैं। वक्त उन्हें दूर कर देता है लेकिन उनकी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा महकती रहती है, और बस जब मन करता है हम उन्हें याद कर लेते हैं। ऐसे पलों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफर के दौरान

किसी अजनबी से सिर्फ एक मुलाकात होने के बाद कभी दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो जो मुलाकात होती है वो बहुत से खूबसूरत पलों से जिंदगी को भर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने।

किशोर कुमार की आवाज़ में पड़ोसन फिल्म का ये छोटा सा गीत का छोटा सा हिस्सा हमने आपको सुनवाया। फिलहाल वक्त की कमी की वजह से हमें अलविदा कहना पड़ेगा। आपने आज का ये सफ़र, सुरीला सफ़र तय किया अनुराधा के संग।

त्रिवेणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा अगरकर देसाई। नमस्कार। दीवाना, ये शब्द सुनते ही मन में सबसे पहले प्रेम और जुनून की तस्वीर उभरती है। किसी के प्रति ऐसी गहरी चाहत जिसमें इंसान अपने आसपास की दुनिया को कुछ देर के लिए भूल जाए, उसे दीवानगी कहा जाता है। प्यार में डूबा व्यक्ति अपनी प्रिय की एक झलक के लिए बेचैन रहता है और उसकी मुस्कान में अपनी खुशियां तलाशता है। दीवानगी केवल प्रेम तक सीमित नहीं होती, किसी सपने, कला, संगीत या अपने लक्ष्य के लिए भी इंसान दीवाना हो सकता है। दरअसल दीवानापन उस जुनून का नाम है जिसमें दिल किसी चीज को पाने या महसूस करने के लिए पूरी शिद्दत से धड़कता है।

दीवानगी में एक अजीब सी खूबसूरती होती है। जब इंसान किसी के प्यार में दीवाना होता है तो उसे हर तरफ उसी का चेहरा दिखाई देता है। मौसम सुहाना हो या उदास, हर एहसास उसी व्यक्ति से जुड़ जाता है। कभी उसकी आवाज दिल को सुकून देती है तो कभी उसकी दूरी बेचैन कर देती है। हिंदी फिल्मों और पुराने गीतों ने इस दीवानगी को बेहद खूबसूरती से शब्द और संगीत दिए हैं। इसलिए दीवाना शब्द सिर्फ पागलपन का पर्याय नहीं, बल्कि ऐसी भावनात्मक अवस्था भी है जहां दिल अपनी बात दिमाग से ज्यादा मानता है और प्रेम की अनुभूति जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाती है।

कई बार दीवानगी किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए होती है। कोई गायक संगीत का दीवाना होता है, कोई कलाकार अपनी कला का, तो कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने के जुनून में दिन रात मेहनत करता है। ऐसी दीवानगी इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े काम उन लोगों ने किए जिन्हें अपने सपनों पर असाधारण विश्वास था। प्रेम की दीवानगी हो या सफलता की, इसकी असली खूबसूरती तब है जब वो इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा दे। शायद इसी एहसास को पुराने गीतों ने बार बार अपने अंदाज में आवाज दी है।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
2: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
1: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
2: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है। ये हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से एआई, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
0: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिसका आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में 2x से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
0: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की, जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री

0: अहम बैठक निर्धारित हैं, यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
2: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष

0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
1: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई, भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
0: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
2: ये बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है। और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ, एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परंपरा का स्वामी है।
3: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
0: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेले ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य

0: समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा, प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

जब जब फूल खिले, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे। नंदा ने साथ दिया, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

0: होगा मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने
1: देखी
0: दुनिया।

0: दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत तेरे घर के सामने फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
2: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
3: पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
2: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितम्बर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे। तीन देवियां फिल्म का नाम, मजनू सुल्तानपुरी ने से लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर, सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है, और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने, और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से, मैं 7 साल की थी, और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: मधुमति फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।

0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल, वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मुकेश की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हिमालय की गोद में, फिल्म का नाम आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
1: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
2: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: मन चाहेगी।
4: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मन चाहे गीत। आपके फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं, और आज इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा उपाध्याय सुनवाने वाली हूं आपके पसंदीदा गीत। और लीजिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ, और उसके बाद हम नाम लेंगे उन श्रोताओं का जिन्होंने उसकी फरमाइश लिख भेजी है।

अमित कुमार की आवाज़ में गीत तेरी कसम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का संगीत था। इस गीत को सुनना चाहा था समलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव ने। नेपाली पारा नाजिरगंज, हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक स्वीटी, उषा ज्योति, किरण दिरशा, रितेश लिंबू और उनका परिवार। तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाद्दीन और यूसुफुद्दीन ने। अब्दुल बाबा अंजाना ने भी इसे सुनना चाहा था। वाड़ी वडोदरा गुजरात से गिरीश बाम, वैशाली बाम, अजिंक्य और अक्षय ने इसे सुनना चाहा था। और इसी गीत को सुनना चाहा था बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे इस गीत में, अनुरोध फिल्म का नाम, आनंद बख्शी ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, और इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी कोल सिटी बरका गाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी और गोविंद चुग ने, परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीला और तुषारिणी, साथ ही साथ खुमेंद्र मसीहा ने इसे सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। फ्रेंड्स कॉलोनी बेंगलोर से आरिफ हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने, साथ ही पटवा हिम्मतलाल हरकचंद ने, वर्धमान नगर जैन सोसाइटी भचाऊ कच्छ भुज से।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण ने। उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार। गांव चलाना काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल खलील और महबूब दल ने। पुराना तालाब डुमराव से वली अल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और बिटिया सोनम ने। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत आप सुन रहे थे साजन बिना सुहागन फिल्म से, इंदिवर ने से लिखा, उषा खन्ना का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और उनका समस्त परिवार, कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक, वरोड़ा चंद्रपुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत ने, डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल, मीनू ने, और अकोला महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा था गजानन कुम्भार, पद्मावती कुम्भार, विशाल, ज्योति, मधुर और उनके परिवार ने।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।

0: से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मन चाहे गीत।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। तो आइए सुनते हैं नाटक साबुन की टिकिया।

चलते चलते ये गीत पाकीज़ा फिल्म से हमने आपको सुनवाया और इस गीत को सुनना चाहा था गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल निशा ने, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार झाझोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू ने, रामना हल्ली बेंगलुरु से

0: रोटी, मेरी तो समझ में नहीं आता हम इस पार्क में क्यों चले आए।
1: क्यों, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा फिलिप?
0: अच्छा लगने को यहाँ क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ?
1: फिलिप, यहाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ।
0: अच्छा, मिस्टर नॉर्मन गॉट्सबाय, आप जरा उस बहुत कुछ पर रोशनी डालेंगे जिसे आपकी सूक्ष्म दृष्टि ने देखा है और ये नाचीज अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाया।
1: देखो फिलिप, इस शहर में सभी लोग सुखी और सफल नहीं। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो जीवन के संघर्ष में अभी तक असफल रहे हों और निराशा का मुंह देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी निराशा और असफलता को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। ऐसे लोग शाम के धुंधलके में यहाँ आकर बैठ जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके।
0: लेकिन गोटी, इसमें पार्क की खूबी कहाँ से आ गई?
1: देखो देखो देखो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जिंदगी में थके हारे ये लोग अपने दुखी मन को थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा आनंद देने के लिए यहाँ आ जाते। इस शांत वातावरण में, चंद्रमा की चांदनी में कुछ देर बैठकर उन्हें बहुत सुकून मिलता है। वो अपना दर्द, अपनी परेशानी सब भूल जाते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो चेहरे पर उदासी की जगह ताजगी और निराशा की जगह आशा झलकने लगती है। अब बताओ फिलिप, क्या ये कम बड़ी बात?
0: वाकई वाकई बहुत बड़ी बात है। और गौश भाई साहब, अब मेरी समझ में आया कि आप आज यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं।
1: मैं?
0: हाँ तुम। आज के दिन तुम्हारी मानसिक स्थिति भी किसी निराश और हारे हुए आदमी जैसी ही है।
1: कैसे?
0: तुम्हारी प्रेमिका ने अचानक तुमसे मुंह फेर लिया और उधर बिजनेस में भी थोड़ा घाटा हो गया। ऐसी निराशा में, जैसा कि तुम्हारा कहना है, यहाँ आकर ही तुम्हें कुछ सुकून मिल सकता था, है ना?
1: नहीं नहीं नहीं दोस्त, ये बात नहीं। रोजली ने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बस थोड़ा सा नाराज हुई है, जो कि उसकी आदत। दो दिन बाद गुस्सा थूक कर खुद ही मुझसे मिलने चले आएगी।
0: अच्छा, ऐसा?
1: हाँ, हमारी दोस्ती इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। अब रही बात बिजनेस की, तो तुम जानते ही हो कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते। आज घाटा हुआ तो कल मुनाफा हो सकता। सच मानो फिलिप, यहाँ आने की वजह मेरी निराशा कतई नहीं है। हाँ,
0: तो फिर कौन सी वजह तुम्हें आज यहाँ खींच लाई और तुम मुझे खींच लाए?
1: फिलिप, शायद मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया, मैं अक्सर इस पार्क में आता हूँ।
0: अच्छा?
1: यहाँ आते जाते लोगों के चेहरे पढ़ना मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। अब तुम ही देखो, वो उस बेंच पर अभी अभी जो साहब आकर बैठे हैं ना, उनका चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मकान का किराया नहीं दिया और मकान मालकिन के डर से यहाँ चिपे बैठे हैं।
0: अच्छा, वो देखो, वो औरत जो उधर घास पर बैठी है।

0: उसका चेहरा क्या बता रहा है?
1: साहब बता रहा है कि उसकी मैडम ने उससे महीने भर काम कराया, लेकिन तनख्वाह देते समय इधर उधर के नुकसान थोप कर सिर्फ 15 दिन के पैसे पकड़ा दिए। लेकिन तुम देखना, थोड़ी देर बाद ही इनके चेहरों के भाव बदल जाएंगे। किराएदार कल का पक्का वादा करके आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे में जाएगा और वो औरत अपना दब्बूपन छोड़कर मालकिन से पूरी तनख्वाह वसूल करने का निश्चय लेकर घर जाएगी। हाँ देखना।
2: तुम्हारी संवेदनशीलता की दाद देनी पड़ेगी यार। तुम्हें तो कोई लेखक या चित्रकार होना चाहिए था।
3: पता नहीं यार तुम लोहे के धंधे में कैसे पड़ गए।
1: नहीं दोस्त नहीं, बिजनेस से तो मुझे शुरू से ही लगाव रहा है, ये सब तो खाली वक्त के शगल है।
3: अरे गोटी भाई, तुम्हारा शगल पूरा हो गया हो तो अब चले यहाँ से।
1: चलो।
3: देखो भाई, मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया है, अब चलकर मुझे कहीं कुछ बढ़िया सा खिलाओ ना।
1: नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, कल या किसी और दिन।
3: क्यों भाई, आज क्यों नहीं?
1: भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, आज बिजनेस में पहले ही नुकसान उठा चुका हूँ, अब और नुकसान नहीं करूंगा।
3: मान गया यार, तुम पक्के बिजनेसमैन हो। चलो आज की दावत मेरी तरफ से रहेगी, चले।
1: हाँ चलो।
3: अरे हाँ यार, याद आया यार, मुझे तो 7 बजे डॉक्टर हैगर्ड के पास जाना है, वहाँ थोड़ी देर लग जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लोगे क्या?
1: नहीं नहीं नहीं फिलिप, नहीं, डॉक्टर के क्लिनिक में दूसरे मरीजों की शक्ल घूरते रहने से अच्छा है कि मैं यहीं बैठकर तुम्हारी राह देखूं।
3: ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, इस बीच अपना और नुकसान मत कर लेना।

0: बेटा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?
1: जी जरूर जरूर बुजुर्गवार, बेंच में बहुत जगह है, आप आराम से बैठिए। आइए आइए।
0: आराम अब कहाँ, अब तो ऊपर जाकर ही आराम नसीब होगा।
1: पर जाने की उम्र से तो ये अभी बहुत दूर लगते हैं, फिर ऐसी निराशा की बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा ऐसा मत कहिए। अच्छा आप यहाँ रोज आते हैं?
0: और कहाँ जा सकता हूँ, किस तरह वक्त तो काट नहीं है।
1: लगता है आपके घर में कोई और सदस्य नहीं है, आप अकेली रहते हैं क्या?
0: हाँ ऐसा ही समझो, मेरी पत्नी पिछले साल निमोनिया से चल बसी। घर में दो शादीशुदा बेटे जरूर हैं, लेकिन किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मुझे घर में अकेला छोड़कर बेटे बहुएं सब बाहर चले जाते हैं।
1: अब कहाँ कहाँ चले जाते हैं?
0: अपनी अपनी नौकरी पर।
1: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई निठल्ला नहीं बैठा रहता, और इस तरह घर में कुछ पैसा भी आ जाता है, गृहस्थी और अच्छी तरह चलने लगती है।
0: लेकिन मैं तो अकेला रह जाता हूँ, रिटायर होने का ये मतलब तो नहीं कि मुझसे कोई बात करने वाला ना हो, कोई हंसने बोलने वाला ना हो। मैं किस चीज से अपना दिल बहलाऊं, सच मानो ये उपेक्षा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या सहानुभूति दिखाने की बजाय तुम हंस रहे हो?
1: अरे क्या करूं बुजुर्गवार, आपने तो तिल का ताड़ बनाकर रख दिया, जरा सी बात को लेकर आप इतने उदास हैं? है?
0: ये जरा सी बात है, है? इस उम्र में इतना अकेलापन?
1: श्रीमान इस अकेलेपन का इलाज भी आप ही के पास है, आजमा कर देखिए।
0: मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो।
1: श्रीमान आप अपने आप को घर में बंद क्यों करते, बाहर निकलिए, अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, अपनी उम्र के कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ाइए, कोई ऐसा हल्का फुल्का काम शुरू कीजिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो।

0: फिर देखिए ना, आपको वक्त का पता चलेगा और ना ही अकेलेपन का एहसास होगा। क्यों, क्या सोचने लगे श्रीमान?
1: नौजवान, तुम्हारी बात में वजन है। इस पर अमल करके देखता हूँ कितनी कामयाबी मिलती है। अच्छा, अब चलूंगा।
0: अरे ऐसी जल्दी क्या है, अभी अभी तो आप आए हैं।
1: आज कुछ जल्दी है, ये थैला देख रहे हो ना?
0: हाँ,
1: यहाँ आते हुए बाजार से कुछ जरूरी चीजें खरीदी थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: इन्हें घर पहुंचाना है। अच्छा,
0: हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। फिलिप अभी तक नहीं आया, कह रहा था डॉक्टर की क्लिनिक से जल्दी ही लौटाऊंगा। इतनी देर हो गई लेकिन उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। एक जगह बैठे बैठे पांव सोने लगे।

0: बेंच पर अब ये कौन जनाब आकर विराजमान हो गए? लगता है इस बेंच में कोई खास बात है, तभी जिसे देखो आकर यहीं बैठ जाता। इस बार गुन बुजुर्गवार की जगह एक खूबसूरत नौजवान ने ले ली, लेकिन इसके चेहरे पर उन साहब से ज्यादा उदासी छाई। अरे ये तो जैसे अपने आप से कुछ बोलता भी जा रहा है। सुनना चाहिए ये नौजवान क्या बड़बड़ा रहा है।
1: साइमन साहब, आप तो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझते थे, आज देख लिया आप कितने होशियार हैं। आप जरा भी सावधान रहते तो ये नौबत नहीं आती। अब भुगतिए अपनी लापरवाही का नतीजा। और जैसा बुरा दिन तो
0: माफ करना जेंटलमैन, पूछ सकता हूँ आप किससे बातें कर रहे हैं?
1: और किससे करूंगा साहब, नील साइमन से, यानी अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। बात नहीं कर रहा बल्कि अपने आप को कोस रहा हूँ।
0: साइमन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जरूर किसी परेशानी में हैं।
1: जिस भंवर जाल में मैं फंसा हूँ, अगर आप फंस जाते तो मेरी ही तरह परेशान मिलते।
0: अच्छा,
1: समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा।
0: ओ, किसी ने आपको धोखा दिया है क्या?
1: अरे नहीं साहब, अपनी इस दुर्दशा के लिए और कोई दूसरा नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर डाली, उसी का नतीजा भुगत रहा हूँ।
0: आखिर बात क्या हो गई, जरा मुझे बताएंगे?
1: अरे क्या बताऊँ, दरअसल बात यह हुई कि मैं आज दोपहर लंदन आ गया था।
0: अच्छा।
1: और चूंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा था, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे एक अच्छे होटल का पता दे दिया था।
0: हाँ, वो कौन सा होटल?
1: अब वो होटल क्या, हाँ, पेंटागोनियन होटल, वर्कशायर स्क्वायर।
0: पेंटागोनियन होटल? लेकिन वो होटल तो शायद अब नहीं रहा।
1: हाँ वही तो, स्टेशन से टैक्सी लेकर मैं सीधा वर्कशायर स्क्वायर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि होटल को कुछ दिन पहले गिरा दिया गया और उसकी जगह वो सिनेमा घर बना रहा है। कुछ देर मैं यूं ही खड़ा उस इमारत को देखता रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं।
0: वहां तो आसपास कई अच्छे होटल हैं, आप कहीं भी चले जाते।
1: अब ये सब तो आप जानते हैं ना, मैं तो इस शहर में बिल्कुल अनजाना था। खैर, मैंने टैक्सी वाले से किसी अच्छे होटल में ले चलने को कहा तो वो मुझे आसपास नहीं बल्कि काफी दूर ले गया।
0: आपको जानबूझकर दूर ले गया ताकि टैक्सी का अच्छा भाड़ा बन जाए।
1: हो सकता है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है, बल्कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को अच्छी खासी टिप भी दी। वो इसलिए कि वो होटल बहुत अच्छा और आरामदायक था।
0: अच्छा अच्छा।
1: खैर, होटल पहुंचकर मैंने अपने घर वालों को चिट्ठी लिखी और उन्हें अपना नया पता भी लिख दिया, और फिर एक कप चाय पीकर मैं साबुन खरीदने बाहर बाजार की ओर निकल पड़ा।
0: साबुन खरीदने?
1: जी
0: साइमन साहब, मैं कुछ समझा नहीं।
1: वो आप समझेंगे भी कैसे, मैं आपको क्या बताऊं मिस्टर, वो सॉरी, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ?
0: हाँ, गुड्स।

0: नॉर्मन गोट्स भाई। वैसे आप मुझे गोटी कहकर बुला सकते हैं आप।
1: हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो मिस्टर गोटी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ साबुन अपना ही इस्तेमाल करता हूँ। होटल का साबुन इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है।
0: अजीब आदत है।
1: हाँ है तो अजीब ही। वैसे शुरू से ही मैं अपना अलग साबुन रखता हूँ। इस बार मैं सामान में साबुन रखना भूल गया। खैर, मैंने होटल में एक प्याला चाय पी और साबुन खरीदने निकल पड़ा। साबुन खरीदा और घूमता फिरता दूर तक निकल गया। सोचा बाजार की रौनक ही देख लूं।
0: लगता है आपको हमारा शहर बहुत पसंद आ गया। वैसे लंदन बुरा शहर नहीं है, आपका क्या ख्याल?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। लंदन बड़ा ही अच्छा शहर है, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी से यहाँ रहने का सारा मजा किरकिरा कर दिया।
0: वो कैसे?
1: अब वही वही बता रहा हूँ। अब देखिए, काफी दूर निकल जाने के बाद मैंने सोचा कि अब लौटना चाहिए। बस मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं उस होटल का नाम ही भूल गया हूँ।
0: अरे
1: अब होटल का नाम ही नहीं, मैं उस सड़क उस एरिया का नाम भी नहीं जानता था जहाँ वो होटल था।
0: तो फिर आपने क्या किया?
1: क्या करता, कभी कभी एक सड़क पर चला जाता, कभी दूसरी तरफ निकल जाता, लेकिन ना तो वो होटल मिला और ना ही उसका नाम याद आया। और तब से मैं यूं ही भटक रहा हूँ। मिस्टर गोटी, जो आदमी लंदन पहली बार आया, जिसका यहाँ ना कोई दोस्त हो ना रिश्तेदार, उसकी परेशानी का आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं।
0: हाँ वाकई परेशानी की बात तो है साइमन साहब।
1: हाँ
0: मैं क्या आपकी समस्या का कोई हल नहीं है?
1: समस्या का एक ही हल है, वो ये कि मैं अपने घर पर तार कर दूं और उनसे होटल का नाम पता भेजने को कहूं। लेकिन इसमें भी एक मुश्किल है।
0: वो कैसी मुश्किल?
1: अब देखिए, घर वालों को मैंने आज ही चिट्ठी भेजी है, उन्हें 2-3 दिन बाद चिट्ठी मिलेगी। तब तक मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ जाऊँगा? सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
0: देखिए, इस तरह परेशान होने से क्या होगा, शांत रहिए और सोचिए कि इस उलझन से निकलने का अब क्या रास्ता हो सकता है। अरे हाँ हाँ साइमन साहब, एक रास्ता तो है।
1: क्या?
0: आप अपने घर तार भेजिए और कल परसों तक, जब तक उनका जवाब आता है, आप किसी दूसरे होटल में चले जाइए। आपके बटुए में फिलहाल इतने पैसे तो होंगे कि आप कोई सस्ता सा होटल।
1: मिस्टर गोटी, वही तो समस्या है, इस वक्त मेरी जेब बिल्कुल खाली है। दरअसल मैं 1 शिलिंग जेब में डालकर होटल से बाहर निकला था, जो मैंने साबुन में खर्च कर दिया। अब तो जेब में बस ये 2 पेंस पड़े हुए हैं। ये देखिए, काश मैं होटल से अपना बटुआ लेकर चलता।
0: कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी कपड़ों से, बोलचाल से संपन्न ही दिखाई देता है। बेचारा आज कैसी परेशानी में पड़ गया।
1: मिस्टर गोटी,
0: हाँ, आप
1: क्या सोचने लगे?
0: जी वो
1: समझ गया। आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने मन से किस्सा गढ़कर आपको सुनाया है। नहीं, इसमें आपका दोष नहीं। ये वाकया है ही इतना अजीब कि कोई आसानी से यकीन नहीं करेगा।
0: नहीं साइमन साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो कहानी सुनाई है उसका एक एक शब्द सच हो सकता है। मेरे साथ एक बार बिल्कुल ऐसी ही घटना हो चुकी है। हाँ हाँ
1: अच्छा?
0: हाँ, एक बार पेरिस में मैं भी कुछ ऐसी ही भूल कर बैठा था। और मजेदार बात यह है कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था।
1: अच्छा?
0: हाँ, हम दोनों ही भुलक्कड़ निकले। गनीमत थी कि हमें इतना याद रहा कि हमारा होटल नहर के किनारे, बस नहर के साथ साथ चलते रहे और किसी तरह होटल पहुंच ही गए।
1: चलिए, तब तो आपको मेरी बात पर पूरी तरह विश्वास हो गया। क्या है मिस्टर गोटी, के अगर मैं आपकी तरह विदेश में रास्ता भूल गया होता तो इतना घबराता नहीं, लेकिन अपने ही देश में मैं।
0: अरे ये आप क्या कह रहे हैं।

0: पराए देश में तो आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है।
1: नहीं, नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, अगर मैं विदेश में होता तो ऐसी स्थिति में अपने दूतावास से जरूर मदद ले सकता था।
0: हाँ,
1: लेकिन यहाँ तो मैं अपने ही देश में हूँ। घोटी साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त मैं अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ।
0: साइमन साहब, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। क्या आपका होटल ढूंढने में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ?
1: नहीं नहीं, इस तकलीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ आप भी खामा खा इधर से उधर भटकते रहेंगे। अब तो थेम्स के किनारे मैदान में रात गुजारने के सिवाय और कोई चारा नहीं। अब मिस्टर कोटी।
0: हाँ हाँ, कहिए कहिए।
1: हाँ, आप अगर मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो
0: हाँ हाँ, बताइए बताइए, संकोच मत कीजिए, बताइए ना।
1: क्या मुझ पर विश्वास करके मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? सिर्फ एक दो दिन के लिए, जब तक मैं अपने होटल नहीं पहुंच जाता। बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतने कि दो दिन अच्छी तरह बिता सकूं, बस।
0: सचमुच ये आदमी मुसीबत में है, इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये मेरे पैसे जरूर लौटा देगा।
1: मिस्टर गोटी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं।
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए साइमन साहब, मुझे पूरा विश्वास है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा।
1: हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इस भल मनसाहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर कुछ सोचने लगे?
0: हाँ, इस बार जरूर कुछ सोच रहा हूँ। साइमन साहब
1: जी,
0: आपने कहानी तो विश्वास करने लायक सुनाई है,
1: कहानी
0: लेकिन इसमें एक कमजोर कड़ी है। वो खासी कमजोर कड़ी है।
1: मैं कुछ समझा नहीं।
0: साइमन साहब, आप वो साबुन नहीं दिखा रहे हैं जो आपने खरीदा था? मैं वो साबुन देख सकता हूँ?
1: वो साबुन की टिकटिकिया? हाँ, मेरी मेरी जेब में होनी चाहिए, अभी दिखाता हूँ। यहाँ इस जेब में नहीं है। अरे इसमें भी नहीं है।
0: कोट की सारी जेबें अच्छी तरह देख लीजिए। हाँ हाँ,
1: वही वही वही देख रहा हूँ। यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। लगता है वो साबुन की टिकिया भी कहीं खो गई है।
0: खो गई? एक ही दिन में अपना होटल भूल जाना और साबुन भी खो देना,
1: जी
0: ये कुछ विश्वसनीय नहीं लगता साइमन साहब।
1: मैं मेरी बात
0: आपको कोई ठोस कहानी गढ़नी चाहिए थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये कहानी तो पिस हो गई साइमन साहब। अब किसी और आदमी से पैसे ऐंठना चाहो तो कोई ठीक बहाना बनाइएगा, वरना अरे कहाँ चल दिए साइमन साहब, कहाँ चल दिए? अरे रुकिए तो। बेचारा, कहानी तो बहुत बढ़िया गढ़ी थी। एक एक हिस्सा ऐसा था जिस पर कोई आंख मूंद कर विश्वास कर लेता, लेकिन साबुन खरीदने के प्रसंग ने सब गड़बड़ कर दिया। अरे ये प्रसंग ना होता या साबुन की एक टिकिया भी जेब में डाल लाता तो धोखा धड़ी के धंधे में आज उसकी प्रतिभा का सिक्का जम जाता। लगता है इस धंधे में अभी नौसिखिया है। अरे ये मेरे पाँव से क्या चीज टकराई? क्या है ये कागज में लिपटी हुई कोई गोल सी चीज? साबुन की खुशबू भी आ रही। अरे ये तो साबुन की टिकिया है। अरे ये जरूर साइमन की जेब से गिर गई होगी। इसका मतलब उसने सचमुच साबुन खरीदा था। ये तो अनर्थ हो गया। मैं अभी जाकर उस मुसीबत जदा की मदद करता हूँ। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी जाता हूँ।
2: अरे साइमन साहब, साइमन साहब रुकिए।
0: साइमन साहब,
1: मिस्टर गोटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए।
0: अरे नहीं नहीं साइमन साहब,

0: गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
1: ये आप क्या कह रहे हैं?
0: देखिए, आप जैसे भले आदमी पर शक किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मुझे आपकी कहानी की सच्चाई का मुख्य गवाह मिल गया है। ये देखिए, साबुन की टिकिया आपकी कोट से गिर गई होगी। देखिए, मुझे ये वहीं उसी बेंच के पास पड़ी मिली।
1: पता नहीं कब जेब से गिर गई। वो परेशानी में कुछ ध्यान ही नहीं रहा।
0: खैर, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे आपकी मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं एक गिन्नी उधार देता हूँ मैं आपको। ये इससे काम चल जाएगा आपका?
1: जैसा आप ठीक समझें।
0: नहीं, आपको दिक्कत हो सकती है। मैं आपको दो गिन्नियां दे देता हूँ। उम्मीद है अब आपका काम आराम से चल जाएगा। ये लीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भारी मुसीबत से बचा लिया। अब मैं जान, अरे हाँ, आप अपना पता दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके घर आकर ये उधार चुका दूंगा।
0: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से मेरे पैसे लौटा दीजिएगा। अच्छा। ये लीजिए, ये रहा मेरा कार्ड।
1: थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब इजाजत दीजिए।
0: अच्छा, अरे अरे साइमन साहब, ये साबुन तो लेते जाइए।
1: लाइए। थैंक यू वेरी मच।
0: और देखिए, अब इसे दोबारा मत खो देना, ये आपके आड़े समय में काम आया है। बाय बाय बाय। बेचारा मेरे इस व्यवहार से कितना खुश हो गया। चेहरे पर निराशा की जगह उत्साह दिखाई देने लगा था। शुरू में मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही होशियारी बरत रहा था, ये अच्छी बात नहीं थी। मैंने अपनी गलती सुधार ली, ये अच्छा ही हुआ। अरे बाप रे, 8 बज गए। अरे वहाँ पार्क में फिलिप पता नहीं कब से मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे फौरन वहीं पहुँचना चाहिए। चलता हूँ मैं।

0: फिलिप, फिलिप, फिलिप माफ करना, मैं जरा अब बाजार की तरफ निकल गया था। अब आए, ये तो फिलिप नहीं, कोई और ही साहब है। ओह, ये तो वही बुजुर्गवार हैं जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ यहाँ बैठे थे, लेकिन ये बेंच के नीचे झुककर क्या ढूंढ रहे हैं? बुजुर्गवार, लगता है आपका कुछ खो गया है।
1: हाँ, मेरी साबुन की टिकिया खो गई है।
0: क्या, साबुन की टिकिया?
1: हाँ, अब मैंने जो सामान खरीदा था,
0: हाँ,
1: उसमें एक साबुन की टिकिया भी थी, वो कहीं गिर गई।
0: लेकिन वो
1: मेरा ख्याल है वो यहीं गिरी है, बेंच पर बैठते समय थैला टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा और टिकिया नीचे गिर गई। चिंता ना करो, यहाँ गिरी है तो मिल ही जाएगी।
0: इसका मतलब वो साबुन की टिकिया उस धोखेबाज की नहीं, इन बुजुर्गवार की थी। मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी, उस धोखेबाज को साबुन की टिकिया के चक्कर में एक नहीं दो दो गिनियां दे दी। आज ही आज मैं अपना दूसरा नुकसान कर बैठा। इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।

श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपने सुना नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का यह हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों विविध भारती की टीम फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य के घर गई, रिकॉर्डिंग की उजाले उनकी यादों के। तो चलिए सुनते हैं आज वही कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनके लिए सिनेमा सिर्फ एक पेशा या कला नहीं बल्कि परिवार की विरासत भी है। यानी आज हम बातचीत करने जा रहे हैं महान फिल्मकार विमल रॉय की बेटी रिंकी भट्टाचार्य से। वो विमल रॉय जिन्होंने भारतीय फिल्मों को अलग अर्थों में गढ़ा। तो रिंकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते, मैं बहुत खुश हूँ
1: जी।
2: मेरे से जो भी होगा पिताजी के बारे में मैं कहूँगा
1: जी। बिल्कुल। तो रिंकी जी हम आपकी आंखों से देखने की आज कोशिश करेंगे महान फिल्मकार विमल रॉय साहब को। हम विमल रॉय को एक महान फिल्मकार के रूप में जानते हैं लेकिन आप उन्हें एक पिता के तौर पर जानती हैं। तो सबसे पहले हम सभी का यही सवाल होगा कि कैसे थे पिता के रूप में विमल रॉय साहब।
2: मैं तो बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ
1: जी,
2: क्योंकि पिताजी का जैसा पिताजी मिलना ये छोटी बात नहीं है। और हम लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा महान का वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। एकदम घर में जैसे साधारण हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में सब बड़े हुए हैं उनके साथ, उससे हमको पता ही नहीं चलता था कि पिताजी बाहर उनका एक रूप है, बाहर उनका कोई स्टेटस है। और चाइल्डहुड मेरा, हमारा चाइल्डहुड बहुत ही एकदम सुखदायक था
1: जी,
2: बहुत
1: जी।
2: ही बहुत खुश, हम लोग सब बहुत खुश थे। फैमिली मैन थे वो, फर्स्ट फैमिली मैन थे वो
1: जी।
2: घर में आके उनका पूरा यही बदल जाता था,
1: एक रूप ही बदल जाता था।
2: रूप ही बदल जाता था।
1: मतलब आपके पिता घर पर फिल्मकार नहीं होते थे, एक पिता ही होते थे
2: जी। सही बात है
1: जी। तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपके पिता बाकी लोगों से कुछ अलग है, बाहर उनका बहुत बड़ा रुतबा है या वो इतने महान फिल्मकार हैं?
2: ये हमको पता ही नहीं चला कि बाहर उनका क्या रूप है, क्या स्टेटस है, क्योंकि पिताजी को जो उनका बिहेवियर था घर में तो वो एकदम साधारण जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली में होता है। पिता पुत्री का जो रिलेशनशिप होता है एकदम सहज सरल। हम लोग जो बड़े हुए हैं हम बहुत ही इसमें, मैं तो एक ही अंग्रेजी शब्द बोलती हूँ, ब्लेस्ड
1: जी,
2: ट्रूली ब्लेस्ड
1: जी जी। तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने भाई बहन आप लोग थे, और आपकी माता जी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, वो किस तरह से उनकी फिल्मों से जुड़ी रही, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी रही
2: जी। लेकिन मेरी माँ जो थी वो एकदम अलग थी, और उनका जो खुद आइडेंटिटी एक था
1: जी,
2: शी वॉज ए फोटोग्राफर, और उनके बारे में सब लोग आजकल जानते हैं। उनका जो फोटोग्राफी है वो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े व्यक्ति के फोटोग्राफ लिया है, जैसे टैगोर का लिया है, और नेहरू का लिया है, इंदिरा गांधी का लिया है। मैंने, मेरी माँ का जो पोर्ट्रेट्स हैं उसमें इन सब लोगों को नाम जुड़ता है
1: जी।
2: तो पिता, और वो बहुत पिताजी के साथ बहुत ही उनका एकदम बहुत सुंदर रिश्ता था
1: जी,
2: बहुत सुंदर रिश्ता था।
1: क्या नाम था आपकी माँ का?
2: मेरी माता का नाम था मनोबीना रॉय
1: जी
2: जी।
1: तो वो एक

0: बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी और उनका एक
1: हाँ
0: व्यक्तित्व था। आपके और भाई बहन भी हैं जो
1: जी
0: उनके बारे में भी हम जानना
1: हाँ, मैं
0: चाहेंगे।
1: सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद में दो सिस्टर्स हैं और एक भाई है जॉय, जो अभी देखभाल करता है अपना, मेरा पिताजी का जो लेगेसी है उसके साथ हम लोग सब सभी मिलकर काम करते हैं एक साथ।
0: जी। तो रिंकी जी, आपको पहली बार उनकी फिल्मों से जुड़ना आपका कैसे हुआ? किस तरह से आप उनकी फिल्मों से जुड़ी? क्या बचपन में आप अपने पिता के साथ उनकी फिल्में देखने जाया करती थी, या उनकी जो फिल्म बनाने की प्रक्रिया थी उनसे वाकिफ थी, या उनके साथ जाया करती थी? ऐसा कुछ हुआ
1: नहीं,
0: कभी?
1: पिताजी हमेशा पिताजी का एक कोशिश ये रहता था कि वो फिल्मी दुनिया से हम लोग को अलग रखें,
0: अच्छा।
1: और हम कभी हमको अगर बुलाते थे शूटिंग देखने के लिए तो कोई गाना वाना शूट हो रहा तो हमको बुलाते थे, जो बच्चों को जो अच्छा लगता है उसके लिए बुलाते थे, नहीं तो हम कभी स्टूडियो में जाते ही नहीं थे। उनका अलग ही था कि वो दोनों दोनों जो दुनिया है ना, फिल्म का दुनिया और घर का दुनिया अलग था हमारे घर
0: जी
1: में।
0: जी
1: और वो बहुत एडुकेशनिस्ट थे पिताजी। मैं तो बॉम्बे चली आई, मेरा तब 9-10 साल होगा, तो लेकिन उन्होंने ऐसे कोशिश किया कि मैं बंगला सीखूं, क्योंकि मेरा मातृभाषा बंगाली है,
0: जी
1: तो उन्होंने मेरे लिए सब बंगाली किताब मंगाते थे घर कलकत्ता से, और हमको देखते थे कि हम करते हैं कि नहीं। उनका उत्साह था कि हम बंगला सीखें, बंगला बंगाली कल्चर को भी अपनाएं, इस सब उनका बहुत बहुत उनका देन ये है मेरे ज़िंदगी में, कि पिताजी के लिए मैंने ये सीखा है, नहीं तो मैं शायद नहीं करती थी।
0: पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा
1: बहुत
0: रहा।
1: प्रभाव। हाँ
0: तो एक बेटी होने के नाते रिंकी भट्टाचार्य पर क्या प्रभाव था, कितना प्रेशर था, कितना दबाव था, तो आप क्या कहेंगी?
1: नहीं, दबाव तो मैं नहीं कहूँगी, पिताजी का जो पूरा कल्चर था उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, कि पिताजी को खाली घर के लिए नहीं, पिताजी को इंडियन कल्चर से बहुत प्राउड थे वो। इंडियन कल्चर,
0: जी।
1: कोई भी कल्चरल ये होता था, वो नेहरू को जानते थे पर्सनली, इंदिरा गांधी को जानते थे पर्सनली,
0: जी
1: तो ऐसे जो जिंदगी जिसके ये होता है तो उनके लिए तो अलग ही होता है ना
0: बहुत एथिक्स थे
1: एटीट्यूड।
0: जी।
1: हाँ, उनका एटीट्यूड ही अलग था इस सब के बारे में, और हम लोग ने वो ही सीखा है पिताजी। वो बहुत जल्दी चले गए, पिताजी की उम्र बहुत कम था जब
0: जी
1: चले गए,
0: जी
1: तो इसीलिए उनका सबसे बड़ा फिल्म एक जो बनने वाला था वो नहीं बनी, और हमको इसका बहुत दुख है। और जो जो, जो लिखा था गुलजार लिख रहे थे उसको, तो उसका नाम था अमृत कुंभ।
0: अच्छा
1: अमृत कुंभ के ऊपर एक रियल लाइफ स्टोरी था,
0: जी।
1: उसको उन्होंने लिया कि उसको वो था, लेकिन उसका शूटिंग करते करते पिताजी का ये हो गया, और उस कैंसर में भुगते थे, वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते थे। हाँ,
0: जी।
1: उनका हाथ में हमेशा सिगरेट होता था, और उनका ये जो सामने का उंगलियाँ है ना, उसमें सब सिगरेट निकोटिन के दाग हो गया था इतना। हाँ, तो उससे उनको दुख भरी बात ये है कि
0: जी
1: उनको वो कोई हम नहीं छोड़ा सके उसको।
0: जी जी

0: बिमल रॉय एक महान फिल्मकार के रूप में उन्होंने इतनी कालजयी फिल्में हमें दी और गुरु के रूप में उन्होंने एक नई श्रृंखला बनाई, उनके जैसी फिल्मों का आगे निर्माण किया लोगों ने। तो एक फिल्मकार के रूप में या एक गुरु के रूप में आप क्या मानती हैं, वो किस तरह से रही होंगी?
1: पिताजी ने जो उनके उनके साथ जो जो काम किया, जैसे गुलजार है, ऋषिकेश मुखर्जी है, आशीष सेन है, इनको सबको उनका प्रभाव से बहुत उत्साहित किया था फिल्म बनाने के लिए, और उनको उत्साह देते थे और उनको चांस भी मिलता था कि हमारा प्रोडक्शन भी, बिमल रॉय प्रोडक्शन में उनका फिल्म भी बनती थी। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि असली गुरु का हिसाब, जो गुरु दक्षिणा इनको देना चाहिए
0: जी,
1: सबको
0: जी। उनकी कालजयी फिल्में हैं जैसे दो बीघा जमीन है, देवदास है, परिणीता है, मधुमती है, सुजाता है, परख है और बंदिनी। इन मतलब एक एक फिल्म पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कितने एपिसोड निकल सकते हैं, कितनी लंबी विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो रिंकी भट्टाचार्य उस उम्र में उन फिल्मों को देखकर क्या सोचती थी?
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी,
1: सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से,
0: बिल्कुल
1: हाँ। तो इसलिए ना पिता, खाली दो बीघा जमीन को लिखा था सलील चौधरी ने, तो वो फिल्म के लिए लिखा था, पिताजी के लिए लिखे थे। तो उसको जो फिल्म बनाए पिताजी, उसका कोई लिटरेरी वर्शन नहीं था,
0: जी।
1: हाँ, उनको लिखा था पिताजी के लिए सलील चौधरी ने, और उनको जो फिल्म है आज तो दो बीघा जमीन को सबसे बड़ा मान्यता मिलती है, यहाँ वहाँ फॉरेन कंट्रीज में सब में दिखाया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो जब बात चली है दो बीघा जमीन की, तो कैसे इस महान फिल्म की रचना हुई होगी, किस तरह के घटनाक्रम में फिल्म बनी होगी उस जमाने में?
1: ये मुझे कभी कभी लगता है कि दो बीघा जमीन तो से उनका जिंदगी इसका बहुत असर है
0: जी,
1: क्योंकि पिताजी भी जब छोटे थे उनको घर से उनका जो जमीन था ईस्ट बंगाल, हम लोग ईस्ट बंगाल के हैं ढाका के
0: जी,
1: तो वहाँ से उनको निकाला गया था, तो वो भूल वो उनका जो वो दर्द था, वो ट्रेजिडी था, हाँ, तो वो भूल नहीं सके थे। तो मुझे लगता है इससे दो बीघा जमीन में और बहुत बहुत इंटेंसिटी हो गया है। इसके लिए ना पिताजी के लिए वो जो वो दुर्घटना थी कि उनको घर से निकाला गया था,
0: जी,
1: वो
0: जी,
1: भूल नहीं पाए कभी भी, हमेशा चाहते थे कि जाएं, हम जब ईस्ट बंगाल चलेंगे वो सोचते थे कि हम जाएंगे वहाँ पे। तो उसका वो ट्रेजिडी जो था वो जिंदगी भर उन्होंने उसका ये किया,
0: मन में रहा
1: मन में रहा,
0: और उसी पीड़ा का परिणाम दो बीघा जमीन के रूप में उतरा।
1: जी जी
0: जी। तो जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो बलराज साहनी और बिमल राय की जोड़ी ने जिस तरह से यथार्थ को पर्दे पर उतारा वो अद्भुत था। तो उस वक्त उस फिल्म की सफलता को घर में आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया होगा?
1: नहीं, हमारे घर में ऐसे सेलिब्रेशंस कोई नहीं होते थे फिल्म विल्म को लेके, लेकिन पिताजी का ये जो दो बीघा जमीन है ना, ये मैं कहूँगी कि पिताजी का श्रेष्ठ है, लोग सोचते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगी सब फिल्म सुजाता, बंदिनी, सबको लेके जब लोग देखते हैं ना तभी बोलते हैं कि कैसे कहाँ से आया स्टोरी, हाँ, उनको लिटरेचर पे बहुत ये था, बहुत वो ये थे प्रभावित थे लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर के।
0: जी जी जी। तो फिल्म दो बीघा जमीन के जो शंभू की पीड़ा थी वो आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में व्याप्त है।
1: जरूर, मैं तो बोलूँगी ये बहुत सच बात है। हमने जो फिल्म दिखाई थी वेनिस फेस्टिवल में लास्ट ईयर, तो वहाँ सब लोग खड़े होते हैं, जैसे फिल्म खत्म हुई सब लोग रो रहे थे
0: जी,
1: इतना

0: का प्रभाव था।
1: हाँ,
0: एक इंडियन फिल्म, कोई स्टार नहीं उसमें, हाँ, फिर भी वेनिस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल में उसका क्या भूमिका थी तो मैं आपको बता ही नहीं सकते। आप वो देखने वाली, एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ थे। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैं गई उनके साथ, वहाँ फेस्टिवल मैंने एक अटेंड किया, और हम लोग जब वापस आए तो मुझे बहुत बहुत बहुत मुझे प्राउड फील रहा कि इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया है, हासिल किया है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है ये
1: जी। तो रिंकी जी, जब बात 2 बीघा जमीन की चल रही है, तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत हम सुन लें। आप बताएंगे कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: जो लोरी है जिसमें मीना कुमारी ने एक छोटा सा भूमिका किया है।
1: हाँ।

0: बहुत सुंदर लोरी है ये रिंकी जी, इस लोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप?
1: जरूर मैं बताना चाहूँगी कि मीना कुमारी जो मेरे पिताजी के बहुत करीब थे
0: जी,
1: और पिताजी उनको बहुत स्नेह करते थे
0: जी,
1: तो उन्होंने बोला कि दादा आपने फिल्म तो बनाई लेकिन मुझे आपने रोल नहीं दिया कुछ, तो पिताजी ने बोला कि उसमें तो तुम्हारे लिए लायक कोई रोल नहीं था,
0: हाँ।
1: लेकिन ठीक है हम एक गाना डालेंगे तो उसमें तुमको मैं ले लेती हूँ
0: जी।
1: तो इसीलिए मीना कुमारी ऑन स्क्रीन मीना कुमारी सिंगिंग द लोरी।
0: और ये लोरी और बहुत, हाँ आप बता
1: ये
0: रही
1: लोरी
0: थी।
1: बहुत हम लोग सब गए थे रिकॉर्डिंग के लिए
0: जी,
1: कहाँ पूछे मुझे पता नहीं कौन से स्टूडियो, शायद दादर में कोई स्टूडियो था, वहाँ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हुए और ये लोरी का रिकॉर्डिंग हुआ 4 बजे सुबह
0: सुबह 4 बजे
1: सुबह 4 बजे
0: तो लता मंगेशकर की गाई हुई लोरी है ये, तो सुबह 4 बजे इसकी रिकॉर्डिंग हुई,
1: सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग हुई
0: जी जी।
1: और तब तक लता जी वहीं पे बैठी थी।
0: अच्छा,
1: और नेचुरली
0: हाँ
1: उनका ही गाना है ना,
0: तो बहुत टेक रिटेक हुई होंगी मतलब?
1: नहीं नहीं बहुत टेक नहीं, वो तो एक स्पेशलिस्ट थी।

0: इस तरह के बहुत सारे गीत पर हम बात करेंगे। फिल्म देवदास पर हम आना चाहेंगे। एक ऐसी फिल्म है देवदास जो अमर हो गया ये किरदार।
1: और एक चीज़, आप फर्स्ट टाइम साहिर लिद्वानी ने गाना लिखा था उसमें।
0: हाँ जी
1: हाँ,
0: जी
1: और
0: एस डी बर्मन साहब का संगीत है और इतना यूनिक संगीत है और गाने के बोल जो हैं आज भी मतलब
1: मुझे तो एक सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है, मितवा करके गाना है, यू कैन डू
0: जी।
1: दैट। गीत तो पसंद है, और ऑन स्क्रीन मीना कुमारी बहुत सुंदर लग रही है
0: जी
1: उसमें।
0: जी
1: उनका जो ये है ना, वो सीक्वेंस ही बहुत सुंदर है।
0: तो फिल्म देवदास की जैसे हमने बात की कि ये एक ऐसा कालजयी फिल्म और एक ये जो पात्र है ये भी अमर हो गया। और क्या उस वक्त जब ये फिल्म बनाई गई थी तो क्या ये सोचकर बनाई गई थी कि ये प्रेम और विरह की कहानी है? आप क्या सोचती हैं?
1: नहीं, देवदास का क्या है, फर्स्ट देवदास जब बनी थी, पिताजी उसके कैमरामैन थे। हाँ,
0: अच्छा,
1: बड़ुआ के देवदास का,
0: जब केएल सहगल साहब
1: जिसमें
0: जिसमें
1: केएल सहगल थे, पिताजी उसका मेन ये थे, कैमरामैन थे। तो
0: अच्छा
1: उनको तब से उनको लगता है, और पिताजी का सबसे मुझे अजीब लगता है कि पिताजी तो घर में, हमारे घर में दारू शारू का कुछ ही नहीं था, लेकिन पिताजी ने फिल्म बनाई एक एक पियक करके ऊपर।
0: जी
1: लेकिन ये आज आज भी देवदास के लिए लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा, और गाने भी बहुत सुंदर हैं,
0: बहुत शानदार
1: बहुत सुंदर गाने
0: जी।
1: हैं उसके।
0: हालांकि देवदास के आज तो कई फिल्मी संस्करण निकल गए, कई फिल्में कितनी बार बन चुकी है, लेकिन बिमल रॉय की जो देवदास है वो आज भी बिल्कुल अलग लगती है।
1: जी, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इसके बारे में।
0: बिल्कुल। तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि क्या बिमल रॉय ऐसा मानते थे कि उस वक्त सिनेमा समाज को बदल सकता है? आप उस वक्त किस कितनी उम्र की थी और आपने क्या समझा होगा, क्या जाना होगा उस वक्त?
1: मेरा उम्र कुछ ज़्यादा नहीं था, तब 15 साल की थी। तो जब देवदास बनी, देवदास का जो ये खास बात मुझे बोलना है कि देवदास के पारो का अभिनय जो है, सुचित्रा सेन,
0: जी
1: उसको पिताजी ने पहले रिजेक्ट कर दिया था कि दूसरा।
0: अच्छा
1: हाँ, वो आई थी, वो हमारे घर की बहू समझा जाती थी, उनका शादी हुआ था हमारे घर में।
0: जी
1: तो जब एक दफ़े वो उनको फिल्म में उतरना था, तो पिताजी के पास सबसे पहले आए, तो पिताजी ने बोला तुम घर की बहू हो, तुम कैसे फिल्म में काम करोगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसी को पिताजी ने बुलाया देवदास के लिए, तो हम लोग
0: जी
1: बहुत हंसते थे कि पिताजी
0: हाँ
1: को फिर से दोबारा उनको बुलाना पड़ा, क्योंकि उससे बढ़िया तो कोई नहीं, पारो
0: हाँ
1: का ये जो किया
0: जो
1: था।
0: अभी नहीं था
1: हाँ,
0: वो कोई और कर ही नहीं
1: नहीं
0: सकता था,
1: कोई
0: ऐसा
1: नहीं
0: बिमल रॉय साहब का
1: कोई
0: मानना
1: कर नहीं
0: था।
1: सकता था।
0: और वो अद्भुत सुंदर लगी हैं उसमें और ये
1: हाँ,
0: पात्र कितना जीवंत हो गया, पारो की भूमिका कितनी मतलब कालजयी एक भूमिका हो गई है, आज भी याद की जाती
1: जी
0: है
1: जी
0: जी। लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा उस वक्त देवदास फिल्म को देखने के
1: नहीं,
0: बाद?
1: लोग तो एकदम पूरा हाउसफुल जाता था, पूरा हाउसफुल जाता था। लेकिन मेरा हिसाब से कि पिताजी का देवदास जो इतना बड़ा बना है, क्योंकि उससे पिताजी उसको समझते थे, वो सामाजिक जब ये है ना समस्या
0: जो
1: है।
0: व्यवस्थाएं थी उस
1: हाँ,
0: वक्त।
1: उनको समझते थे, इसीलिए उसका इतना प्रभाव आज भी है। आज भी कोई मैं तो आज भी देवदास देखने में मुझे डर लगता है कि इतना इसका इसका जो ये है ना, माहौल जो है वो बहुत बहुत एक इम्प्रेस करता है,
0: जी
1: बहुत ज़्यादा।
0: जी
1: और आई थिंक मुझे लगता है कि वैजयंतीमाला भी जस्ट उसके पहले ही मधुबती किया था उन्होंने, क्योंकि वो डांसर भी थे ना, इसलिए उसमें देवदास में डांस तो है, इसीलिए
0: बहुत सुंदर है।
1: बहुत। हाँ,
0: तो इस फिल्म को जब निर्माण किया जा रहा था, इस फिल्म का जब निर्देशन कर रहे थे बिमल रॉय, तो उनकी दिनचर्या क्या रहती थी और आप परिवार वालों की दिनचर्या क्या उस वक्त थोड़ी बदल जाती थी?
1: नहीं, पिताजी जो काम करते, काम काम को अलग ही रखते थे वो घर से। हमारा घरेलू जो ये है ना,
0: वो अलग था।
1: अलग था एकदम, और काम का ये बहुत ही अलग था, तो कभी नहीं मिक्स करते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे एज ए डायरेक्टर, और फिल्मी दुनिया में तो ऐसा इतना डिसिप्लिन मैं देखा नहीं किसी को
0: जी
1: आज तक,
0: जी
1: कि इतना डिसिप्लिन थे। उनको कहाँ पे कब जाना है, क्या करना है, सब उनको बहुत पता था। हाँ, तो इससे हमको हमारा भी बहुत प्रभाव हुआ, कि हमको भी पिताजी का सब शायद समय बिताने को मिला। हाँ, तो इसीलिए ना कि हमको कोई ये नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है कि देवदास बनाते थे या कोई बंदिनी बनाते थे। बंदिनी तो उनकी लास्ट फिल्म है। हाँ, बंदिनी के बाद तो उनका बंद ही हो गया
0: जी
1: काम।
0: जी
1: हाँ, तो ये बहुत बहुत अहम बात है कि पिताजी कभी दोनों को मिक्स नहीं करते थे।
0: जी जी तो आप लोग क्या फिल्म हॉल में जाकर इस फिल्म को देखा था?
1: नहीं, जाते थे, देखते थे, हम लोग हॉल में भी जाते थे, लेकिन जो एडल्ट फिल्म है, जैसे देवदास तो एक एडल्ट फिल्म है, तो
0: जी
1: देवदास के लिए हमारा हम लोग को जाना ठीक नहीं लगता।

0: तथा पिता ने हमको देवदास हमने हॉल में कभी नहीं देखा।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसमें एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मैं बोलती हूँ कि उसका स्टोरी का तो एडल्ट, उसका एडल्ट इंटरप्रिटेशन है, तो इसीलिए उनके लिए जो रिलीज हुई थी, और मुझे तो याद नहीं कि मैं हॉल में जाके कभी भी देवदास देखा। मैंने फर्स्ट देखा दूरदर्शन में।
1: अच्छा, दूरदर्शन में आपने ये फिल्म देखी होगी।
0: हाँ,
1: तो इस फिल्म के गानों के बारे में तो हम क्या ही आपसे कहें, SD बर्मन साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं। कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी जो आपकी खास पसंद होगा?
0: मेरा खास पसंद है आगे तेरी मर्जी।
1: आगे तेरी मर्जी, जी बिल्कुल।
0: हाँ।

0: तो आपके घर में बराबर पढ़ाई का माहौल रहता था, आप बच्चे
1: एकदम
0: घर में पढ़ाई करना
1: पूरा।
0: मान
1: पिताजी का
0: रहे
1: ये भी
0: थे?
1: था कि हमको ऑक्सफोर्ड में ले जाए पढ़ाए।
0: अच्छा
1: हाँ, हमको
0: जी
1: लेके भी गए थे लंदन
0: जी
1: दिखाने के लिए, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा कि हम परिवार से इतना दूर रहेंगे, इसलिए मैंने हाँ नहीं किया। नहीं तो आज
0: जी
1: मैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न होती थी
0: जी
1: अगर मैंने उनका इस पर
0: बात को माना होता
1: बात को
0: तो।
1: माना था तो।
0: घर से दूर जाना आपको पसंद
1: हाँ
0: नहीं था,
1: हाँ
0: तो घर में एक आपसी सब में एक तारतम्य था, सामंजस्य था,
1: हाँ हाँ
0: प्रेम की भावना, सब एक दूसरे से गूंथे हुए थे।
1: एकदम हाँ एकदम एकदम।
0: बहुत बड़ी बात होती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, और
1: फिल्में दुनिया में स्पेशली
0: हाँ
1: फिल्में
0: सबसे
1: दुनिया
0: बड़ी
1: में
0: बात
1: हाँ
0: यह है
1: सबसे
0: कि
1: बड़ी
0: फिल्मी
1: बात है
0: दुनिया में
1: हाँ
0: रहकर एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना और
1: हाँ
0: मिलजुल कर रहना,
1: हाँ
0: विश्वास करना,
1: हाँ
0: सबसे बड़ी बात यह रही थी।
1: और हमारे सामने हम दूसरा फिल्मी दुनिया देखते थे, फिल्मी घर घर आना देखते थे, मुझे लगता था कि हमारा घर इतना अलग क्यों है, क्योंकि हमारे घर में कोई माहौल ऐसा नहीं था, कोई भी माहौल नहीं था कि हम लोग कुछ पढ़ा लिखा ये सब हमको उत्साह करना। पिताजी का बहुत अहम बात था, पिताजी बहुत मानते थे, ही वॉज एक्चुअली एजुकेशनिस्ट। आपने देखा है ना पिताजी हमारे बिमल रॉय में बिमल रॉय फिल्म्स का जो जो लोगो है
0: हाँ
1: कौन सा है आपको मालूम है कौन सी? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे,
0: जी जी
1: बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो ये है
0: वो उनका
1: टावर है
0: हाँ
1: वो उनका फिल्म का ये है,
0: लोगो
1: तो
0: है
1: ये भी कोई सोचने लायक बात है ना।
0: जी।
1: हाँ
0: जब बिमल रॉय की बात हो और सुजाता फिल्म की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम बात करते हैं सुजाता फिल्म की। आपको अपने पिता बिमल रॉय की फिल्म जो है सुजाता के बारे में सबसे खास बात तो क्या लगती है इसमें?
1: जैसे मैंने बोला कि पिताजी तो लिटरेचर बेस्ड थे ना,
0: जी
1: हमेशा फिल्म बनाने के पहले वो सोचते थे कहाँ से लाए बंगाली लिटरेचर से। सुजाता का बारे में मैं ये बताऊंगी, एक फेस्टिवल में मैं गई थी,
0: जी
1: फॉरेन फेस्टिवल,

0: जहाँ पे सुजाता, पिताजी का सब फिल्म से उन्होंने सुजाता को चूज किया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे यूरोप में कौन जात पात का कोई ये करेगा। लेकिन मैं एकदम बुद्धू बन गई सोच के, लोग बाहर आ रहे थे सब रोते रोते सुजाता देख के, उनको जो वो जो मदर डॉटर का जो है ना, मदर एंड डॉटर का जो
1: जी
0: ये है
1: जी
0: रिलेशनशिप है, उसको लेके वहाँ यूरोप में तो एकदम, और सब जो आए थे सबको, सब रो रहे थे देख के। तो मुझे ये भी ये खुलासा मिला कि देखो ये भी हमने सोचा नहीं था पहले।
1: इस विषय को उठाने का, सुजाता फिल्म को बनाने के पीछे क्या विचार रहे होंगे आपके पिता के?
0: ये तो मैं नहीं कह सकती, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन चूज़ किया उन्होंने, ज़रूर अच्छा लगा होगा इसीलिए चूज़ किया है।
1: उस समय बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी ये समस्या है, लेकिन उस वक्त इसको उठाना, इस विषय को, बहुत ही बोल्ड विषय था और बहुत ही निर्भीक होकर उन्होंने इस बात को आवाज़ दी कि किस तरह से माँ और बेटी के किरदार को जीवंत किया और इस फिल्म में उन्होंने नूतन को चुना।
0: हाँ,
1: इसके पीछे क्या कुछ खास
0: नूतन
1: कारण रहे
0: पिताजी के
1: होंगे?
0: सबसे फेवरेट एक्ट्रेस थे।
1: जी
0: नूतन की जो खास फिल्में हैं सुजाता और बंदिनी। हाँ, तो पिताजी ने जब बंदिनी पिताजी ने सोचा बनाने का, तो वो नूतन को साइन करने को गए। तो नूतन ने बोला, दादा मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छा लगा, लेकिन शायद मैं आपके साथ नहीं कर सकूँगी। तो पिताजी ने बोला, क्यों, क्या बात है?
1: जी
0: तो बोले, हम प्रेग्नेंट हैं, तो मैं अभी कैसे, मैं प्रेग्नेंट है तो मैं फिल्म में काम नहीं करूँगी। तो पिताजी ने बोला कि तब मैं नहीं बना सकूँगी बंदिनी। तो उनका हस्बैंड जो थे, उन्होंने उनको उत्साह दिया, बोला, विमलदा आप जरा जल्दी जल्दी शूटिंग कर लीजिए, तो फिर ये नूतन आपके साथ काम करेगी।
1: अरे
0: तो वही
1: वाह,
0: हुआ बात, शी
1: जी,
0: वॉज प्रेगनेंट वेन शी वॉज शूटिंग बंदिनी।
1: जी और उन्होंने क्या लाजवाब अभिनय किया है, अद्भुत अभिनय किया, और उसके बाद तो वो मतलब महान अभिनेत्रियों की एक लाइन में खड़ी हो गई। आप लोग गए इस फिल्म को देखने फिल्मी पर्दे पर?
0: हम लोग गए थे हॉल में देखने के लिए, मुझे याद है, यहाँ पे जो
1: फिल्म
0: ओपेरा हाउस है ना,
1: जी,
0: ओपेरा हाउस में रिलीज हुई थी, और सिल्वर जुबली किया था उस।
1: तो चलिए इस फिल्म का कोई गीत सुन लिया जाए,
0: हाँ
1: बताइए।
0: श्योर, जरूर।
1: चलिए तो फिल्म सुजाता का एक गीत सुनते हैं।
0: हाँ।

0: बहुत सुंदर गीत। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रिंकी जी कि अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर कितने जागरूक थे, क्या उनकी फिल्मों में गीत और संगीत भी उतना ही मायने रखता था जितनी फिल्म की कहानी या फिल्म का किरदार?
1: ऑफ कोर्स, जरूर, क्योंकि पिताजी ने जो पिक्चराइजेशन किया है गाने को, जैसे मुझे तो अभी तक कोई इतना ये नहीं लगता है कि कोई दूसरा डायरेक्टर इतना ये करता है, मायने रखता है। बहुत ही अच्छा उन्होंने पिताजी का गाने पिक्चराइजेशन एक स्पेशल ये था, उनका टैलेंट था।
0: उनकी पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर और ये सभी रहे
1: था। उनके पसंदीदा जो थे ना
0: संगीतकार भी
1: एसजी
0: बर्मन और सलील चौधरी साहब,
1: संगीतकार सलील चौधरी
0: एसजी। बहुत सारी फिल्में, ज्यादातर फिल्में सलील चौधरी साहब ने उनकी जो है संगीत में ढाली हैं, और एसजी बर्मन साहब का तो खैर संगीत हम सुन ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म बंदिनी का जिक्र हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब फिल्म बंदिनी उन्होंने बनाई तो आप क्या कहना चाहेंगी, फिल्म कैसे बनी और इस फिल्म की कोई शुरुआत कैसे हुई होगी, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने जब सुना कि पिताजी इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, वो एक इससे था, एक लिटरी बंगाली लिटरेचर से था
0: जी।
1: तो मैंने जाके मैं उसको रीड किया पहले।
0: अच्छा, हाँ, मुझे उस कहानी को
1: तो मुझे लगा कि हाँ, इससे अच्छा बढ़िया बन जाता है। ये कल्याणी का स्टोरी है, वो जो है ना, जो लिटरेरी जो ये है वो लिखा है जरासंध करके, जिनका नाम था जरासंध, पेन नेम, हाँ, तो उन्होंने लिखा था। तो उनको जो ये स्टोरीज कलेक्शन था उसमें कल्याणी का स्टोरी पिताजी ने चूज किया था।
0: तो उस वक्त तो उनको ये फिल्म बनाने का विचार इसीलिए आया क्योंकि उस समय की ये समसामयिक एक कहानी थी, घटना थी। तो आपके पिता जब कलाकारों के साथ काम करते थे तो उनके काम करने की प्रक्रिया क्या रहती होगी, कलाकारों के साथ क्या संबंध रहते होंगे, किस तरह का व्यवहार रहता होगा, किस तरह से समझाना होता होगा एक डायरेक्टर के तौर पर?
1: हाँ, पिताजी कभी भी एक्टिंग नहीं दिखाते थे किसी को।
0: अच्छा,
1: जैसे राज कपूर है ना, राज कपूर हर भूमिका को एक्टिंग करके अपना स्टार को दिखाता है। पिताजी ने बहुत बहुत डिस्टेंस से उनको ये था। उनका एक डायलॉग राइटर था जो बहुत हिंदी एंड बंगाली जो जानता था, उनको पिताजी ने बताया था कि तुम जाके बोलो एक्ट्रेस को, इस नूतन का है तो इतना इतना ये करे, हाँ, ये ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो वो डिस्टेंस से करते थे, वो कभी एक्टिंग नहीं दिखाता था
0: जी। तो बंदिनी फिल्म की जो कल्याणी किरदार था नूतन जी का, तो बिमल रॉय ने जिस गहराई से इसे पिरोया, ये बहुत लाजवाब था।
1: हाँ, ऐसा हुआ कि गुलजार प्रोडक्शन में था, बिमल रॉय प्रोडक्शन में ऐसे असिस्टेंट था, तो एक गाने का कहीं जरूरत हुआ तो शैलेंद्र नहीं लिख पाए उसको, तो गुलजार ने उसको लिख दिया, ओपनिंग सॉन्ग ऑफ बंदिनी, मोरा गोरा अंगलेला
0: जी।
1: अच्छा, तो सुन, तो फिर मैंने पिताजी ने बोला कि तुम गाना भी लिखते हो क्या, तो उन्होंने बोला ऐसे, हाँ लिखता हूँ कभी कभी दादा, तो बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम अभी वो सब जहाँ वो काम करते थे मैकेनिक गैराज, गाड़ी का गैराज में, तो बोले तुम गाड़ी वो सब छोड़ो, तुम आ जाओ हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन में, तुम गाना लिखोगे। तो गुलजार का फर्स्ट गाना पिताजी हमारा

0: से में था। हाँ, वो था नॉर्थ बोरा गोरा एंगले, वो गाना का रिकॉर्डिंग उन्होंने किया फिर। दैट इज हिज फर्स्ट सॉन्ग फॉर विमल प्रोडक्शंस।
1: जी
0: हाँ, पिताजी का बोलने पर वो फिर वो छोड़ भी दिए, फिर एकदम एकदम से ज्वाइन कर लिए।
1: चलिए, तो बंदिनी फिल्म का गीत हम सुन लेते हैं।

0: उन्होंने जब ये चूज किया स्टोरी कल्याणी की स्टोरी बंदनी के लिए, तब मैं पढ़ने को गई तो मुझे मुझे भी लगा कि हाँ ये बहुत अहम बात है कि ऐसा कोई एक स्टोरी है जिसमें किसी ने जेल से आके लिखा है उसका केस, एक केस हिस्ट्री था ये रियल केस हिस्ट्री। हाँ तो इसीलिए बहुत इसका बहुत माने रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उस वक्त ये एक बहुत सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई थी। तो वही हम मधुमति के बारे में भी बस यही जानना चाह रहे थे कि पुनर्जन्म से संबंधित ये फिल्म थी।
0: मधुमति का अलग ही बात है, क्योंकि मधुमति का जो मधुमति लिखा गया था खाली पिताजी का प्रोडक्शन के लिए लिखा गया था, वो कोई लिटरेरी वे नहीं था।
1: जी बिल्कुल,
0: उसको क्लेम करते हैं ऋतिक घटन ने लिखा था, पता नहीं, लेकिन वो लिखा था पिताजी के लिए।
1: लेकिन वो बहुत उस जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी।
0: वो तो है, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक,
1: बिकॉज
0: ऑफ ऑल द कास्टिंग, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, प्राण, बहुत बढ़िया। ये पिताजी ऐसे ही बनाए थे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस तभी फाइनेंशियली थोड़ा डाउन था, तो किसी ने बोलता है कि दादा आप इतना फिल्म बना रहे हैं लेकिन आप प्रोडक्शन का नहीं देख रहे, तो प्रोडक्शन ये हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि आप इतना खर्चा, पिताजी खर्चे का देख नहीं थे, देख भी नहीं थे कि क्या था। तो जब उन्होंने बोला तो पिताजी ने बोला से ठीक है मैं ऐसा फिल्म बनाऊंगा जिसमें सब कुछ है।

0: कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, गाने हैं, डांस है, सब कुछ है, विलेन, हीरो, हीरोइन, हाँ
1: वो तो, सब था जो एक फिल्म में होना चाहिए।
0: वो जो था वो सब होल फिल्म में होना चाहिए, तो मधुमति उसी हिसाब से बनाया गया
1: जी। तो वो जो गाने पूरे इतने सुपर डुपर हिट हुए, घर घर में वो गाने बजने लगे, क्या आपके घर में भी रेडियो था उस वक्त? आप गीत संगीत तो सुन सकते थे, ये माहौल तो था घर में। तो चलिए हमारे श्रोता उन्हें गीत हम सुना देते हैं, आप कहें

0: बहुत ही सुंदर गीत हमने सुने। और रिंकी जी, आप उनकी बड़ी पुत्री हैं, आपने पिता को बचपन से फिल्मकार के रूप में देखा है, फिल्में बनाते हुए देखा है, एक पुत्री होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, इस विरासत को आप किस ढंग से संभाल रही हैं आज तक?
1: मैं इस तरह से संभाल रही हूँ कि मेरे पिताजी का जो फिल्म है उसको रीइशू
0: जी,
1: उसको रिस्टोर करना, तो मैंने काफ़ी एक यहाँ पे है रिस्टोर कर रहे हैं, तो हमने 4 फिल्में तो अभी रिस्टोर करने के लिए दे दिया है, वो भी अभी न्यू DVD बन के आ जाएगी अभी। तो हो गया है 4 फिल्म की
0: जी
1: बात है।
0: कौन कौन सी फिल्में हैं वो?
1: मधुमती, देवदास
0: जी,
1: बंदिनी और 2 बीघे जमीन
0: जी,
1: ये 4। इधर है एक जो रिस्टोरर है शिवेंद्र डूंगरपुर करके,
0: अच्छा,
1: तो शिवेंद्र ने इसको ये किया है, रिस्टोर किया है, 4 फिल्में। नेक्स्ट ईयर समटाइम ये सब फिर से दोबारा आ जाएगी, DVD नया DVD आ जाएगी।
0: अच्छा,
1: सबकी हाँ
0: जी, बहुत बड़ी एक इस विरासत को आपने संभाला है और इसे जीवंत बनाए रखा है आज तक। तो रिंकी जी, आपको अपने पिता की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी?

0: क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है।
1: जी
0: मुझे तो अभी भी मधुमती देख, कभी भी मैं देखती हूँ ना मधुमती, तो मुझे लगता है कि देखते ही रहूँ यू नो, इतना उसका असर है। और एक दफे एकदम मैं ऑडियंस ही बन जाती हूँ।
1: हाँ,
0: ये तो मधुमती के साथ है। दुबे का जमीन देखने को थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि ट्रेजिक है। हाँ, लेकिन जैसे ये दोनों फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है, मधुमती और दुबे का जमीन दोनों।
1: हाँ, कभी आपको लगा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती और आगे चलकर एक बहुत बड़ी फिल्मकार बनती और बहुत सारी फिल्मों का निर्माण या निर्देशन करती जैसे मेरे पिता ने उस वक्त किया?
0: नहीं नहीं ये कभी नहीं आया, बल्कि मैंने अभी तक मैंने सोचा ही नहीं था कि हम फिल्म बनाएंगे, इसीलिए इसी डर से कि मेरे को कोई कंपेयर करेगा पिताजी से।
1: अच्छा।
0: इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं बनाना है फिल्म, और जो बनी है वो एक्सीडेंटली बन गई है।
1: जी, तो उन फिल्मों के बारे में आप हमें बताइए जो जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म बनाई हैं आपने।
0: मैंने दो ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, एक है डोमेस्टिक वायलेंस पे, क्योंकि मैंने औरतों के साथ बहुत सारा काम किया है एनजीओ के साथ
1: जी,
0: तो उसको बनाया है बिहाइंड क्लोज डोर्स करके, और बस ये एक फिल्म है मैं जिसके बारे में बोलना चाहूँगी कि बिहाइंड क्लोज डोर्स है, वो वेरी बिग डॉक्यूमेंट्री, वो फेस्टिवल्स में भी गई है और इसको लेके लोग देखते भी हैं, अभी भी देखते हैं, डीवीडी में है वो।
1: इस फिल्म में जो महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है उसके बारे में आपने काफी, और आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ काम किया है, काफी लंबे समय तक आप सोशल वर्कर के रूप में काम करती रही हैं, बहुत सारी किताबों का लेखन भी किया है, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपकी किताबें कौन कौन सी थी, आपने किन किन विषयों पर ये किताबें लिखी?
0: मैंने ज़्यादातर किताबें लिखी और वुमेन्स इश्यूज़ को लेके, और दो एक पिताजी पे लिखे हैं, दो एक मेरे पास दो किताबें हैं, जो एक तो है मधुमती खास, मधुमती का क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है
1: जी,
0: वो पब्लिश हुआ है, और एक किताब है जिसके डोमेस्टिक वायलेंस के बोला ना मैं बिहाइंड क्लोज डोर, ये दोनों बहुत खास है।
1: इनका रिएक्शन आपको कैसा मिला जब ये किताबें दुनिया के समक्ष गई लोगों की, खासतौर से महिलाओं का?
0: बहुत अच्छा, इट इज़ वेरी बिग, ये लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी हो जाए इसका
1: जी हिंदी भाषाओं में।
0: हाँ, कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हो जाए।
1: आपको कहीं ना कहीं ये दबाव रहता होगा कि पिता से कंपेयर करेंगे, तो क्या ऐसी मानसिक स्थिति में भी आप दबाव में रही?
0: नहीं नहीं मैं दबाव में नहीं थी, मैंने बोला ना इसीलिए मैंने कॉन्शियसली मैंने ऐसे किया कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगी क्योंकि लोग तो मुझे कंपेयर करेंगे ही ना पिताजी से, इसलिए मुझे लगा कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए फिल्में, तो एक डोमेस्टिक वायलेंस पे था वो मुझे करना ही था क्योंकि उसके लिए मुझे फंडिंग मिली गवर्नमेंट फंडिंग।
1: अच्छा।
0: हाँ, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, तो इसीलिए मुझे पैसा भी मिला था बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने बनाया, और नहीं तो मैं फिल्म के लिए मैं कुछ आग्रही नहीं थी इतना। मैं कॉन्शियसली पिताजी का जो आइडियल्स है उनका जो ये है फिलोसफी है उसको फॉलो करने का मैं कोशिश करती हूँ।

0: अगर आपको अपनी पूरी रचनात्मक यात्रा, जिसमें पत्रकारिता है, किताबें हैं, सिनेमा है और बिमल रॉय की विरासत है, को एक वाक्य में देखना हो तो आप क्या कहेंगे कि आप वास्तव में किसकी आवाज दर्ज कर रही हैं? फिल्म की, स्त्रियों की, परिवार की, या उन लोगों की जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है?
1: आपने जो कहा ये बहुत सही बात है, जो जिसका आवाज दबा दिया गया है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट देम, जो वॉइसलेस है उनके बारे में मैं, मेरा ये हमेशा कोशिश रहा कि मैं उसी को ये करूँ
0: जी। और उसमें आप लगी भी हैं आज भी, उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी आप लगातार अपनी इस यात्रा को बनाए हुए हैं। रिंकी भट्टाचार्य जी, आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्मकार बिमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों के अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: उजाले उनकी याद।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
2: बिल्कुल।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने वाले हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के लिए सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रिलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महामारियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह दिखा दिया है कि परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोगाइफ के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्नीनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री पिछले दो दिन से दुनिया भर के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। वे आज दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था तथा वित्त मंत्री जमशीद कुचकरोफ से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हित से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचार साझा किए। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में आयोजित 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल गया है। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का बाजार मात्रा के लिहाज से वर्तमान हीरा बाजार से लगभग 50 गुना बड़ा होने की उम्मीद है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 140 यात्री और चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने लगातार तीसरी बार जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन में खेले गए फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया। वहीं दुबई में महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला आज 8 बजे मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FMX 7.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ की केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत आप सुनेंगे कुदरत फिल्म से लता मंगेशकर का गाया।

कयामत से कयामत तक फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। प्रोग्राम का अगला गीत फिल्म सत्ते पे सता से किशोर कुमार और अनीता पिंटू की आवाजों में।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है।
1: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भत्ते पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
2: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
3: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक अच्छा है पर सुनने में कुछ आपको तकलीफ भी हो सकता है क्योंकि नाजुक टॉपिक है पर आजकल चल रहा है समाज में बहुत से लोगों के साथ ये हो रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर बच्चों पे क्या असर पड़ता है, डिवोर्स का बच्चों पे क्या असर पड़ता है, आइए जानेंगे आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। तलाक एक परिवार के लिए मुश्किल समय हो सकता है। न केवल माता पिता एक दूसरे से संबंध बनाने के नए तरीके सीख रहे हैं बल्कि वे अपने बच्चों के परवरिश के नए तरीके भी सिखा रहे हैं। जब माता पिता तलाक लेते हैं तो बच्चों पर तलाक का असर अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चे तलाक के प्रति स्वाभाविक और समझदारी से प्रतिक्रिया करते हैं जबकि अन्य बच्चे बदलाव के साथ संघर्ष कर सकते हैं। बच्चे लचीले होते हैं और सहायता के साथ तलाक के संक्रमण को संकट के बजाय समयोजना के रूप में अनुभव किया जा सकता है। चूंकि तलाक में बच्चे अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग उम्र, इसीलिए बच्चों पर तलाक का प्रभाव भी अलग अलग होता है। सभी स्वभाव के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझकर तलाक का सामना करता है। इसे ध्यान में रखते हुए यह तलाक के बच्चों पर पड़ने वाले कुछ सबसे आम प्रभाव बताए गए हैं जिनके प्रबंधन में माता पिता की मदद कर सकता है। तलाक परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुश्किल होता है। बच्चों के लिए परिवार की बदलती गतिशीलता, इसको समझने की कोशिश करना उन्हें विचलित और भ्रमित कर सकता है। उनके दैनिक ध्यानों में ये व्यवधान बच्चों पर तलाक के प्रभाव में से एक उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में देखा जा सकता है। दैट मीन्स इट विल अफेक्ट देयर एकेडमिक्स। बच्चे जितने अधिक विचलित होंगे उतने ही अधिक संभावना है कि वो अपने स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। शोध से पता चला है कि तलाक बच्चों को सामाजिक रूप से भी प्रभावित कर सकता है। जिन बच्चों का परिवार तलाक से गुजर रहा है उन्हें दूसरों से घुलने मिलने में कठिनाई हो सकती है और उनका सामाजिक संपर्क कम हो सकता है। तलाक के कारण बच्चों पर उसका असर पड़ सकता है क्योंकि उन्हें बार बार बदलाव के साथ तालमेल बिठाना सिखाई पड़ती है। नए परिवार की गतिशीली, नया घर या रहने की स्थिति, स्कूल, दोस्त और बहुत कुछ, इन सभी का असर हो सकता है। तलाक एक परिवार के लिए कई तरह की भावनाओं को सामने ला सकता है और इसमें शामिल बच्चे भी इससे अलग नहीं है। नुकसान, गुस्सा, भ्रम, चिंता और कई अन्य भावनाएं सभी इस संक्रमण से आ सकती है। तलाक बच्चों के अनुभूति और भावनात्मक रूप से संवेदनाशील महसूस कर सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। बच्चों को अपनी भावनाओं को बेहतर निकालने के लिए एक आउटलेट की आवश्यकता होती है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वे बात कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति

जो उनकी बात सुन सके। बच्चे तलाक के प्रभावों को अपनी भावनाओं को संसाधित करने के तरीके महसूस कर सकते हैं। कुछ मामले में जहां बच्चे अभिभूत महसूस करते हैं और तलाक के दौरान महसूस होने वाले प्रभाव पर प्रतिक्रिया करना नहीं जानते, वे क्रोधित या चिड़चिड़ा हो सकते हैं। उनका गुस्सा कई तरह के कथित कारणों पर निदर्शित हो सकता है। तलाक की प्रतिक्रिया से गुजर रहे बच्चे अपने माता पिता, खुद पर, अपने दोस्तों और दूसरों पर गुस्सा दिखा सकते हैं, जबकि कई बच्चों के लिए गुस्सा कई

हो सकता है। तलाक की प्रतिक्रिया से गुजर रहे बच्चे अपने माता पिता, खुद पर, अपने दोस्तों और दूसरों पर गुस्सा दिखा सकते हैं, जबकि कई बच्चों के लिए ये गुस्सा कई हफ्तों के बाद खत्म हो जाता है। अगर ये बना रहा तो ये जानना जरूरी है कि ये बच्चों पर तलाक का एक स्थायी प्रभाव हो सकता है। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि उनके परिवार में तलाक क्यों हो रहा है। वे कारणों की तलाश करेंगे या सोचकर कि क्या उनके माता पिता अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते या उन्होंने कुछ गलत किया है। अपराध बोध की ये भावनाएं बच्चों पर तलाक का एक बहुत ही सामान्य प्रभाव है, लेकिन ये कई अन्य समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। अपराध बोध दबाव बढ़ाता है, अवसाद, तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। इससे अपनी भूमिका को समझने के लिए बच्चों को संदर्भ और परामर्श प्रदान करना अपराध बोध की इन भावनाओं को कम करने में मदद कर सकती है। जब बच्चे ऐसे कठिन समय से गुजरते हैं तो अनसुलझे संघर्ष भविष्य में अप्रत्याशित जोखिम पैदा कर सकते हैं। शोध से पता चला है कि पिछले 20 सालों में तलाक का सामना करने वाले बच्चों में अपराध में भाग लेने, विनाशकारी व्यवहार के जरिए विद्रोह करने की संभावनाएं ज्यादा होती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। ज्यादातर बच्चों ने बताया कि उन्हें धूम्रपान की आदत लग गई है या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का इस्तेमाल करने लगे हैं। इन मुद्दों से निपटना शारीरिक समस्याओं सहित कई तरह के परेशानियों का कारण बन सकता है। तलाक का अनुभव करने वाले बच्चे, वे बीमारी की संभावना अधिक हो सकती है, जो कई कारकों को और कई कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें सोने में कठिनाई भी शामिल है। इसके अलावा अवसाद के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य की हानि और बिगड़ते स्वास्थ्य के लक्षण और भी बढ़ सकते हैं। तलाक का अनुभव करने वाले बच्चों को अपने रिश्ते में होने पर तलाक की संभावना अधिक होती है। कुछ शोध संकेत देते हैं कि तलाक की ये प्रवृत्ति गैर तलाकशुदा परिवारों से आने वाले बच्चों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक हो सकता है। फिर भी जबकि ये तलाक के बच्चों पर होने वाले कुछ संभावित प्रभाव है, ये किसी भी तरह से पूर्ण या पत्थर पर लिखे हुए नहीं है। अधिक से अधिक परिवार समझ रहे हैं कि तलाक उनके बच्चों के साथ साथ उनके लिए भी कितना तनावपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम सुन चुके हैं कि क्या होता है, बच्चों पर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए सोच समझ के कदम उठाइए। जो भी है, अपने फैमिली को आप इसमें इन्वॉल्व कीजिए, बड़ों को इन्वॉल्व कीजिए। अगर इनसे भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप प्रोफेशनल काउंसलिंग, प्रोफेशनल हेल्प तो हमेशा ही सकते हैं। ध्यान रखें, जो भी निर्णय आप लेते हैं इसका असर सीधा अपने बच्चों पर पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कॉल और मैसेजेस ऑन 09515227039, दैट 09515227039, और राइट टू अस एट feedbackamc1@gmail.com, दैट्स feedbackamc1@gmail.com। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस एट आर सोशल मीडिया हैंडल spice.lamhe.vanilla, दैट्स spice.lamhe.vanilla। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। श्रोता प्रस्तुत है प्रोग्राम नॉन स्टॉप नगमे। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं फिल्म बाजीगर के इस गीत के साथ।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम नॉन स्टॉप नगमे अब संपन्न होता है। जाते जाते आपको बता दें उन फिल्मों के नाम जिनसे आज आपने सुने इस प्रोग्राम में गीत। वो फिल्में थी बाजीगर, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सोल्जर, इश्क और दिल तो पागल है। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आज लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए

0: स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने मौजूदा आसियान अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिलीपींस की भागीदारी का स्वागत किया। श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ और द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी से निपटने की तैयारियों में भारत एक दशक पहले की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है। देश ने ऐसी जीवंत जैव अर्थव्यवस्था, टीका विकसित करने की बेहतर क्षमता और वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है जिनसे भविष्य में महामारियों से निपटने की वैश्विक तैयारियों में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में महामारी के लिए तैयारी नवाचार गठबंधन के बोर्ड और निवेशक परिषद के लिए आयोजित एक समारोह में कही। चीन के मोकी में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया जबकि पुरुष वर्ग फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz ते आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
0: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: अरोड़ा प्लाईवुड
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
4: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए ब्रिक्स एवं सहयोगी देशों की सक्रिय भागीदारी और मजबूत बहुमूल्य योगदान के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री नायब

0: सैनी ने आज पटियाला के ज़िले के गांव हडाना में कारगिल युद्ध के शहीद नायक मलकीत सिंह की 26वीं पुण्यतिथि पर उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के सहकारिता मंत्री ने सहकारिता को किसान, कर्मचारी, महिला और युवाओं की आर्थिक मजबूती का आधार बताया। और सोनीपत में मुरथल रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत और दो घायल हुए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का एक इकोसिस्टम है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतता पर ब्रिक्स सत्र में अपने समापन भाषण के दौरान श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा। उन्होंने सभी नतीजों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की ज़रूरत पर जोर दिया जिनका ज़मीनी स्तर पर असर दिखे। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे कि ब्रिक्स का ढांचा सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित ना रहे बल्कि असल जिंदगी में ठोस असर डाले। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि दुनिया अब इस समूह से ठोस नतीजों की उम्मीद कर रही है, ना सिर्फ विचारों और वादों की। उन्होंने भरोसा जताया कि ब्रिक्स सामूहिक प्रयासों से निश्चित रूप से इन उम्मीदों पर खतरा उतरेगा। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की तारीफ की और उनकी सक्रिय भागीदारी और बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभार जताया। श्री मोदी ने कहा कि उनकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती अहमियत, खुलेपन और समावेशिता का सबूत है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: इससे पहले नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के खुले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि महामारी, जलवायु आपदाओं और सप्लाई चेन में रुकावटों ने यह दिखा दिया है कि आज की आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। श्री मोदी ने कहा कि इसलिए ब्रिक्स देशों ने समूह के भीतर लचीलापन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिक्स रसद आपूर्ति श्रृंखला सहयोग प्रारूप आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक विश्वसनीय और सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स MSME सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। नवाचार के तहत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि भारत ने नए और बड़े पैमाने पर लागू होने वाले समाधानों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप नवाचार कोष का प्रस्ताव रखा है।
1: इनोवेशन के अंतर्गत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क हमारे स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा। इनोवेटिव और स्केलेबल सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए हमने ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव रखा है। ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है जो स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों को अधिक विश्वसनीय, कुशल और सुलभ बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंजाब के पटियाला ज़िले के गांव हडाना में कारगिल युद्ध के अमर शहीद नायक मलकीत सिंह की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शहीद नायक मलकीत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके अदम्य साहस और राष्ट्र के लिए दिए सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहीद के परिवारजनों से बातचीत किया और उनके प्रति सम्मान एवं संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिक राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं। शहीद नायक मलकीत सिंह का अदम्य साहस, वीरता और मां भारती के प्रति समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। शहीद नायक मलकीत सिंह की वीरगाथा आने वाली पीढ़ियों को कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्रभक्ति और देश की सेवा के लिए

0: सदैव प्रेरित करती रहेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को तकनीक, पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक प्रबंधन से जोड़कर किसान, कर्मचारी, महिला और युवाओं की आर्थिक मजबूती का बड़ा आधार बनाया जा रहा है। वे आज अंबाला छावनी में द पोस्टल एंड आरएमएस एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव बैंक के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता का मूल मंत्र मैं नहीं हम है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी एक बात कहते हैं कि सहकारिता का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि हर घर को हर कहीं न कहीं काम से जोड़ सकता है वो सहकारिता विभाग। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी कोशिश करते हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में और वृद्धि, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र संग चले संग बढ़े, मिलकर के चलने की बात सहकारिता में है और सहकार से समृद्धि और समृद्धि से सशक्त हमारा देश।
0: डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने में सभी लोग अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सहकारी बैंक से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक डाक एवं बीएसएनएल विभाग के 13,000 से अधिक स्थायी कर्मचारियों का इससे शेयरधारक के रूप में जुड़ना सहकारिता की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सदस्य को आवश्यकता के समय तुरंत 11 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था संस्था के सदस्य हित की भावना को दर्शाती है। बच्चों की शिक्षा, विवाह, मकान अथवा आकस्मिक जरूरत के समय अपनी सहकारी संस्था जब कर्मचारी के साथ खड़ी होती है तो वो केवल बैंक नहीं बल्कि परिवार के सहयोगी की भूमिका निभाती है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हरियाणा में पैक्स को केवल खाद एवं ऋण वितरण तक सीमित रखने की बजाय बहुउद्देशीय बनाया जा रहा है। 710 पैक्स के कंप्यूटरीकरण, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और सामान्य सेवा केंद्र जैसी सुविधाओं के जरिए गांवों में सहकारी संस्थाओं को सेवाओं का मजबूत केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री ने बैंक प्रबंधन से सदस्य हित को प्रत्येक निर्णय के केंद्र में रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान निदेशक मंडल के प्रयासों से पिछले करीब 2 वर्षों में बैंक की कार्यशील पूंजी में लगभग 200 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। आज फरीदाबाद के NIT स्थित खान दौलतराम धर्मशाला सभागार में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से विशाल रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में फरीदाबाद, वल्लभगढ़ और पलवल से बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। शिविर के दौरान लगभग 400 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर की संयोजक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने बताया,
2: जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसमें हमारे सहयोगी हैं रोटरी और BK और ESI। सहयोगी के भाव ये है कि जितना ब्लड आएगा 20% BK में और 20% ESI में और 60% रोटरी ब्लड बैंक में जाएगा। ब्लड उन थैलेसीमिक बच्चों को चाहिए, गर्भवती बहन बेटियों को चाहिए। वैसे तो फरीदाबाद नंबर 1 डोनर है, लेकिन फिर भी साल में 2 महीने ऐसे आते हैं जब अति की गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी है, जैसे अति ब्लड जो है कम हो जाता है। दूसरा, जब अति की सर्दी होती है, और अभी हम सब जानते हैं कि वायरल फीवर बहुत फैला हुआ है, और जो रूटीन में डोनेट करते हैं वो भी नहीं कर पा रहे।
0: समाज सेवी एवं रक्तदाता उमेश अरोरा ने कहा कि थैलेसीमिया के मरीजों को रक्त की कमी के चलते यह शिविर लगाया गया।
3: ये कैंप थैलेसीमिया बच्चों के लिए मिल रहे ब्लड की कमी की वजह से लगाया गया है। उनको अभी इस समय में ब्लड की बहुत कमी हो रही है। फरीदाबाद में 140 से ऊपर बच्चे हैं जिनको अभी रेगुलर ब्लड चाहिए, तो उनके लिए और ESI के अंदर जो ऐसे लोग हैं जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट चल रहा है उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली लगाया गया है।
0: सोनीपत में मुरथल रोड पर आज सुबह एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि उसके 2 साथी घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का इकोसिस्टम है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी अमन देव तो प्रदेशक खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का एक समूह नहीं सगो समस्यावां हल करन दा एक मंच है अते पिछले दो दिनों दौरान हुई चर्चावां ने इस विश्वास नूं होर मजबूत किया है। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार की मलकियत वाले थर्मल बिजली प्लांटां विच कोले की कोई कमी नहीं है। गुरदासपुर पुलिस ने सरहद परों हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह के पांच मुलजमान नूं हथियारों समेत गिरफ्तार किया है। मौसम विभाग वालों अगले पांच दिनों दौरान पंजाब और हरियाणा में कई थावां ते भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया ते भारत ने चीन नूं 1-0 नाल हरा के महिला जूनियर एशिया कप का खिताब लगातार तीजी बार जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कहा कि ब्रिक्स सिफर देशों का एक समूह नहीं सगों समस्यावां हल करन दा एक मंच है अते पिछले दो दिनों दौरान हुई चर्चावां ने इस विश्वास नूं होर मजबूत किया है। लचकीलापन, नवीनता, सहयोग ते निरंतर विकास बारे सैशन विच श्री मोदी ने उम्मीद प्रगटाई कि ब्रिक्स सम्मेलन विच अपनाया गया नवीं दिल्ली ऐलाननामा भविख दे सहयोग लई इक सांझा दृष्टिकोण अते स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा। उन्होंने सारे नतीजियां नूं इक समें सीमा दे अंदर जमीनी पद्धर ते दिसण योग प्रभाव वाले कार्यां विच बदलण दी लोड़ ते जोर दित्ता।
1: हम आशा करते हैं कि इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने नेतावां दा उन्हां दी सरगर्म भागीदारी ते कीमती योगदान लई धन्नवाद कीता। श्री मोदी ने कहा कि नेतावां दे कीमती सुझावां ने सहयोग नूं विशाल अते डूंघा कीता है। उन्हां कहा कि उन्हां दी मौजूदगी ब्रिक्स दी वधदी महत्ता, खुल्लेपन अते समावेश दा प्रमाण है। इस तों पहलां सिखर सम्मेलन दे खुल्ले सैशन नूं संबोधन करदिआं श्री मोदी ने कहा कि महामारियां, जलवायु नाल संबंधित आफतां अते सप्लाई लड़ी विच विघनां ने दिखाया है कि एक आपस विच जुड़े संसार विच कोई वी संकट इक इलाके तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे ब्रिक्स देशों ने समूह के अंदर लचकीलेपन और संकट नाल निपटने की समर्था वधाउण ते विशेष जोर दिता है। प्रधानमंत्री ने चुनौतियों की समय सिर पछाण करन, अगाऊं तैयारी ते तुरंत कार्रवाई की महत्ता ते जोर दिता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इंफेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पांस के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने सावधान किया कि तकनोलॉजी और महत्वपूर्ण खनिजों का हथियारीकरण तरक्की में एक महत्वपूर्ण रुकावट पैदा कर सकता है। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकार की मलकियत वाले थर्मल बिजली प्लांटों में कोले की कोई कमी नहीं है। सूबे ने पहला ही पछवाड़ा कोला खान चालू कर दिता है ता जो सूबे दी अपनी बिजली उत्पादन सहूलतों लई कोले की ढुकवी उपलब्धता यकीनी बनाया जा सके। पंजाब दे बिजली अते लोक निर्माण मंत्री तरनप्रीत सिंह सोंद ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विच कोले दी घाट बारे लाए गए इल्जामां दा खंडन करदे हैं गल कही। हालांकि उन्होंने कहा कि मुद्दा निजी थर्मल बिजली प्लांटां नूं कोले दी सप्लाई दा है, जिस लई कोल इंडिया जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि मुख सकत्तर की अगुवाई विच एक टीम अज प्लांट के अधिकारियों नाल मुलाकात कर रही है अते 24 तों 28 घंटे के अंदर इन्हां प्लांटां नूं चालू करन की संभावना है। पंजाब दे खेतीबाड़ी खेत्र लई बिजली दी निर्विघन बिजली सप्लाई की महत्ता नूं उजागर करदिआं मंत्री ने दस्सिया कि उन्होंने केंद्रीय बिजली मंत्री नूं यह अपील भी की है कि वह यह यकीनी बनाउण कि पंजाब नूं केंद्रीय बिजली पूल तों अपना पूरा हिस्सा मिले। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लाया कि पंजाब सरकार वालों अपने कथित सियासी हितों लई बिजली निगम सामने खड़े किए गए वित्तीय संकट और माड़े प्रबंधन कारण पंजाब नूं ब्लैकआउट का सामना करना पै रहा है। पंजाब बीजेपी के सबक प्रधान सुनील जाखड़ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार की झूठी बिजली क्रांति का सच भी उजागर हो गया है। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, तो यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। गुरदासपुर पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के सहयोग नाल सरहद परों

0: इस शब्द दे नाल ही साडा अज दा प्रोग्राम अमृत बाणी हुण समाप्त हुंदा है। FM 107.2 MHz ते इह आकाशवाणी है ते तुसीं सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।
1: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

0: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸਰੋਤਿਓ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਮਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
5: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
4: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
5: HIV
4: नहीं पता ना, समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई, सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल

0: असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
1: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
2: जय माला।

फौजी साथियों, विशेष जयमाला के अंतर्गत हम ऐसे वीर अदम्य साहसी जाबाज कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की शौर्य गाथा से रूबरू होंगे, जिन्हें भारतीय सेना के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे देश की माटी की सुगंधी ऐसी है, जिसे प्यार हो जाए माटी से तो वो देश की रक्षा की खातिर अपनी जान की बाजी लगाने में भी जरा सा हिचकिचाते नहीं है। फौजी साथियों, देश के माटी से मोहब्बत केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य होती है। जब कोई जवान भारतीय सेना में शामिल होता है तो वो सिर्फ एक नौकरी नहीं चुनता बल्कि मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लेता है।

भारतीय सेना के सैनिकों के लिए देश की मिट्टी केवल धूल नहीं बल्कि उनकी पहचान, उनका गौरव और उनकी आत्मा का हिस्सा होती है। देश की माटी से ये प्रेम बचपन से ही संस्कारों में बस जाता है। खेतों की खुशबू, गांव की गलियां, शहरों की चहल पहल, सब कुछ उस जवान के दिल में बसा रहता है जब वो सरहद पर तैनात होता है। चाहे सियाचिन की बर्फीली चोटियाँ हों या रेगिस्तान की तपती रेत, उसके मन में अपने वतन की मिट्टी की याद ही उसे शक्ति देती है। यही याद उसे कठिन परिस्थितियों में भी अडिग और साहसी बनाए रखती है।

फौजी साथियों, अंतराल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। फौजी साथियों के लिए देश पहले आता है, परिवार बाद में। वे त्योहारों, खुशियों और पारिवारिक पलों का त्याग कर सीमाओं की रक्षा करते हैं ताकि देशवासी सुरक्षित रह सके। जब वे तिरंगे को सलामी देते हैं तो वे सलामी केवल एक औपचारिक नहीं बल्कि अपनी धरती के प्रति अटूट प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। ऐसी ही धरती में जन्मे कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी, वो शहर अम्बाला हरियाणा राज्य में जहाँ का गौरवशाली इतिहास है, वहां से कितनी माओं के बेटे देश सेवा के लिए सरहद पर गए।

0: मैं लड़ जाना।
1: फौजी साथियों, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का जन्म 4 जुलाई सन 1974 को हरियाणा के अंबाला जिले में एक सैन्य परिवार में हुआ था। आपके परिवार में बाबा और पिताजी सेना से जुड़े थे। आपके पिता सेना के पूर्व सैनिक थे और उनका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल तेज प्रकाश सूरी और मां का नाम श्रीमती सुरजीत कौर था। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का एक छोटा भाई रणधीर सिंह भी है। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के दादा सूबेदार गुरबख्श सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और सन 1974, सन 1948 और सन 1962 के युद्धों में भी विदेशी अभियानों में भाग लिया था। आपके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल तेज प्रकाश सूरी, जो कि सिख लाइट इन्फेंट्री के पूर्व सैनिक रह चुके थे, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में दुश्मन देश के साथ सन 1971 के युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई थी। खुमार तेरे इश्क का ऐसा चढ़ा है वतन कि सुबह का पहला शब्द वंदे मातरम ही होता है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, जहां पापा की पोस्टिंग होती है, बच्चों की शिक्षा भी वहीं से होती है। अब चूंकि कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के पापा सैन्य नौकरी में थे, तो वहीं के सैन्य स्टेशनों पर जो सेना के पब्लिक स्कूल होते थे, इनकी भी पढ़ाई इन्हीं स्कूलों में हुई। अब क्योंकि परिवार में शुरू से उन्होंने सेना की वर्दी देखी थी, उनके किस्से गुरजिंदर सिंह ने सुन रखे थे, भला उनके दिल में, उनके सपनों में सेना में जाने की और देश प्रेम की लौ कैसे ना जलती, वो तो उनका सपना बन दिलो दिमाग पर छा गया था। उन्हें तो बस अपने पिता

देते, भला उनके दिल में, उनके सपनों में, सेना में जाने की और देश प्रेम की लौ कैसे ना जलती। वो तो उनका सपना बन दिलो दिमाग पर छा गया था। उन्हें तो बस अपने पिता के पदचिन्हों पर चलकर देश सेवा करनी थी। देशभक्त की महक अब मेरे कपड़ों से आने लगी है, अब तो मेरी धड़कन भी जय हिंद गाने लगी है।

0: फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अंतराल का। मिलते हैं अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना।
2: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
3: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
2: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
3: HIV
2: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
1: भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: फौजी साथियों, अंतराल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। फौजी साथियों, आगे चलकर कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी ने खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने मम्मी पापा की इच्छा के चलते सिख लाइट इन्फेंट्री को चुना था, लेकिन उस समय रिक्तियों की कमी के कारण उन्हें अपने पसंद की रेजिमेंट नहीं मिल सकी। सन 1997 को उन्हें आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में कमीशन प्राप्त हुआ, यानी ज्वाइन करने का मौका मिल गया, जहां युद्ध और शांति के समय भारतीय सेना को सामग्री और रसद सहायता प्रदान करने का कार्य किया जाता था। अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने जिम्मेदारियों को समझा, सीखा और पालन किया। फौजियों की एक हुंकार एक ललकार ही काफी है, गोलियां तो बाद में बरसती हैं, दुश्मनों के छक्के

फौजी साथियों, वो पल वो मौका जब तक फौजियों के जीवन में ना आए तब तक उनके अंदर कुछ कर गुजरने की ख्वाहिशें हिलोरी लेती रहती हैं। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जीवन में उस कहानी की शुरुआत हुई जब 1999 में वे 12 बिहार बटालियन में सेवारत थे और उनकी यूनिट जम्मू कश्मीर में तैनात थी, जहां उन्हें आतंकवादी विरोधी अभियानों का जिम्मा सौंपा गया था। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी घातक टीम के प्लाटून कमांडर नियुक्त किए गए थे, जिस टीम को जम्मू कश्मीर के अग्रिम सुरक्षित क्षेत्र में स्थित फौलाद पोस्ट पर तैनात किया गया था। अचानक दुश्मन सैनिकों ने भारी तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए थे और पोस्ट पर हमला बोल दिया। चारों तरफ भयंकर गोलों की गूंज फैल रही थी। इधर से भी जवाबी हमले किए जा रहे थे। देखते ही देखते भारतीय सेना के जवानों ने उनके हमले को विफल कर दिया और कैप्टन गुरजिंदर सिंह ने अपने जवानों को तैनात कर दिया था कि दुश्मन की हर एक चालों को नाकाम कर दिया जाएगा। वहीं दुश्मनों की लगातार कार्यवाही हो रही थी, वे अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ रहे थे। इधर भारतीय सेना ने सुनियोजित अभियान शुरू कर दिया था कि वे दुश्मनों को करारा जवाब देकर ही रहेंगे। इस अभियान को ऑपरेशन बिरसा मुंडा नाम दिया गया। ये नाम भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोक नायक के नाम पर रखा गया था। फौजी साथियों, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी ने अपने साथियों के साथ योजना बनाई और बंकरों को एक एक करके खाली कराने की मुहिम शुरू कर दी। इसके चलते एक सैनिक घायल हो गया था। दुश्मन वहां पर भी अपने हथियार से गोलियां बरसा रहे थे।

देखते ही देखते दुश्मनों की ओर से गनों में शांति छा गई, लेकिन इसी दौरान उनकी बाह में दुश्मन की गोली जा लगी। अपनी परवाह किए बगैर उन्होंने अपने साथियों का नेतृत्व जारी रखा और एक बंकर में हथगोले फेंक दिए। फिर वे भी उस बंकर में घुस गए और अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। होनी यहां पर होकर रही। अचानक दुश्मनों ने ग्रेनेड चला दिया जो कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जा लगा। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी चोट को अनदेखा कर वे मोर्चा संभाले हुए थे। उन्होंने अस्पताल जाने से मना कर दिया और अंतिम सांस तक अपने फौजी साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हो गए। 25 वर्ष की कम उम्र में उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और शहीदों के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गए। उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण, सेवा भाव हमेशा याद किया जाएगा।

फौजी साथियों, इस युद्ध में दुश्मन सैनिक भी मारे गए और उनके कई बंकरों को नष्ट कर दिया गया था। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को उनकी असाधारण वीरता जाबाजी के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2000 में मरणोपरांत महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया और इस तरह वे सेना आयुध कोर के पहले अधिकारी बने जिन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार

रुकना नहीं, झुकना नहीं, ना ही टूटना है, हारना सीखा नहीं मेरे देश के जवानों ने, उन्होंने तो बस मौत को जीतना सीखा है। फौजी साथियों, ऐसे वीर अदम्य साहसी कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को दिल से नमन प्रणाम करती हूँ।

आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का और संपादन मनीषा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाया प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले ने। तो अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

मौसम विभाग ने अज तो लेके 17 सितंबर तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच किते किते गज चमक अते तेज हवा नाल भारी वर्खा होण दी संभावना जताई है। ए सन हुण तक दीआं मुख प्रादेशिक खबरां। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तों बोल रहे हां। श्रोते हुण तुसी सुणोगे कुछ पंजाबी गीत अपनी रेडियो दोस्त रुपिंदर दे नाल। आगाज़ करदे हां अज दे इस प्रोग्राम दा दिलजीत दोसांझ दे गाए इस गीत दे नाल।

0: आज के हवा महल में हम आपको सुना रहे हैं वीएम आनंद का लिखा प्रहसन राजेश और राकेश। निर्देशक हैं श्याम सुंदर प्रसाद।
1: डैडी डैडी,
2: ओहो, आज तो हमारी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। अरे भाई, आखिर बात क्या है?
1: डैडी, मैं आज आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ।
2: खुशखबरी? वाह वाह वाह, तो फिर सुनाओ भाई, क्या खुशखबरी है?
1: वो राजेश है ना।
2: राजेश? कौन राजेश?
1: वही राजेश जो हमारे घर आया करता है। उसने मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है।
2: क्या? तो तुम्हारी शादी और उससे? ये कभी नहीं हो सकता।
1: क्यों नहीं हो सकता? हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं।
2: लेकिन मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है।
1: टैडी, आप राजेश को अच्छी तरह नहीं जानते। वो बहुत अच्छा लड़का है। आज मैंने उसे घर पर इनवाइट किया है।
2: अरे आने दो उस बदमाश को, मैं उसकी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा।
1: अरे राजेश, आ गए तुम? अंदर आ जाओ। टैडी, ये है राजेश।
3: लेकिन मैं तो
2: बच्चू रोज छुप छुप कर मेरी बेटी से मिलते थे, आज मेरे जंगल में आ गए हो। अरे मैं

0: डैडी ये आप क्या कह रहे हैं?
1: सुनिए सर, सुनिए मेरी बात तो सुनिए।
2: ये ऐसे नहीं मानेगा
1: सर, मेरी बात तो सुनिए।
0: डैडी रुक जाइए, डैडी रुक जाइए, मत मारिए मेरे राजेश को, इस हंटर से न मारो मेरे दीवाने को।
2: तो बर्खुदार कैसी पिटाई लगाई,
1: मर गया। सर पिटाई तो आपने बहुत अच्छी की, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि मैं आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई?
2: उठाई अबे अबे तो तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा बेशरम, पहले तो तुम हाथ धोकर बेटी के पीछे पड़ गए और अब उससे शादी करना चाहते हो?
1: जी
0: राजेश हिम्मत रखो, तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मैं डैडी को मना लूंगी, हमने प्यार किया है, कोई जुर्म तो नहीं किया
1: है? अरे किस कमबख्त ने तुमसे प्यार किया है? मैं मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं तुमसे प्यार करूं?
2: देखा देखा बेटी, चार हंदर पड़े और प्यार प्यार सब भूल गया।
0: ये तुम क्या कह रहे हो राजेश?
1: अरे कौन राजेश, मैं राजेश नहीं हूँ, नहीं हूँ।
0: नहीं नहीं ऐसा मत कहो राजेश, ऐसा मत कहो, प्यार करने वाले छोटे मोटे पिटाई की परवाह नहीं करते, वो तो हंसते हंसते जान दे देते हैं।
1: ओहो, मैं कहता हूँ मेरा हाथ छोड़ दो, मैंने कहा नहीं, मैं राजेश नहीं हूँ, मैं उसका पत्नी सिर्फ जुड़वा भाई राकेश हूँ।
0: क्या जुड़वा भाई राकेश?
2: क्या कहा तुमने, राकेश?
0: लेकिन तुम तो बिल्कुल राजेश नजर आते हो।
1: हाय यही तो रोना है, सिर्फ हमारी शक्लें ही नहीं बल्कि हम कपड़े भी एक ही तरह से पहनते हैं। हाय
0: तो फिर कहाँ है तुम्हारा भाई राजेश?
1: हाय राजेश ने मुझे बताया था कि वो इस वक्त यही होगा, मैं उसे एक जरूरी मैसेज देने आया था। हाय
2: अरे बेटा, अरे बेटा, अरे मुझे तो पहले ही शक पड़ गया था कि तुम वो नहीं हो। अरे बेटा तभी तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा।
1: जी यानी कि आपने कुछ नहीं कहा?
2: नहीं
1: बिल्कुल, आपने तो कुछ कहा ही नहीं।
2: तो तुम्हारा क्या नाम है? राकेश। सुनो भाई तुम जल्दी से घर जाओ और अपने जुड़वा भाई, क्या नाम है यार उसका, राजेश, उसको यहाँ भेज दो।
1: जी राजेश को यहाँ भेजूं?
2: हाँ, हाँ, उसकी ये हिम्मत ये मजाल कि मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अरे देखता हूँ कैसे करता है वो मेरी बेटी से शादी।
1: जी जी जी मैं बिल्कुल समझ गया, मैं उसे अभी जाकर भेजता हूँ।
0: डैडी आपने उसके जुड़वा भाई की पिटाई कर दी, मैं बर्दाश्त कर गई, अब अगर आपने राजेश को कुछ कहा तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी।
2: अरे बेटी तुम तो हर वक्त कुछ ना कुछ खाती ही रहती हो, अब मरोगी तो कुछ खाकर ही मरोगी ना। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ।
0: राजेश तुम आ गए, कहाँ थे तुम?
2: मैं ये हंटर लेकर कब से तुम्हारे इंतजार में हूँ, हंटर खाने के लिए तैयार हो जाओ।
0: नहीं नहीं ये पहले रसगुल्ले खाएगा।
2: ये पहले हंटर खाएगा?
0: ये रसगुल्ले खाएगा।
2: ये पहले हंटर खाएगा?
0: रसगुल्ले खाएगा।
2: हंटर क्यों बे कभी दे है? अब कभी जाओगे मेरी बेटी से मिलने के लिए?
1: अब किसे मारे जा रहे हैं?
2: किसे मारा हूँ, किसे मार रहा हूं? अरे अरे राजेश को मार रहा हूं और किसे मार रहा हूं? अरे क्या बदतमीजी है, आज तुम मार खा के भी हंसे चले जा रहे हो यार, कमाल की चीज हो।
1: मैं तो आपकी नादानी और नासमझी पर हंस रहा हूं।
2: मतलब?
1: मतलब कि आप जिसे मार रहे हैं वो राजेश है, अपित रहा है राकेश।
2: राकेश? अरे अरे राकेश तो पहले आया था भाई।
1: जी हुजूर मैं वही राकेश हूँ जो पहले आया था और जिसे आपने पहले पीटा भी था।
2: हाँ, और फिर दोबारा पिटने आ गए हो क्यों?
1: मैं तो आपको ये बताने आया था कि राजेश अभी घर पर नहीं है, वो शायद एक घंटे में आएगा।
2: ओपो

0: I say, get out from this place!
1: मैं जा रहा
0: हूँ. Oh my God, I am fed up. राजेश, अब कौन है? जाकर देखो कौन है.
2: नमस्कार.
0: अबे, अरे फिर आ गए तुम.
2: जी मैं तो
0: आज से यू गेट आउट. देखो मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है, तो फिर आके ऐसी हो ना.
2: जी नहीं सर, आप फिर गलती कर रहे हैं.
0: मतलब
2: ये कि मैं राकेश नहीं हूँ, मैं राजेश हूँ.
3: ओह राजेश, तुम कहाँ थे अब तक?
0: अरे मैं तो पागल हो जाऊंगा इस राजेश और राकेश के चक्कर में. राकेश,
2: मैं सर आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं राजेश हूँ. वही बदनसीब राजेश जिसने आपकी बेटी से प्यार किया, जो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है. वही बदनसीब राजेश जिसके भाई राकेश को आपने दो दो बार हंटर से पीटा. क्यों पीटा? क्योंकि उसका भाई राजेश आपकी लड़की से प्यार करता है. अगर आपने पीटना ही है तो शौक से मुझे पीटिए, उठाइए अंतर. अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी यतीम खाने में भर्ती हो जाऊंगा, या मेलिया एक्सप्रेस गाड़ी पर बिना टिकट के सवार होकर छलांग लगा दूंगा, या किसी नदी में कूद पड़ूंगा, या आपकी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगा, वही आपके खटारा गाड़ी के नीचे. लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. आप जैसे जल्लाद बाप की बेटी से मैं शादी घर के नहीं करूंगा.
3: नहीं, ऐसा ना कहो राजेश, ऐसा ना कहो.
0: हाँ, और मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि तुम जैसे बदतमीज लफंगे से शादी करने की बजाय मैं अपनी बेटी को किसी स्विमिंग पूल में धकेल दूंगा.
3: मुझे स्विमिंग आती है डैडी.
0: यू शट अप. मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे भाई राकेश से कर
2: दूंगा. राकेश से?
0: हाँ.
2: अरे वही डरपोक राकेश जो दो दो बार आपसे हंटर खाकर और उसने ऊंट तक नहीं की.
0: हाँ, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि राकेश ने जिस प्यार और जिस हिम्मत से मेरे हंटर खाए हैं वही मेरा दामाद बन सकता है.
3: डैडी.
0: क्या है?
3: अब क्या कर रहे हैं? मैं प्यार राजेश से करूं और शादी राकेश से? कभी नहीं होगा नजीक, कभी नहीं.
2: बिल्कुल नहीं.
0: तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बेटी, दोनों का एक ही रंग है, एक ही रूप है, एक ही आवाज है और एक ही शक्ल है. देखो बेटी, ये मत बर्बाद करो. तुम जाओ, तुम जाओ
2: जी.
0: और राकेश को यहां भेज दो. उससे कहना पूरे 5 बजे वो यहाँ पहुंच जाए, नहीं तो
2: जी, नहीं तो
0: मुझसे बुरा कोई नहीं होगा.
2: पूरे 5 बजे क्यों?
0: मैंने फैसला कर लिया है कि राकेश और मेरी बेटी की रिंग सेरेमनी आज ही 5 बजे हो जाएगी.
2: जी रिंग सेरेमनी?
0: और हाँ, कहना दोनों अंगूठियां मैं ही बाजार से लाऊंगा, बस वो सिर्फ 5 बजे यहां पहुंच जाए.
2: अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं अब यहां रुककर क्या करूंगा? अलविदा, मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए.
3: नहीं नहीं, मत जाओ राजेश, मत जाओ. रुक जा. हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे.
2: हम तो चले परदेश, अब परदेसी हो गए.
0: 5 बज गए और ये राकेश का बच्चा अभी तक नहीं आया. क्यों नहीं आया?
3: मुझे क्या पता, अगर आप मेरी शादी राजेश से करते तो देखते कि वो कितना पंक्चुअल है.
0: आओ आओ बेटा राकेश.

0: अंदर आ जाओ, तुम्हारी इंतजारी कर रहा था।
1: जी
0: अरे अरे मेरे लाल, अरे बेटा तुम्हारे पीठ में दर्द भर तो नहीं है बेटा?
1: बात ये है
0: बातें
1: कि
0: बातें बाद में करेंगे बेटा, पहले रिंग सेरेमनी। ये लो ये अंगूठी, तुम मेरी बेटी की अंगुली में पहनाओ। और बेटी चलो इधर आओ, इधर आओ। ये लो अंगूठी।
1: क्या कह रहे?
0: और ये अंगूठी तुम राकेश बेटे के हाथ में पहनाओ। अरे जल्दी करो, नहीं तो वो बदमाश राकेश आ गया ना, तुम एक नया बखेड़ा खड़ा कर देगा। हाँ
2: डैडी, डैडी आप क्या कर रहे हैं?
1: लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए।
0: अरे अरे बेटा सुनना क्या है, अरे तुम यही कहना चाहते हो ना कि जिस लड़की से तुम्हारे भाई ने प्यार किया है तुम उसे शादी कैसे कर सकते हो? लेकिन मैं कहता हूं पहनाओ एक दूसरे को अंगूठी, वरना वरना वरना देखो मेरा हंटर। तकदीर में होता है वो होके ही रहता है। और बेटा राकेश, लड़कियों को रोते सुना था, तुम क्यों रो रहे हो?
1: पर मैं तो रो नहीं रहा हूं, ये तो खुशी के आंसू हैं।
0: खुशी के आंसू? कैसे खुशी के आंसू?
1: जी जी ये खुशी के आंसू हैं।
0: क्या मतलब?
1: मैं राकेश नहीं हूँ, मैं वही बदनसीब राजेश हूँ।
0: क्या
1: जी? मैं तो बताने आया था कि राकेश 5:30 बजे आएगा।
2: राजेश तुम
0: अरे चाहता था कि मेरी बेटी की शादी राकेश से हो। अरे शादी तुमसे हो रही है, मेरी किस्मत।
2: आपको क्या फर्क पड़ता है डैडी?
0: क्यों क्यों नहीं पड़ता?
2: एक ही रंग,
1: एक ही रूप,
2: एक ही आवाज,
1: एक ही शक्ल।
3: राजेश और राकेश हवा महल में अभी आप V.M. आनंद का लिखा यह प्रहसन सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया श्याम सुंदर प्रसाद ने। यह थी आकाशवाणी के पटना केंद्र की प्रस्तुति।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।
6: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5-25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होवेगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
7: जो स्टील देश के रेलवेज ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार मजबूत लचीला भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
8: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए अब सुनते हैं लूडो फिल्म का गाना, जुबिन नौटियाल और ऐश किंग की आवाज़ों में। गीत संदीप श्रीवास्तव और श्लोक लाल का है, संगीत प्रीतम का।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
4: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से, उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर

0: डिजिटल राइट में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
0: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में

0: होता है चयन। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
4: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
3: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का

0: खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताज़ा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
1: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। हुन तुसी सुनोगे प्रोग्राम आपके लिए।
3: देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए जुदाई फिल्म के इस गाने के साथ। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना। इसे लिखा है वर्मा मल्लिक ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में कस्मे वादे फिल्म का गाना। इसे लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने।

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आइए अब सुनते हैं शायद फिल्म का गाना मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों में। गीत लिखा विट्ठल भाई पटेल ने, संगीत मानस मुखर्जी का है।

0: इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
4: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
4: HIV
3: नहीं पता ना, समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
5: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
6: अनमोल खजाना, जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
7: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
8: किसने कहा है? किशोरदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
6: संगीतकार रविंद्र जैन।
8: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

आप सभी को रेनु बंसल का नमस्कार। आज हमारी फनकार हैं अभिनेत्री महिमा चौधरी।

0: दोस्तों, ये गाना फिल्म परदेस का था और परदेस महिमा चौधरी की पहली फिल्म थी। वो शोमैन सुभाष घई की खोज है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुभाष घई जब भी किसी अभिनेत्री को पहली बार हीरोइन बनने का अवसर देते हैं तो उसे एक नया नाम भी देते हैं और ये नाम हमेशा म से शुरू होता है और महिमा के साथ भी यही हुआ। माता पिता का दिया हुआ नाम ऋतु चौधरी घर में ही रह गया और फिल्मों के लिए महिमा मंडित हुआ नया नाम महिमा। लेकिन इस बात की पूरी जानकारी स्वयं महिमा चौधरी के स्वर में।
1: क्रेडिट दे देते हैं कि सुभाष जी ने मुझे नाम दिया, ये मैंने खुद चुना था। उन्होंने जरूर कहा था कि तुम्हारा नाम दे रहा हूँ मैं प्रेस में, तो ऋतु चौधरी ही दूं कि कुछ और रखना है। तब मेरे ध्यान में आया कि अरे नहीं, नाम तो बदला जा सकता है। और मुझे वैसे ही ऋतु के नाम से ये हो गया था कि मेरी क्लास में ही चार चार ऋतुस थी, तो एक कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही कॉमन नेम है एंड आई डोंट बी कंफ्यूज्ड विद एनीवन। मम्मी पापा ने सोचे बगैर ही मेरा नाम ऋतु रख दिया तो कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। मैंने बहुत सारे नाम ढूंढे और अगले दिन जब सुभाष जी को मैंने पढ़ाया तो उन्होंने कहा कि इसमें एम से कोई नाम नहीं है, एम से नाम होना चाहिए क्योंकि एम मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने कोई भी नाम, कोई भी फर्म जब शुरू की है, जैसे मुक्ता आर्ट्स फिल्म्स, वो सक्सेसफुल रही है। टेलीविजन पे मैंने दृष्टि शुरू की थी, वो एकदम फ्लॉप हो गई, तो एम से नाम रखो तुम। तो मेरे जो पापा हैं उनके बेस्ट फ्रेंड, उनकी बेटियों का नाम है रिधिमा महिमा। मैंने कहा महिमा कैसा है, ही सेइंग इट्स नाइस, तो फिर हमने महिमा रखा।
2: जैसे

0: अपने देश से प्रेम करने वाली महिमा चौधरी का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। हॉस्टल में रहने से उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता शुरू से ही रही। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ वो नेपाली भाषा भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं और बोलती भी हैं।
1: दार्जिलिंग को एकदम याद आउँछ। अन्त जे पनि म आज हुँ त्यो त्यहीँ दार्जिलिङमा सिकेको। अन्त हाम्रो नेपाली भाइ बहिनी कोबाटै सिकेको। अन्त मेरो सबै म्यानरिजम्स त्यहीँबाट हो। एन्ड टु लभ अल्सो इज आई लर्न फ्रम द नेपालीज पिपल। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।
0: महिमा चौधरी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं, पर उनका करियर फिल्मों में बनेगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। खैर, शुरुआत मॉडलिंग से हुई और उन्होंने एक शीतल पेय का विज्ञापन किया। बस यहीं से वो लाइमलाइट में आई और फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए अपने आप खुल गए। फिल्म परदेस में गंगा के रोल में उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री भी मिली और फिल्म की कामयाबी से शोहरत भी मिली और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का डेब्यू अवार्ड भी उन्हें मिला। फिल्म परदेस के बाद महिमा की बहुत दिनों तक ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जो बॉक्स ऑफिस पर वैसी भीड़ जुटा पाती जैसी कि परदेस ने जुटाई थी। लेकिन महिमा के नाम की लगन लोगों को उनकी फिल्में देखने के लिए खींच ही लाती।

महिमा चौधरी की जितनी फिल्म्स अब तक रिलीज हुई हैं, उनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टार कास्ट वाली हैं। फिर भी हर फिल्म में महिमा ने अपने रोल के साथ न्याय तो किया ही है, अपनी अदाकारी के तीरों से देखने वालों को घायल भी किया है।

दिखने में शोक और चंचल महिमा चौधरी स्वभाव से गंभीर हैं। बहुत से लोगों में घिरे रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जब सेट पर आती हैं तो रोल जैसा भी हो उसमें पूरी तरह से डूब जाती हैं। फिल्म ये तेरा घर ये मेरा घर एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सरस्वती की भूमिका में उन्होंने लोगों को रुलाया भी तो बहुत हंसाया भी। हंसाते

महिमा चौधरी के संवेदनशील अभिनय से सजी एक और बहुत प्रभावशाली फिल्म थी दिल क्या करे। ये एक ऐसी पत्नी की कहानी है जो अपनी गोद ली हुई बेटी से बेहद प्रेम करती है और नहीं जानती कि उसका पति ही उस बच्ची का जन्मदाता है। लेकिन जब ये राज जाहिर होता है तो जैसे उसके पैर

महिमा चौधरी ने अपने करियर में तरह तरह के रोल्स अदा किए हैं। फिल्मी दुनिया में महिमा चौधरी उन चंद अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्हें अपने अभिनय को विभिन्न रंगों में रंगने का अवसर मिला। शुरुआत हुई सन 1997 में फिल्म परदेश से। इस फिल्म में उन्होंने गांव की सीधी साधी संस्कारों में बंधी लड़की गंगा का रोल किया। 1999 में फिल्म आई प्यार कोई खेल नहीं, इसमें एक ऐसे विधवा के रोल में थी वो जिसे अपने पति के भाई से ब्याह रचाना पड़ा। फिल्म धड़कन आई सन 2000 में, इसमें महिमा चौधरी शीतल वर्मा के किरदार में थी। शीतल वर्मा एक ऐसी प्रेमिका जिससे वो प्यार करती है, वो किसी और लड़की के प्रेम में दीवाना है।

महिमा चौधरी के अभिनय से सजी अगर फिल्म लज्जा की बात करें तो इस फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर की माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला ने। इसमें उनका रोल मैथिली का था, सशक्त अभिनय था। मैथिली के रूप में एक ऐसी लड़की जो अपने पिता की इज्जत की खातिर दहेज के लोभियों को बहुत करारा जवाब देती है और शादी के मंडप से उठकर इनकार कर देती है। और फिल्म लज्जा महिमा चौधरी की पर्सनल फेवरेट फिल्म भी है।

महिमा चौधरी की कुछ और फिल्में हैं ओम जय जगदीश, एलओसी कारगिल, सैंडविच, गुमनाम द मिस्ट्री और मुंबई द गैंगस्टर्स। दोस्तों, फिल्म परदेस में स्क्रीन पर महिमा चौधरी ने गाना गाया था जहां पिया वहां में। ये तमन्ना उनकी पूरी हुई सन 2006 में, जब उन्होंने आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी को अपना पिया माना और अपनी गृहस्थी में रम गई। एक प्यारी सी उनकी बच्ची है। श्रोताओं, ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, जो आज केंद्रित था अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिप्पर। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।

छाया गीत में आज मैं लेकर आया हूं ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं, एक पुरुष आवाज में, दूसरा महिला आवाज में। हमने इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर आपस में जोड़ दिया है। नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। अंधेरा, घना अंधेरा, आंसू, सर्द आंसू, तन्हाई, बेपनाह तन्हाई, एक सजा है तन्हाई, एक जुल्म, एक मुश्किल।

अफसोस की नगमे, उदास नगमे, क्यों अच्छे लगते हैं सबको ये उदास नगमे? क्यों मुकेश की उदास आवाज हमारी तन्हाइयों की साथी है? क्यों हम तन्हाई में थाम लेना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज का दामन? दो उदास नगमे, दो उदास मौसम।

एक चेहरा, एक मिजाज, एक शख्सियत कैसे बयां करें कुछ अल्फाज में। शब्दों के मायने छोटे लगने लगते हैं और हर बार हमें लगता है पूरी तरह हम नहीं कह पा रहे अपनी बात।

दुनिया की दो अलग अलग छोर, इन अलग अलग हिस्सों में पले लोग बने होते हैं एक दूसरे के लिए। कितनी अजीब बात है, कहते हैं जिंदगी में इत्तेफाक होते हैं और बहुत खुशनुमा इत्तेफाक होते हैं।

छाया गीत में आज थे दो संस्करणों वाले गाने। इन गानों को हमने किसी मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: दूल्हा दुल्हन इंदीवर कल्याण जी आनंद जी
1: चंदन सबदन
2: चंचल चितवन
0: सरस्वती चंद्र इंदीवर कल्याण जी आनंद जी
1: कभी कभी मेरे दिल
2: ख्याल आता है
0: कभी कभी साहिर लुधियानवी खयाम आज का छाया गीत इतना ही इजाजत दीजिए यूनुस खान को नमस्कार
1: छुप गए हो
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती भारत का

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਸਾਂ ਚ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਮੁੜ ਫਿਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ।
1: आज फिर लेट हो गए।
2: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से

0: नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे, रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रोग्राम च अगली आवाज कुलविंदर ढिल्लों दी।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
3: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
2: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
3: HIV
2: नहीं पता ना, समझदार वीरे ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਰਨ ਸੈਂਬੀ ਦਾ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗੀਤ।

सुरजीत खान का गाया गीत ही सी आज दे इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश ते हुन देओ इजाजत नमस्कार FM 107.2 MHz ते आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र रात दे 11 बजन वाले ने हुन तो कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे हिंदी च समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षो में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

0: एक सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।